0: 印度德里广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: ईरान और चीन में इतना घूमे कि कई परिंदे भी इनकी उड़ान के आगे नतमस्तक थे। श्रीलंका में 19 महीने, तिब्बत में 1.25 बरस और नेपाल में लंबे समय तक अज्ञातवास में रहकर राहुल सांकृत्यायन ने साहित्य को अनगिनत अमिट रचनाएं दी।
2: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के जीवन से कुछ प्रसंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे बालकांड।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चको

और बन गईं। अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

0: Saudara-saudara pendengar, kami mohon agar para pendengar kami mengirimkan saran-saran mereka serta laporan mereka mengenai daya penangkapan siaran kami ini di daerah mereka masing-masing. Karena laporan-laporan seperti itu sangatlah membantu kami meningkatkan mutu siaran kami ini untuk melayani Anda sebaik-baiknya. Laporan dan saran-saran Anda lebih baik pakai kode SINPO atau biasa juga dapat dikirim lewat alamat email kami yang adalah sebagai berikut. Alamat ponsel kami adalah sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Saudara pendengar, kami mengharapkan surat Anda dapat sampai di meja tugas kami di sini. Dengan demikian selesai acara kami untuk besok, untuk pagi ini. Acara kami untuk besok ada sebagai berikut setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight dan seperti yang biasa, akhirnya sehari acara esokannya. Selamat tinggal saudara pendengar.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 100

0: 20 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया। गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम।

0: जानकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
6: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. They are

0: attack on ship with Indian crew. The Asian Age writes, India flays Hormuz ship attacks, US blames Iran. Hailing diversification of its energy basket, EAM calls out West's double standards on oil purchases, writes the Statesman. In the backdrop of US and Iran signing peace deal, war premium to peace dividend, stock surge, crude cools, and the rupee rebounds on hopes of easing tensions, reports the Financial Express. Termed as student-friendly changes, extra 15 minutes, more rough work space for students in NEET retest, informs the Hindustan Times. Rain, strong winds deliver city its cleanest air since September 15th, reports the Times of India. The Statesman, on its editorial page under the caption Demanding Proof, writes, for much of the past 2 years, investors appeared willing to suspend disbelief. Artificial intelligence was not merely a promising technology, it became the foundation of a market narrative. Share prices soared, valuations stretched, and every earnings season was interrupted through the lens of an AI-driven future. The recent turbulence in global stock markets suggests that this phase may be ending. Technological revolutions have always generated excitement, but financial markets eventually demand evidence. And finally, under the caption Peck Party, the Delhi Tribune captures a serene picture of a parrot and black-rumped flame-back woodpecker feeding on a wall. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on six-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed three Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। डीआरडीओ ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजुर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हो गए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अजायम को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकतदारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज्यादा वसी दिफाई शराकतदारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहाँ वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस 2 तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और तआवुन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का 7वां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली 2 तरफा चोटी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस

0: हैं और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर भी इस चेंज की अहमियत को समझ के तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके बहुत टाइमली डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसी तरह से हम लगभग 100% क्योर इन मरीजों को दे सकते हैं आंख और नजर को बचाते हुए। तो इसीलिए ये रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: तो डॉक्टर अमिता, वो कौन से अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो पेरेंट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए?
0: रेटिनोब्लास्टोमा बहुत छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है, नवजात शिशु भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं और ज्यादातर बच्चे, लगभग 95% इफेक्टेड बच्चे 5 साल से कम आयु के होते हैं और माँ बाप की नजर के सामने हमेशा रहते हैं। तो अर्लीस्ट साइंस यूजुअली माँ बाप यही पकड़ पाते हैं कि आंख की पुतली में सफेद झिल्ली दिखना। तो इसे एक मेडिकल इमरजेंसी समझिए। अगर रेटिनोब्लास्टोमा नहीं भी है तो ये किसी न किसी बीमारी का संकेत है जो बच्चे की नजर को प्रभावित कर सकती है। तो ये साइन से तुरंत आई डॉक्टर के पास जाना बहुत आवश्यक है। कोई नया ऑनसेट भेंगापन कि बच्चे की नजर पहले ठीक थी पर माँ बाप को लगा कि अब आंखों में कुछ नया भेंगापन है या आंख में सोजिश है या अधिकतम लाली दिख रही है या पानी इसका डिस्चार्ज हो रहा है, तो कोई भी ऐसा आंख का जो नया लक्षण दिखे तो जरूर कोई आई डॉक्टर को कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर रेटिनोब्लास्टोमा नहीं भी है तो जो भी है उसका टाइमली डायग्नोसिस और इलाज होना बहुत आवश्यक है।
1: तो डॉक्टर अमिता, क्या एक सिंपल आई स्क्रीनिंग और टाइमली रेफरल एक बच्चे की विजन और उसकी लाइफ दोनों को सेव कर लेगी?
0: बहुत मदद कर सकती है। और ये सिंपल टेस्ट ये है जिसे हम कहते हैं रेड रिफ्लेक्स, कि जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय गाइडलाइंस के अनुसार भी हर नवजात शिशु का एक सिंपल टेस्ट है जो एक इंस्ट्रूमेंट या सिंपल टॉर्च से भी किया जा सकता है। और पहले कुछ महीनों में या पहले 2 वर्षों में बच्चे अनेकों बार डॉक्टर के पास जाते हैं टीकाकरण के लिए। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है इस बीमारी को या आंखों की कोई भी परेशानी को डिटेक्ट करने के लिए, जिसके टाइमली ट्रीटमेंट से हम बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट को बचा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस इस पे काफी स्ट्रिक्ट हैं। भारतवर्ष में ये गाइडलाइंस अभी इतनी स्ट्रिक्टनेस से फॉलो नहीं की जा रही, पर जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें सभी पीडियाट्रिशियन या बच्चों बाल डॉक्टर उसके हिस्सा हैं, तो ये गाइडलाइंस हमारे रिक्वेस्ट पे और इस टेस्ट की जरूरत को समझते हुए वो अनाउंस करने जा रहे हैं कि सभी बच्चों को टीकाकरण के अवसर पे और नवजात शिशु जब पैदा होता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले ये वाला टेस्ट अवश्य किया जाए, क्योंकि इस टेस्ट की कोई भी लागत नहीं है।
1: तो ये बहुत बढ़िया बात,
0: बहुत बड़ी
1: बात। लेकिन अगर जैसे किसी ने फोटो ली और उनके बच्चे के उनको वो चमक दिखी,
0: हाँ,
1: तो तुरंत क्या करना चाहिए?
0: उसे पहचाने और आई डॉक्टर या जो बाल डॉक्टर हैं उनके पास पहुंचे। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि पीडियाट्रिशियन या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, तो अपनी आंगनवाड़ी वर्कर को या जो भी जिस भी हेल्थ केयर वर्कर से आप मिलते हैं उन्हें जरूर बताएं, क्योंकि सबने मिलकर एक रास्ता बनाया है कि ये लक्षण अगर पकड़ा जाए तो इसे आगे करना क्या है। तो उससे आप डरिए नहीं और इसको पहचान के जरूर अपने जो भी हेल्थ केयर वर्कर से आपका नाता जुड़ा हुआ है उनको ये बताइए और वो आपको आगे का रास्ता वो खुद ब खुद आपको बताएंगे।
1: अब बताएं डॉक्टर अमिता कि हमने ये देखा है कि नॉर्थ इंडिया में बच्चे लेट स्टेज डिजीज में आ रहे हैं और इस डिले का क्या वजह हो सकता है?
0: ऐसा हमारा अनुभव है कि बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। जिन प्रदेशों में मदर या फादर की एजुकेशन ज्यादा कंप्लीट है तो वो लोग इसको जल्दी पकड़ पाते हैं, तो मैटरनल एजुकेशन इसका कारण हो सकता है। बीमारी के अपनी बायोलॉजी में कोई अंतर हो सकता है कि जिस वजह से कोई बीमारी ज्यादा एग्रेसिव होती है, इसके कुछ पहलू ही हम अभी तक समझ पाए हैं। और दूसरी बात है कि कहाँ पे आई सेंटर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। हिस्टोरिकली बहुत एस्टैब्लिश्ड आई सेंटर साउथ में ज्यादा रहे हैं, लेकिन जैसा पूनम जी आपने बोला कि अब ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ पे अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज नहीं है। सरकार, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यही कोशिश कर रही है कि जहां तक नेत्र के प्रॉब्लम्स का इश्यू है कोई भी बच्चा अच्छे इलाज से वंचित ना रहे पूरे देश भर में।
1: दूसरा हम बात करते कि अच्छा अब हमने बच्चे

0: वो हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में आज 100% एक्सेस है। हमने कुछ थोड़ा गौर किया कि हमारे देश में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट भी रेटिनोब्लास्टोमा के लिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आम जनता नॉर्मल तौर पे सोचते हैं कि अच्छा ये सब हमारे देश में नहीं है, और हमें पता है कि रेटिनोब्लास्टोमा का सर्वाइवल रेट विदेश में बेस्ट कंट्रीज में 94% है, पर हमारे देश में भी ये सब है। और आपने तो काफी कुछ रिसर्च भी किया है रेटिनोब्लास्टोमा पे, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगी, सर्वाइवल रेट हमारे देश में क्या है, क्या हो सकता है?
1: हमारे देश में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और आज की तिथि में जो सरकार प्रयास कर रही है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी वर्ग से हो, वो अच्छे इलाज से वंचित ना रहे। साथ में कहीं अगर कुछ गैप्स हैं तो एनजीओज भी बहुत भरसक प्रयास कर रही हैं, तो हम सभी लोग, कैंसर स्पेशलिस्ट, आई डॉक्टर्स, चाइल्ड डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, सभी इस फाइट आरबी इंडिया के छतरी के नीचे एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं कि हम हर बच्चे का, हर परिवार का हाथ पकड़ के उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज दे सकें। लेकिन शायद सबकी अवेयरनेस ना होने की वजह से अभी भी लगभग 1/4 बच्चे बहुत देर से सही सेंटर में पहुंच पाते हैं। तो इस प्रोग्राम का यही, इसके माध्यम से हम यही श्रोताओं को कह सकेंगे, ना केवल अपने बच्चों में पर अपने आसपास, अपने स्कूल्स में कोई भी दिखे जिसे कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, उनके आर्थिक अभाव को या सामाजिक परिस्थितियों को नज़र में ना रखते हुए कहीं भी किसी हेल्थ केयर वर्कर तक उन्हें पहुंचाएं। एक बार वो चलना शुरू करेंगे, लोग साथ खुद ही उनके साथ जुड़ते जाएंगे और दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाएंगे। इसका हम पूरा आश्वासन दे सकते हैं कि आर्थिक अभाव के डर से उनका इलाज कभी भी रुकेगा नहीं। जहां तक आपने बोला कि हमारी कामयाबी क्या है, हम सभी सेंटर्स को एक कड़ी में जोड़ के ये पहले सबसे पहले यही समझना चाहते थे कि समस्याएं क्या हैं। तो जैसा मैंने बोला कि 1/4 बच्चे बहुत लेट स्थिति में पहुंच पा रहे हैं जिनसे उनका आंख बचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी कम से कम 3/4 बच्चों का जीवन हम इस वक्त बचा पा रहे हैं जो बच्चे किसी सेंटर तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा, जो 94% 96% डेवलप्ड कंट्रीज का रिजल्ट है, वो क्यों ना हम हर बच्चे को क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप सभी, अब आज से आप सब भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, और ये मैसेज जो है सब तक पहुंचाइए कि बाल कैंसर या कोई भी कैंसर, उसका इलाज आज की डेट में उपलब्ध है।
0: हम मिलते हैं हमारे रेटिनोब्लास्टोमा एम्बेसडर अतुल राठौड़ से। अतुल, आप एक रेटिनोब्लास्टोमा सर्वाइवर हो, और शायद आप छोटे से थे तब आपको रेटिनोब्लास्टोमा हुआ, राइट
2: जी?
0: तो आप हमें बताएंगे कि जब एक फैमिली को पहले पता चलता है डायग्नोसिस के बारे में, तो उस वक्त क्या बीतती है उनपे, और वो किस लिए मुश्किल था, पहले शायद ज्यादा मुश्किल था, आज की तारीख में क्या तरक्की है?
2: तो जब मुझे डायग्नोस हुआ था तो उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम। मेरा परिवार बहुत ज्यादा बिखर सा गया था, वो सारे लोग डर गए थे कि अब तो अतुल को कैंसर हो गया है तो वो पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। बट उस टाइम भी वहां पर पेशेंट नेविगेटर्स थे, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरी जो मदर है उनको समझाया, उनको बताया कि नहीं, रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज है और आपका बच्चा बच सकता है, उसकी दूसरी आंख की जो रोशनी है वो भी बच सकती है, वो पूरी जिंदगी अपनी अच्छे से जी सकता है। आज की तारीख में मैं जितना मैं आज परिवारों से मिलता हूं जिनके बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा डायग्नोस होता है, वो परेशान हो जाते हैं, बट उनके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको सही रास्ता दिखाते हैं कि हाँ इलाज भी है, कहां पर जाना है आपको, कैसे क्या इलाज होगा। अगर वो फाइनेंशियली वीक हैं तो उनको सारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स देना, अगर वो कहीं बहुत दूर हैं जहां पर वो अपने किसी नजदीकी हॉस्पिटल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उनको एक बड़े शहर में लेकर आना, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना, वो सारी चीजें आज हैं। हम अवेयरनेस इतनी ज्यादा करते हैं कि हर छोटे छोटे गांव में हम ट्राई करते हैं कि वहां तक पहुंच सके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं रेटिनोब्लास्टोमा के।
0: तो आप शायद ग्वालियर के रहने वाले हो, राइट
2: जी?
0: तो आपको जब डायग्नोसिस हुआ था तो आपका डायग्नोसिस के बाद आपका इलाज दिल्ली में हुआ, तो वहां से यहाँ आप कैसे आए और फिर यहाँ आके आपकी जिंदगी, आपके माँ और आपके परिवार की जिंदगी कैसे बदली? अपने घर को छोड़ के आना बहुत मुश्किल है ना
2: जी। जब पता चला था कि मुझे कैंसर हुआ है तो दिल्ली आकर दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, फिर पता चला कि यहाँ कैंसर है,

0: बहुत सारे लोग नहीं थे, सिर्फ थी मेरी मदर मेरे साथ थी, उन्होंने मेरा इलाज कराया वहाँ पर। उनको एनजीओ मिले, उनकी हेल्प ली, उन लोगों से बात करना। जो मेरी माँ थी वो अकेला, उन्होंने मेरा इलाज कराया, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। उनको भी डर लगता था कि क्या मेरा बच्चा बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, बट उनका साथ पकड़ना, उनका हाथ पकड़ के उनको को राह दिखाना कि हाँ आपका बच्चा बच पाएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, उनको विश्वास दिलाना, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, एनजीओज ने, साइकोलॉजिस्ट ने वहाँ पे की थी।
1: अरे आपके ट्रीटमेंट तो एम्स में हुआ था
0: जी,
1: है ना, तो वहाँ तो आज भी बहुत ही उच्चतम स्तर का रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट होता है। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको रेटिनोब्लास्टोमा है या था और अब भी वो उसको फेस करते हैं, तो एक बच्चे की तरफ से अगर आप बताएंगे, क्योंकि मैडम ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको होता है, पर मैंने तो ये भी देखा कि 10-12 साल के भी बच्चे कभी कभी हमको दिखते हैं जो पेशेंट हैं। और हाल में ही हम किसी को मिले थे जो 15 साल के और जिसने काफी कुछ रेटिनोब्लास्टोमा का, तो उन बच्चों की तरफ से बताओ कि बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। उसके आपने एक आंख निकाली, पर वो किस चीज से प्रोत्साहित होते हैं और क्या वो मैसेज होगा जो आप बताएंगे कि अच्छा किसी को लगे कि हाँ मुझे अगर ये है तो मैं इसको कैसे बीट करूंगा।
0: जब एक बच्चे की आंख निकाल दी जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम से गिर जाता है वो, क्योंकि और वो कॉन्फिडेंस उसकी वजह से नहीं गिरता कि आंख निकल गई है, वो कॉन्फिडेंस गिरता है कि सोसाइटी जब उसको अलग तरीके से देखना शुरू कर देती है, उसके साथ रहना बंद कर देते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा कभी कभी छोड़ देते हैं कि नहीं इसको, इसकी एक आंख नहीं है, इसको कुछ होगा। बट जो लोग उस मोमेंट पर साथ में आते हैं, जिससे कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको अगर आकर मोटिवेशन देते हैं कि नहीं आप, अगर आपके साथ ये हुआ है तो कोई बात नहीं, जब ऐसी चीजें होती हैं, जब आप सर्वाइवर्स को मोटिवेट करते हो कि आप सिर्फ एक ट्रीटमेंट के बाद आपकी लाइफ वहां पर एंड नहीं हुई है, आपकी लाइफ आगे बहुत है, आप डांस कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप कविताएं पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो लाइफ में,
1: तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप, जब हम बोलते हैं कि अच्छा एक रेटिनोब्लास्टोमा में आंख निकाली जाती है, डॉक्टर अमिता बैक टू यू ऑन दिस क्वेश्चन, तो और ये भी हमें पता है कि पेरेंट्स भी इस बात से अगर हिल जाते हैं, तो इसके बारे में अगर आप हमें बताएंगे, ताकि इससे ना हम, बहुत जरूरी है कि लोग डरे नहीं, उस डर की वजह से वो छोड़ के चले जाएं, ट्रीटमेंट पूरा ना करें, तो वो तो सही चीज नहीं है। तो अगर आप इस पे थोड़ी सी,
2: देखिए श्रोताओं को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे, जब हम इलाज करते हैं इस बीमारी का या किसी भी और बीमारी का, तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, ट्रीटमेंट गोल्स, उनमें से प्रथम है जीवन बचाना, क्योंकि उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। रेटिनोब्लास्टोमा या आई की डिजीजेस के बारे में हमारा नेक्स्ट गोल है आंख को बचाना। थर्ड गोल है कि नजर, आंख तो बचे लेकिन वो फंक्शनल हो, जिससे कि जो दो आंखों का नजर का नजरिया है वो बच्चे को मिल सके। और चौथी चीज है कि इलाज में कोई ऐसी प्रणाली का इस्तेमाल ना हो जिसकी साइड इफेक्ट उन्हें कुछ वर्षों बाद, 20-25-30 साल के बाद देखने पड़े। तो हमारे एज अ डॉक्टर, हम इसीलिए, हमारा कोशिश है कि राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो, ताकि कोई मेजर सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े, चाहे वो आई हो या लिम्ब हो। तो हमारी प्रयास रहता है कि जो पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी बराबर बनी रहे और उसका वो शरीर का प्रभावित हिस्सा फंक्शनल ही हम सेव कर पाए।
1: तो सोनल जी, आप हमारे साथ हैं, आप एक पेरेंट हैं, आप पेरेंट ग्रुप की लीडर हैं, आपने तो बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ, इतने सालों में आपने उनके साथ काम किया है, तो आप बताएंगे कि शुरू शुरू में जब आपने ये काम किया था, तो उस समय ये जो आर्टिफिशियल आई आंख को लेके लोग बहुत घबराते थे, और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं और उसकी वजह से लोगों को क्या हम होप दे सकते हैं।
3: थैंक यू पूनम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम 2000 की बात करते हैं और 2026 की बात करते हैं, तो आज जो हम देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन द ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर अमिता महाजन कह रही है, वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम सब ने देखा है। और 2000 में मैं जो एक और बात कहना चाहूँगी, जो हमने चर्चा में मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी, वो ये है कि लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव इलाज के टाइम, चाहे वो रेटिनोब्लास्टोमा हो या कोई और कैंसर हो, जब हमने ये शुरू किया था 98-2000 की बात करेंगे, तो लड़कियां बहुत कम आती थी इलाज कराने के लिए और लड़कों को ज्यादा माँ बाप इलाज कराने ले आते थे कि भाई अगर आंख निकल गई या हाथ कट गया या कोई और मुश्किल हो गई तो फिर इनसे शादी कौन करेगा, मुद्दा शादी बन जाता था, ना कि जीवन। जैसे डॉक्टर अमिता महाजन ने कहा, जीवन बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम यूपी सरकार के साथ काम कर रहे हैं और वहां पे गांव गांव, जैसे आपने कहा अतुल, गांव

0: गांव विलेज विलेज में जाकर हम नीचे जाके अवेयरनेस कर रहे हैं, आशा वर्कर से बात कर रहे हैं। उसी में 2007 में हमारे साथ एक पेरेंट जुड़ी थी जिनके बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा था। आज वो हमारा पूरा यूपी स्टेट देखती हैं। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि सोनल जी, जब 2007 में मैं अपनी 2 साल की बच्ची का ट्रीटमेंट करा रही थी तो इवन एनेस्थीसिया जैसी छोटी चीज के लिए मुझे 3 से 4 दिन वेट करना पड़ता था और डर और बढ़ता चला जाता था कैंसर के नाम से और आगे क्या होगा उससे। पर आज जब उनकी बेटी का इलाज हो गया और वो बिल्कुल ठीक है, वो कह रही है, उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि उसी समय आपका डायग्नोस भी हो जाता है, आपकी सर्जरी भी हो जाती है, कीमो भी हो जाती है और जैसे डॉक्टर अमिता महाजन ने बोला, सेव आई सेव विजन सेव लाइफ, हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है पूनम जी, बच्चों को और पेरेंट्स को, क्योंकि जब माँ बाप को ये लगता है कि हाँ इलाज कराने के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आम बच्चों के जैसे स्कूल कॉलेज शादी पढ़ाई कर सकता है, तो वो इलाज के लिए ज़्यादा आगे आते हैं और अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराते हैं। आज के वक्त में हम यही कहना चाहेंगे कि चाइल्डहुड कैंसर का इलाज है रेटिनोब्लास्टोमा और बाकी कैंसर का भी, आप सही वक्त पे जांच करा के सही अस्पताल में इलाज कराइए।
1: वंडरफुल,
0: थैंक यू।
1: तो ये बताएं सोनल कि जैसे आपने बताया और हमने बात की यूपी में या अन्य जगह पे, इस आंख के कैंसर में एक वजह ट्रीटमेंट छोड़ देने का शुरू में ये होता था कि आंख तो निकालनी पड़ेगी, क्या होगा। अब एक तो बहुत अच्छे लेवल के प्रोस्थेसिस मिलते हैं और मुझे अब भी याद है जब हमने KGMU जो सरकारी अस्पताल है उत्तर प्रदेश में वहां पे इलाज करते थे, तो उसी बच्ची की एक बहुत सुंदर सी फोटो खिंचवाई थी डॉक्टर साहिबा ने और ये दिखाया था, सबको दिखाती थी कि देखो आपको समझ में आ रहा है इन दोनों में से कौन सी इस बच्ची का आर्टिफिशियल आई है। तो ये मुझे आज तक ये बात याद है और वो बच्ची इतनी खूबसूरत आज है, तो आज हमारे बच्चों को वो उपलब्ध मिलता है और फिर बाद में जो वो प्रोस्थीसिस बार बार बदलना है, वो प्रोस्थीसिस भी इतना अच्छा बन गया है और उसका कॉस्ट भी इतना कम है, वो अवेलेबल भी हो जाता है। पर दो सवाल है एक डॉक्टर अमिता से, क्योंकि उन्होंने डिसेबिलिटी पे बहुत काम किया है, तो डिसेबिलिटी रेटिनोब्लास्टोमा में मैडम अगर आप कुछ बताएंगे कि सरकार क्या क्या उपलब्ध करा रही है जिसकी वजह से एक ऐसा जो पेशेंट या सर्वाइवर है उसको क्या वो मिल सकता है।
2: देखिए वैसे तो हमारा पूरा प्रयास मेडिकल फ्रेटर्निटी का यही रहता है कि कोई भी रेटिनोब्लास्टोमा का बच्चा डिसेबिलिटी के लिए क्वालिफाई ना करे और उसकी विजन इतनी हो कि उसकी लाइफ की फंक्शनैलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बरकरार रहें। लेकिन किसी वजह से बीमारी की लोकेशन की वजह से अगर नजर में बहुत सिग्निफिकेंट फर्क है तो दिव्यांगन मिनिस्ट्री की तरफ से आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इसके लिए उपलब्ध हैं और उसके लिए अप्लाई करना भी काफ़ी सरल हो गया है। तो पर वही है कि अगर कोई भी पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते तो ज़रूर हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर्स इसमें पूरी आपको गाइडेंस देंगे, पूरी मदद देंगे कि अगर कोई माइनर डिसेबिलिटी है भी तो वो उनको अपनी जिंदगी में अपने पोटेंशियल को अचीव करने में बाधा ना बने।
1: और मेरे ख्याल से ज्योतिर्गमय जैसे प्रोग्राम्स हैं जो मार्गदर्शन दिलाते हैं ऐसे पेरेंट्स और सर्वाइवर्स को कि आपको कैसे ये सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं और कैसे आपका जो नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जीना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों का, जब एक बच्चा सर्वाइव कर जाता है तो उस नॉर्मलसी के लिए आपको जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं सरकार को वहां तक पहुंचाने में कई गैर सरकारी संस्थाएं हेल्प करती है, वो जो बोलते हैं पेशेंट नेविगेशन केयर कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके साथ ही सोनल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, कई परिवारों के लिए ये हमेशा एक डर है कि ये कैंसर है इसमें तो बहुत खर्चा होगा, हम कैसे इसको कोप अप कर सकेंगे, तो आज की तारीख में सरकार की तरफ से क्या उपलब्ध है जो इतना उपलब्ध है कि हमें लगता है कि ये कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर है तो हमारा लक्ष्य यही है कि 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।
0: थैंक यू पूनम, आपने जो बोला पूनम जी बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल, जब भी कैंसर एक दिन की बीमारी नहीं है, ये 1 महीना 2 महीना हो सकता है, लंबा पीरियड है, तो उसमें जैसे कि अतुल भी बोल रहे थे कि वो ग्वालियर से आए, तो जब आप अपरूट करते हैं अपने आप को खाली इलाज के लिए नहीं, आपको रहने खाने खाने पीने सारी सुविधाओं के लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, अलग अलग स्टेट्स की स्कीम है, जैसे भामाशाह है राजस्थान में तो वो कवर करता है।

0: पी की स्टेट स्कीम है, पर आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, सीएम फंड के अलावा आयुष्मान भारत जो कि एक बहुत बड़ा फंड है और उसको वो बहुत इजीली उपलब्ध हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि पहले के जो फंड्स थे ना पूनम जी, उसमें बड़े सारे कागज पत्र फाइल पेपर आपको जमा करने पड़ते थे और वो बेचारा एक परिवार उसी में पिसके रह जाता था, या अगर संस्था भी मदद कर रही है तो एक फाइल कहीं तक पहुंचा के पैसा लाने में बड़ा वक्त लग जाता था। पर आजकल सरकार ने एक तो डिजिटल, आजकल हम सब कुछ अपने फोन पे कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, तो उसी में आयुष्मान भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इससे पहले कि डॉक्टर या संस्था या हमारे जैसे लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं वो उनको बताएं, वो हमसे पूछ लेते हैं कि मैडम मुझे पता है अब कैंसर है और इतना टाइम ट्रीटमेंट का लगने वाला है, आप बता दीजिए आयुष्मान भारत कैसे अप्लाई करेंगे।
1: और जो आयुष्मान भारत है उसका तो पैकेज ही बहुत बढ़िया है। रेटिनोब्लास्टोमा का पैकेज ज्यादातर पूरा इलाज मैडम शायद कवर कर लेता है, कीमोथेरेपी भी और जो भी उसके पहले आगे का है सब कुछ है। तो आउट पेशेंट या उसमें थोड़ा योगदान एनजीओस का होना जरूरी है या परिवार को खुद देखना पड़ता है, जो हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, बट मेन ट्रीटमेंट के लिए पैकेजेस अच्छे हैं
0: जी।
1: और साथ में जो मांग रखी गई है सरकार को, जो सरकार बहुत पॉजिटिवली देख रही है कि जब हम 100% बच्चे को पहुंचा पा रहे हैं तो अब 100% बच्चों को पूरी तरह से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो ये जो एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स हैं उनको भी कवर अप करने की मेरे ख्याल बातचीत चल रही है। मैडम इसके बारे में आप बताएंगे।
2: सो ऑलरेडी आयुष्मान भारत में एडवांस ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, अगर उसके बावजूद भी जैसे आपने कहा कि कहीं कोई गैप्स रह जाते हैं या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो वो गैर सरकारी संस्थाएं उसमें पूरा उनका मरीज का परिवार का हाथ पकड़ लेती हैं, तो आर्थिक अभाव आड़े नहीं आना चाहिए अच्छे इलाज में।
1: तो हमने सब कुछ किया कवर शायद कि कैसे लक्षणों को पहचानिए, कैसे समझिए कि कहाँ पे आपको जाना है डिटेक्शन के लिए, कहाँ आपका डायग्नोसिस के लिए आप जाएंगे, ट्रीटमेंट सेंटर्स पूरे देश में उपलब्ध हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑक्यूलर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट वो भी हैं, सब कुछ है, और इस सब के वजह से सर्वाइवल रेट्स भी बढ़ रहे हैं। एक होती है चीज़ रिसर्च और रजिस्ट्री। मैडम अगर आप एक मिनट में हमें अपने रिसर्च, आपने बहुत लीड किया है रिसर्च इनपॉग के साथ, तो उसके बारे में अगर आप
2: देखिए, बाल कैंसर जब हम आज बोलते हैं कि क्योरेबल है या क्योर रेट्स बहुत हाई हैं, तो ये जो माइलस्टोन है ये हम लोग अचीव कर पाए हैं कोलैबोरेटिव रिसर्च के द्वारा, क्योंकि ये रेयर बीमारियां हैं। अगर हम सभी जो सीखते हैं, जो समझ रहे हैं इन बीमारियों के साथ, उसके साथ मिलजुल के इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो सभी बच्चों का ज्यादा फायदा होगा। तो रेटिनोब्लास्टोमा इंडिया में भी सभी डॉक्टर्स अब एक कड़ी में जुड़ गए हैं, फाइट आरबी इंडिया के और इनफोक जो एक हमारी डॉक्टर्स की कैंसर स्पेशलिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी छतरी के नीचे हम लोगों ने एक बड़ी स्टडी की, इस बीमारी का रूप हमारे देश में समझा, लेट क्यों आते हैं इसको समझने की कोशिश की, इलाज बीच में छोड़ के क्यों जाते हैं, क्योर रेट कितने हैं, ताकि ये एक तरह से एक बेसलाइन बना है। और अब जो दूसरी रजिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है कि देश के हर बच्चे को हम लोग मैप कर पाएं और उसको उत्तम से उत्तम इलाज दिलवा पाए।
1: वेरी गुड। अगर आज कोई पेरेंट हमें रेडियो पर सुन रहा हो तो आप उन्हें एक लाइन में क्या बताना चाहेंगे मैडम महाजन?
2: कैंसर ऐसा शब्द है जो किसी भी परिवार को, बाल को या एडल्ट को इफेक्ट करता है तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, पर हताश ना हो, कैंसर ट्रीटेबल है, कैंसर क्योरेबल है और इसके लिए बहुत सारी मदद उपलब्ध है, आप उठ के चलिए, हम सभी आपके साथ हैं। सभी माता पिता से निवेदन है कि अगर आंख में सफेद झिल्ली दिखे या कोई भी ऐसा आंख का लक्षण हो तो मेडिकल अटेंशन तुरंत सीख कीजिए। रेटिनोब्लास्टोमा का सही समय पे डायग्नोज होने से और उपयुक्त इलाज से लाइफ, आंख और नजर तीनों को बचाना पूर्णतः संभव है।
1: सोनल जी, आप?
0: मेरा मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए और माता पिता के लिए है कि पैसों की वजह से ना डरें, फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से आप अपने बच्चे के इलाज में कोई कमी ना करें। गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, सपोर्ट सिस्टम्स हैं, पूछिए, बताइए, कांटेक्ट करिए और बच्चे का पूर्णतः इलाज करवाइए।
1: अरतुल आप
3: जी, मेरा जो मैसेज

0: है वो सर्वाइवर्स के लिए होगा, और जो बच्चे अच्छे अगर जो अभी मुझे सुन रहे हैं या ऑन ट्रीटमेंट है या फिर उनके माता पिता, उनके लिए कि कैंसर के बाद भी ड्रीम्स हैं, वो बच्चा जो आपका है वो पढ़ सकता है, एजुकेशन है, फ्यूचर है, सब पॉसिबल है। जैसे मैं आज यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, सारे श्रोताओं के साथ बात कर रहा हूँ, शायद कल मेरी तरह और भी बच्चे बात कर सकते हैं। जर्नी आपकी डिफिकल्ट हो सकती है, बट कभी होप नहीं छोड़ना है।
1: थैंक यू सो मच एवरीवन। रेटिनोब्लास्टोमा रेयर जरूर है, लेकिन अवेयरनेस, टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ चिल्ड्रन कैन कम्प्लीटली सर्वाइव एंड थ्राइव। जरूरत है अर्ली डिटेक्शन की, टाइमली रेफरल की, बेटर ट्रीटमेंट की, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कलेक्टिव नेशनल एक्शन का। अवेयरनेस कैन सेव विजन, अवेयरनेस कैन सेव लाइव्स, और हमें मिलकर इंश्योर करना है 100% एक्सेस फॉर केयर फॉर एवरी चाइल्ड विथ रेटिनोब्लास्टोमा। धन्यवाद, नमस्कार।
2: चाइल्डहुड रेटिनोब्लास्टोमा, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर अमिता महाजन, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, सोनल शर्मा, पेशेंट पेरेंट एडवाइजर एंड को फाउंडर कैन किड्स, अतुल राठौर रेटिनोब्लास्टोमा सर्वाइवर, और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पूनम बगाई, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ कैन किड्स। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: धरती आकाश कार्यक्रम के तमाम श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर फिल्म का एक गीत मुझे आज याद आ रहा है। उसके बोल ऐसे हैं कि ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराएं, मुझको लुभाए हाय, मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। दोस्तों, वास्तव में हरे भरे पेड़ पौधे, खूबसूरत फूल पत्ते और ठंडी साफ हवा के झोंके, इनसे मन मयूर तो झूम उठता है, मगर शहरीकरण और आधुनिकता के दौर में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता सा जा रहा है। वो सुख चैन लुटता सा नजर आने लगा है। जी चाहता है गांव की ओर लौट जाएं, मगर वहां भी तो कमोबेश वही स्थिति है। वहां की आबोहवा भी खराब होने लगी है, प्लास्टिक का कचरा वहां भी बढ़ने लगा है, कुएं तालाब सूखे हुए हैं, कम पानी है या प्रदूषित है। विकास के नाम पर पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अब यहां से जाएं भी तो कहां जाएं? हम क्या उपाय करें कि हम और हमारा पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित रहे? तो आज आइए जरा चर्चा करते हैं विस्तार से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विज्ञान प्रसार के पूर्व निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर जी। आप विज्ञान 2047 के संपादक हैं, शांति फाउंडेशन के CEO और ट्रस्टी भी हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: डॉक्टर नकुल पराशर जी, हमने देखा है कि अब तो हर घर में, एक छोटे से छोटे घर में भी, छोटे से छोटे आय वाले घर में भी, आपने देखा होगा फ्रिज भी है। ये तो घर के बाहर तो होता ही है,
4: जी,
3: घर
4: जी,
3: के अंदर एसी से कूलिंग होती है, फ्रिज के अंदर होता है, लेकिन घर के अंदर ही जो फ्रिज होता है, उससे भी तो पर्यावरण
4: बिल्कुल होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं वो सब पर्यावरण के अंदर अपना जो प्रतिकूल प्रभाव है वो छोड़ते हैं। जमाना था जब एयर कूलर के अंदर घड़े के पानी से और आराम से काम चलता था, और हम एक प्राकृतिक तरीके से अपने घर को ठंडा रखते थे। वो सब माध्यम धीरे धीरे शनै शनै खत्म होते जा रहे हैं। खासकर जो ये शहरीकरण, जहाँ पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे या इंडिपेंडेंट घर भी हुआ करते थे, आज वो सब मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स बन गए हैं। कहने को तो उसके अंदर भले लोग बड़े छोटे सब रहते हैं, पर आप एक बड़ा अजीब सा शब्द लगता है कि बड़े छोटे छोटे एक बॉक्स टाइप के बन गए हैं, जिसके अंदर जाहिर सी बात है कि हवा का कहीं निकासी नहीं है, कहीं वो प्राकृतिक तरीका नहीं है, तो लिहाजा ये होना स्वाभाविक है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारा एक ऑफिस है दिल्ली के अंदर, जहां उस ऑफिस के साथ कई और छोटे छोटे और बड़े ऑफिस हैं, पर उन ऑफिस में हर ऑफिस में एक एसी लगा है और गलियारे के अंदर उनके आउटडोर यूनिट लगे हैं। तो जब आप उसमें से चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी अवन के अंदर से या किसी उसमें से निकल के जा रहे हैं।
3: गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब तो है, ये तो शहर की बात हुई, लेकिन अब धीरे धीरे ये कल्चर, यानी एसी कल्चर कह सकते हैं, वो गाँव तक भी
4: बिल्कुल गाँव के अंदर जिस तरह तरह से कूड़ा कचरा और प्लास्टिक बढ़ रहा है वो इस बात का पूरी तरह से द्योतक है कि हम हर तरह से इसके प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं।
3: रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक एक अहम हिस्सा तो है, लेकिन ये जो बायोडिग्रेडेबल वाली बात होती है ये बहुत कम लोग इस्तेमाल

0: कर सकते हैं,
1: जी
0: करते हैं इसके विषय में, कि लोगों की जो जागरूकता है वो कम है, बस ये सुविधा देखते हैं क्या?
1: नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो कि एक समय था जब हम घर से बर्तन लेके जाते थे, सामान डलवा के खाने का लाते थे। आज ये आलम है कि हम वहां पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि भाई पन्नी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर लपेट के हमें दे दो, और जब हम ले आते हैं घर में बर्तन में डालने के बाद उसको पन्नी को बाहर फेंकते हैं, और वो पन्नी जब कूड़े कचरे में जाती है तब और हृदय में एक अजीब सी चोट लगती है जब आप देखते हैं कि वहां पशु चर रहे हैं, खा रहे हैं। और यही नहीं, वो प्लास्टिक जब जाके नालों में जब अच्छे से फंस जाता है और बरसात के दिनों में वो गंदा पानी इकट्ठा करता है, तो उसके जो दुष्प्रभाव है, दूरगामी परिणाम है, वो ना सिर्फ शहर में बल्कि गांवों में भी अब देखने को मिलते हैं।
0: अक्सर ये कहा जाता है कि अगर इसका उत्पादन बंद कर दिया जाए तो इस्तेमाल भी बंद हो जाए, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, उत्पादन बंद करना तो संभव नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक अब हमारी जिंदगी के अंदर एक ऐसा अभिन्न अंग सा बन गया है, जब तक उसका हम कोई वैकल्पिक स्रोत या कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं तब तक कोई उसका लाभ नहीं। पर हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और खासकर मैं आपके क्षेत्र की तरफ ले जाता हूँ जहाँ मैंने देखा कि अभी भी बड़े बड़े ढाक के पत्तों में, पत्तलों में, और उसमें अभी भी बहुत उसका होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उन सब चीजों को अब हम शहर की तरफ लेके आए।
0: अक्सर देखते हैं कि जो पार्टी वगैरह होते हैं जिसमें जो खाना पीना जो परोसा जाता है वो या तो थर्मोकोल होते हैं या प्लास्टिक की चीजें। वैसे गाँव में देखा गया है कि जो पत्ते से बने पत्तल इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, और वही शुद्धता भी उसी में है।
1: बिल्कुल, और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कई जगह जहाँ अभी भी दोने के अंदर, पत्तल के दोने के अंदर अभी भी चाट वगैरह मिलती है, उसका अपना एक अलग स्वभाव होता है।
0: जी, तो ये तो हम अभी शहरों की बात कर रहे हैं और छोटे छोटे नालों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तटवर्ती इलाकों में यानी कि समुद्री तटवर्ती इलाकों में चले जाए तो वहां पर तो इसका दुष्प्रभाव कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है।
1: बिल्कुल, और गत 2022 में हमने स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर का एक कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर 7,500 किलोमीटर की जो हमारी तटीय सीमा है उस पे हमने सफाई का कार्यक्रम किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर वो कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंदर करीब 2,00,000 से अधिक लोगों ने उसके अंदर प्रतिभागिता की थी। हमने 75 जगहों पे ये कार्यक्रम किया था, तो वहाँ जब मैं और हमारे लोगों ने उसमें काम किया तो हमने टनों कूड़ा इकट्ठा किया, निकाला वहां से, और जो मरीन लाइफ है वो किस तरह से इससे प्रभावित होती है वो देखने को मिला। जब हमने कई जगह देखा कि तट पे आके बहुत सारी मछलियां जो पड़ी थी, और जब उनका विश्लेषण किया गया तो वो प्लास्टिक की वजह से ये हुआ।
0: तो क्या आप इससे, जैसे कि पर्यावरण की शुद्धता की अगर हम बात करें, पानी की शुद्धता की अगर हम बात करें, जो मछलियां हैं, जो मेंढक हैं, जो जलीय जीव हैं, तो इनकी कितनी भूमिका होती है जल को शुद्ध करने में?
1: एक बहुत प्राकृतिक, जिसे कहते हैं नेचुरल क्लींजर होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजों को सोखते हैं जो माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ये अपने आप लेते हैं, और ये पर्यावरण को शुद्ध करने के रास्ते में कई बार स्वयं भी शहीद हो जाते हैं, तो वो बहुत एक हृदय विदारक है। परंतु ये प्राकृतिक वो है, और आज से नहीं, युगों युगों से ये जलीय जीव जो हैं वो नेचुरल क्लींजर का काम करते हैं।
0: जी, अक्सर शहरों में तो तालाब नहीं है या फिर कम जो है उनमें पानी सूखा हुआ है।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन गांवों में जो तालाब हैं उनमें मछली पालन किया जाता है, तो ये तो गांव के लिए तो बड़ी एक वरदान की बात। डॉक्टर नकुल जी, अक्सर देखा जाता है कि जो नदी किनारे जो बसे हुए शहर हैं, नदी किनारे जिन शहरों का उद्भव हुआ है या फिर अभी पल बढ़ रहे हैं, उन्हें आप कितना जिम्मेदार मानते हैं जल प्रदूषण के लिए?
1: करीब पिछले 20-25 साल का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर निरंतर बढ़ोतरी हुई है, और इतने
0: रुकावट नहीं आई है।
1: रुकावट नहीं, मतलब जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता ही गया है उसके अंदर, और जिसके वजह से ये बहुत एक चिंता का विषय है। और हम दूर क्यों जाएं, हमारे शहर दिल्ली के अंदर यमुना को ही देख लीजिए, कितने सालों से कितने प्रयास किए जा रहे हैं, तब भी अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं कि जहां पे हम ये कह सके कि हम जाके यमुना जी में स्नान कर सके। और खासकर छठ के समय एक बड़ा एक अजीब सा दृश्य होता है, बड़ा दुख भी होता है कि जब पानी अगर स्वच्छ हो तो वहां पे अर्घ देने का और उसका जो कार्यक्रम है उसका एक अलग वो होता है। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम उसके प्रति सचेत नहीं होंगे तो हम लगातार इसी पे चर्चा करते रहेंगे और ग्राउंड पे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना, जैसे आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण एक साथ बढ़े हैं, तो उसका जितना भी कूड़ा कचरा निकलता था उसका कहीं प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ, वो सीधे का सीधा नदियों में जाके गिरा। ये तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि कानपुर के अंदर जितनी चमड़े की टैनरीज थी उन पे प्रतिबंध लगाया ताकि गंगा जी के अंदर वो बहुत जाके गिरे नहीं।
0: जी, वैसे देखा गया है, हम सभी जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी घाटी, नदी किनारे ही हुए, और वहाँ उस वक्त तो विकास हुआ था, लेकिन इस वक्त जो विकास हो रहा है वो विकास तो विनाश की ओर जा रहा है।
1: बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इसके लिए हम आप सभी जिम्मेदार भी हैं, और हम आप सब जब तक सचेत होकर आगे नहीं बढ़ेंगे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसलिए हमारा सबका ये प्रयास होना चाहिए कि अपने जीवन में कुछ समय निकाल के इसके अंदर स्वैच्छिक एक वॉलंटियर

0: तरीके से जाके अपना योगदान दें।
1: डॉक्टर नकुल जी, अक्सर हम जब बड़े हो जाते हैं
0: जी,
1: शहरों में आ जाते, तब हमें पता चलता है कि यहाँ वायु प्रदूषण है, यहाँ जल प्रदूषण है। ये बड़े होने के बाद में, शहरों में आने के बाद में, एक पढ़ाई लिखाई के बाद में होता है
0: जी।
1: तो जहाँ पर शिक्षा की बात आती है, तो क्या इसे हम एक जागरूकता अभियान के तौर पर या फिर एक कह सकते हैं कि लोगों को शिक्षित करके नीचे लेवल से, यानी कि प्राइमरी लेवल से ही अगर पर्यावरण के संबंध में अगर स्कूली शिक्षा से ही अगर शुरुआत किया जाए, तो मुझे लगता है कि
0: जब बच्चा पहली बार आता है स्कूल में, तो हमें बहुत सारे जो देश हैं जो इसके प्रति सचेत हैं, जापान है और बहुत सारे यूरोप के देश हैं, वहीं से ये प्रेरणा लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे ये हमें करना चाहिए। और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एनवायरमेंट ना सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बल्कि उसको जब पहला बच्चा केजी में जाता है या मॉन्टेसरी में होता है, तभी से उसमें एक सब्जेक्ट, ऐसा विषय ऐड करना चाहिए ताकि उसके बच्चे के अंदर वो एक जिम्मेदारी का भाव और उसके बारे में प्रति जानकारी बढ़े।
1: डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में आर्द्र भूमि के विषय में घोषणा हुई है, बलिया के सुरहा ताल, यानी कि जिसे कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, उसे 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये बताइए कि जो रामसर स्थल है या फिर जो वेटलैंड है, वो प्रकृति के संरक्षण में या जैव विविधता के संरक्षण में कितने कारगर है?
0: पूरी तरह से कारगर है, क्योंकि यूनेस्को इस दिशा में बहुत काम कर रहा है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि यूनेस्को के 13 ऐसे वेटलैंड्स को हमने देश में उस वक्त करीब 2022-23 में आइडेंटिफाई किया था, और उसके ऊपर एक लंबे सीरियल बनाने की हमारी चेष्टा रही, जो अभी कुछ कंपनीज जो फिल्म कंपनीज है वो बना रही हैं, और उम्मीद है कि उसके ऊपर और जागरूकता और हम ज्यादा उसके ऊपर आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत मटेरियल मिलने को देखने को मिलेगा
1: जी। जहां तक अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी जो समुद्री एरिया है या समुद्री तट है या समंदर की बात कर रहे थे, तो वहां पर मैंग्रोव के पौधे जो है या फिर जो जलीय जो पौधे हैं और जो शैवाल वगैरह सब,
0: जी जी,
1: वो कितने हद तक जिम्मेदार हैं प्रदूषण को स्वच्छ करने में?
0: जो मरीन है, लाइफ है, वो ना सिर्फ बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता को बढ़ाते हैं, बल्कि वो एक नेचुरल क्लींजर की तरह से काम करते हैं, और जितना भी पानी को स्वच्छ करने का उनका जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो करके देते हैं। और उसके अलावा वो, मैं तो एक पुराने अनुभव पे जाता हूँ, जहाँ पे अगर रामायण में आपने वो गिलहरी का प्रसंग सुना है कि वो जाती थी, लौटती थी, वापस आती थी, उसी तरह से ये जो जलीय प्राणी है ये अपना बलिदान करके इस काम में अपना सहयोग करते हैं
1: जी। जैसे कि आज 5 जून है और पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस है, और इस अवसर पर हर जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री का जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, इसके तहत हजारों लाखों पौधे लगाए गए हैं और आज लग भी रहे हैं। इसके विषय में आप जो अभियान चलते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और इस प्रकार के अभियान क्या समय समय पर चलाते रहना चाहिए?
0: मेरे ख्याल से तो ये सतत होने चाहिए, और जिसे कहते हैं कि क्वालिटी शुड नॉट बी अ मोमेंट ऑफ टाइम बट इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, तो ये तो मतलब इसके अंदर किसी तरह का रुकावट नहीं आनी चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी और बाकी सभी लोगों को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि ये जो एक पेड़ माँ के नाम जो है, और हमारे संस्कृति के अंदर माँ का स्थान बहुत ऊंचा है, और उसका नाम लेके ये जो कार्यक्रम शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि हम शीघ्र ही उस जैसा एक बड़ा वन और ग्रीन लैंड देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको याद हो, जो कुछ वर्ष पहले हमारे एक बहुत छोटे से सज्जन थे जिनको पद्मश्री भी मिला, जो असम में जिन्होंने पेड़ लगा लगा के एक बड़ा सा वन तैयार किया था, तो ये तो बहुत ही सुंदर। और ये पर्यावरण दिवस के लिए जो आपने इस बात की चर्चा की, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी ढेरों बधाई
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, और इतनी सारी और इतने महत्वपूर्ण आज के दौर में
0: जी, जी,
1: इस शहरीकरण, आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के दौर में हम ये सब बातें कर रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब एक बात मेरे मन में आ रहा है कि वैसे जब तक किसी कुछ ना कहा जाए तब तक कई बार उधर ध्यान नहीं जाता है, जब तक कोई दिवस नहीं आता तब तक कई बार ध्यान नहीं जाता, ये तो निरंतर, जैसे कि आपने कहा कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों में और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है?
0: देखिए, विज्ञान का जो लोकप्रियकरण है और जो उसका व्यापीकरण है, जो उसका एक्सटेंशन है, उसके अंदर जितने भी माध्यम अवेलेबल हैं, चारों माध्यम, चाहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल, ये चारों माध्यमों के मदद से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए, और इसमें जो विषय वस्तु के जो विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनको तैयार करना चाहिए कि किस तरह से अपने जो कॉम्प्लेक्स समझे जाने वाले साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक आम आदमी की भाषा में उससे जोड़ के उसको पहुंचा सके। और इस माध्यम में आपका ये जो रोल है, रेडियो का जो रोल है, बहुत महत्वपूर्ण है।
1: डॉक्टर नकुल जी, एक प्रश्न चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि इसको प्रोत्साहन के लिए किस प्रकार से मतलब बढ़ावा दिया जा सकता है?
0: तो मैं तो अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है शांति फाउंडेशन को, वो आपसे करूंगा साझा, कि हम हर उस बच्चे को जिसके अंदर हमने, हम छोटी छोटी प्रतियोगिताएं तो करते ही हैं, पर उसके अलावा आम व्यक्ति, आम जनमानस में ये चेतना जागृत करने के लिए, भाई तुम अगर अगर किसी को अपना

0: पहले कहीं से जो कूड़ा गिरता है उसे उठाओगे और दूसरे आदमी को प्रेरित करोगे, तो हम तुम्हारे को एक छोटा सा इंसेंटिव देंगे ताकि आप तुम उसको ले सको। इस तरह की तमाम इंसेंटिव की अगर जो तरीके हैं ना, वो चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो सम्मान हो, या और तरीके से किया जा सके, तो आदमी के अंदर जो इस भावना है पर्यावरण के प्रति मेरा जो दायित्व है उसको अगर वो कर सकेगा तो बहुत बड़ा काम कर पाएगा।
1: जी डॉक्टर नकुल पाराशर जी, चलते चलते आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे श्रोता है उन्हें?
0: मेरा तो छोटा सा संदेश यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से ही आप शुरुआत करें और घर के लोगों में पहले एक चेतनता इसके प्रति जागृत कर सकें, तो वो सबसे बड़ी चीज होगी। क्योंकि आपने कहीं भी देखा है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और पर्यावरण की जो जानकारी है वो बढ़ाते चलो।
1: बहुत खूब डॉक्टर नकुल पाराशर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज एक हरे भरे हरियाली भरी बातें आपने, हमें बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से आपने जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय भी सुझाए। पिछले कुछ जो घटनाएं हुई, जैसे आपने स्टॉकहोम की घटना चर्चा की, इन सब के विषय में बहुत सारी आपने जानकारियां दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स और DRM 810 किलोहर्ट्स पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, 10:10 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे ईमेल पर आधारित आपके कुछ गीत। 9:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं।
4: इंजो दहलीस, दुरूद व सलाम पर शिनवंदगान अज़ीज़। बरनामा सुबह ये माँ दर सात नौ वासी तय गई हिंद, बराबर बा सात हफ्तों सी तय गई तेहरान इला सात याद हिंद, बराबर बा सात नौ तेहरान पश्चिमी शबद। इनक बख्शे फारसी बरून मर्जी आकाशवाणी बरनामा सूब गाहिए खुदरा दर मौज कूता दर रदीफाइए 5,102 किलो हर्ज पश्चिमी कुनाद। बरनामा सुबह रोज माह इबारत आजिया कहंगे हिंदी अखबार हिंदो जहां तराना फारसी तफसीर रोज गुफ्तार इमरूज बरनामा इस पोतलाइट यक तराने फिल्मी तराने हाइये यक फिल्म हिंदी अखबार जहान व दर आखिर खुलासा ये अखबार इंजो दहलीस्त। शुनंदगा नजीर बरनामे सुगाहिरा बा यक आंगे हिंदी शुरू मी कुनी।

देख लिए नो कारदार अमरीकाई जैसान मिक्सरा बराइए एतराज़ शतीदी कर्जन बरसरे हमला दे अमरीकाई बर कश्ती हाइए तिजारी ये हामिले तूफंगदारा ने दरियाई एहजारमी नमाइत तलाश आइए सूल्य से ये गरबी हम चिन्हान शिकानंदेस तौरी के ईरान हीच तस्मी में नहारा मरबूत बेकरारदा दे पीछ नहा शुदय अमरीकाई एलाम नमी कुनद व मिगुयत के मसाइल मुहिम हनू लायन हलस्त दादगाह सियोल रईस जमहूर अजबक कुरै जनूबी यून सूग योल बराइए सी साल दर जिंदन बरसर तहजुम हाइए पहपात दर कुरै शुमाली व सूए इस्तिफादे अस कुदरत महकूमी सजद दर्जा में जहानी ती बीस ते जनाने आई सी सी किश्वर मेज़बान इंग्लिस दर बिरमिंगम बे श्रीलंका बा हश्तादो हाफ दो शिकस्त मीद है वो दरबाजी बैडमिंटन पी वी सिंधु करारस दर मुसाबक नीमे नहाइए बाज ऑस्ट्रेलियाई इमरूद दर सिडनी बा अकाना यामागुची मुकाबले कुनत व इनक मशरू है अखबार नोहद वजी नगई नर मोदी मुशखसात के आज शुमोल माली व काराफरीनी बे तालीम तरबियत बहदाश्त तो दरमन बहदाश मस्कन बाजीहा उलूम हुकूमतदारी जनान यक नक्श बरजस्त दर सरासर बख्शाई मतनव ईफामी नमाइत तय यकपूस रसान आइए इज्तिमाही मोदी गुफ्त के मुशारकत फ़ायंदे जनान दर ज़मीन हाइए नौजहूर आज कबील टेक्नोलॉजी पहपात फुर्सत हाइए ताज़ेरा बाज़मी कुनत व मंजर आइए तोज़ेरा दर सरासर मिल्लत तब्दील भी कुनत व इशारे कर के तकरीबन दवाजह साल गुज़श्ते दौलत एन डी ए बराइए तोसा बिश्तरी बे रहबरी ये जनान कारो कोशिश नमूदियत व इन दर सरासर बख्शा नुमाया नास वजारत उमर खारजा हिंद कारदार सिफारत अमरीकाई जॉनसन मिक्स रा एहराज नमोदियत वो यक एतराज़ शदीदी रादार मोरी दे हमला ते मुदावी में नी रुहाइए दरियाई अमरीका बर कश्तिहाइए तिजारी ये हामिले तुफंगदारा ने दरियाई हिंद दर खलीज ओमान बेमला वुर्द

तूफ़ंग दारान दरियाई हिंद दर खलीज ओमान बे मला बुड इन हम अगनून मुंजरब तलाफात जानी से तन हिंदी गर्दी दयाज नुमाइंदे अमरीकाई तवसुत मुदीर ताफी अमरीकाई दर वजारत उमर खारिज दर दर दहली नो एजार शुद वजारत वजारत आइए यक बयान ये हाकिस के इन यक बार दीगर निगरानिया मीक खुदरा बरसर बेकारगिरी नीरुए कुशंदे व ख़तरनाक अलह हम लो नगल गैर निज़ामी इबलाग नमूद यक दादगाह सियोल रईस जमहूरतबक कुरय जनूबी यौन सूख योलरा बराइए सीसाल महकूम बे जिंदान साख्तियास दादगाह बख्श मरकजी सियोल बे रईस जमहूरतबक जिंदानी बनावे इतहामात सूद रसानी बे दुश्मन सूए सिफात कुदरत महकूम साख्त वजीर दिफाई अजबक किम योंग यू नीर मुजाजात ऐसी सालरा बराइए नक्श उदर अमलियात गिरफ्त दरबाजी बैडमिंटन पी वी सिंधु अजहन तर मुसाबे नीमे नहाइए इनफिरादी ये जनान ऑस्ट्रेलियन ओपन इमरू दर सिडनी बा कहरमान जहानिए जापून अकानी यामा गुची मुकाबले ख्वाद कर बाजिगुन जुमरा से वो महीन जाइए खुदरा दर आखरीन चहार बायक पीरूजी ये खाते बीस तो यक शीश बीस तो यक नौ बरखिलाफ है सुयु तनहा दर बीस तो हफ दकीक़े दर मुसाबका ये रुब नहाई सब कर तयह एक मुसाबका रुब नहाई दीगर यामागुची बे बादिगुने हिंदी तनवी शर्मा बा बीस तो यक चहारदा बीस तो यक चहारदा बराइए तासीस ए मुसाबका नीमे नहाई अलह सिंधु शिकस्त दाद दर मुसाबका गुशाइशी ये दहमीन किस्मत है जाम जहानी ये ती बीस ते जनान आई सी सी मेज़बानी इंग्लिस दर एद बोस्टन दर बिरिंगमिंगन बे श्रीलंका बा हश्तार दो हफ्त दो शिकस्त दर जरब जनी वहले अव्वल इंग्लिस बराइए यक दर बीस ओवरेशान यक स्कोर बुजुर्ग रहा बेदस्त आउट के दौरान दैनी व्यात हॉट जेल बिदोन आउट शुदन यक सदो पंच दो साख सरासर टीम श्रीलंका बराइए यक सदो सी ओ दो दो दर बीस ओवर आउट शुद मुसाबिका ये यक माह तुरानी दर सरासर ब्रितानिया व वेल्स मेज़बानी मिशवत के दरहाली के मुसाबका नहाई दर तारीख पंजुम माह आइंदे दर मैदान क्रिकेट नमादी ने लॉर्ड्स बेमल खादाम वजीर दिफाई राजनाथ सिंह अकीदन गुफ्तियास के अमल कर दे इस्तेसनाई सिस्टम हाई मूशकी दाखिली दर दौरान अमलियात सिंदूर यक शहादत बे तहकी में फजाइंद इको सिस्टम तहकीक़ व तोसे दिफाई हिंदस नुखुस वजीर हिंद नरेंद्र मोदी आज जमहूरी इस्लोवाकी इस तारीख चार दोम ता शाह दो में जुइन दीदन ख्वाद कर बरात इसलावा पायतख्त इस्लोवाकी बराई अंजाम अवलिन दीदार नखुस वजीर हिंद कामिलन आमादे मी बशत नखुस वजीर नारे मोदी मुजाकरातिरा बा नखुस वजीर इस्लोवाकी फीको दर दौरान सफर अंजाम ख्वादत व ज़मीन हाई जदीद हमकारी रा इक्तशाफ ख्वाद कर नुखुस वजीर हमचरीन दर दौरान बाजदीद बाप्रदन पहली ग्रिम मुलाकात गुफ्तगु ख्वाद कर बाजदीद रस्मी नखुस वजीर नज़र बे अफजाइश फजाइंदे दर तजारत दो जानब अरियक मिलियार्ड डॉलर अमरीकाई दर साल 2024 अबूर कर दे व साल गुजश्ते बे यक ममैद हश मिलियार्ड डॉलर अमरीकाई रसीद हाइज अहमियत ज़्यादीस नुखुस वज़ीर-ए-हिंद नरेंद्र मोदी दर

0: स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia.

0: London. घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर,
1: और मैं हूं आज आपके साथ प्रतिभा।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और सिमरन, देखो अपने श्रोताओं को हम ये बता दें कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 KHz पर।
0: और प्रतिभा, देखो घर आंगन का जब शो शुरू होता है तो हमें याद आता है कि देखो आज फिर हमने अपने दोस्तों अपने श्रोताओं से मिलना है, और मिलने की जब बात होती है तो बहुत दिनों के बाद मिलना बहुत ही अच्छा लगता है किसी से, और ये मुलाकातें इतनी अच्छी लगती हैं ना कि मन करता है हम हमेशा मिलते ही रहें अपने दोस्तों।
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल ठीक कहा सिमरन तुमने। देखो सही मानों में घर आंगन जो कार्यक्रम है वो उस कड़ी की तरह है जो हमें हमारे श्रोताओं के साथ हमें जोड़ कर रखा है, हमें बांधे हुए है। ये कड़ी जो है वो हर दिन हर प्रोग्राम के साथ
0: और मजबूत
1: होती जाती है।
0: मैं भी यही कहने वाली थी, क्योंकि और मजबूत के साथ साथ ये भी लगता है कि हमारा और हमारे दोस्तों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है, और यूं ही ये रिश्ता चलता रहे हम ऐसी कामना करते हैं हमेशा के लिए, है ना। क्योंकि आवाज से जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता और उनके मैसेजेस से जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता, दोनों से हम ये चाहते हैं कि रिश्ता यूं ही चलता रहे, हमेशा बरकरार रहे।
1: हाँ देखो ये दो तरफा संवाद है, हम यहाँ से संवाद आवाज के जरिए होता है और वहां से संवाद जो होता है वो प्रतिक्रियाओं के जरिए होता है।
0: और प्रतिभा देखो, कई बार जब वो मिलने की बात जब मैं करती हूँ, हम किसी दोस्त से भी बिछड़े हुए दोस्त से मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये मुलाकात हमें हमेशा याद रहती है कि हम हमेशा अपने दोस्तों से मिलते रहें, याद करते हैं। और देखो मिलने से क्या होता है कि मन भी बहुत खुश होता है और जिंदगी में जो तनाव है आपका स्ट्रेस है वो भी खत्म हो जाता है। तो इससे एक साथ जुड़े रहिए, जुड़ने से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहता है और अच्छा भी लगता है, और आप अपने आप को एक रिलीफ जैसे कहते हैं ना, सुकून भरी जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: भाई देखो जैसे सिमरन हमें इंतजार रहता है ना कि प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे ही हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो श्रोता हैं उनको भी बहुत मतलब उससे इंतजार रहता है हमारा कि कार्यक्रम घर आंगन शुरू होने वाला है, और वो अपना रेडियो सेट अपना मोबाइल फोन ऑन कर बैठ जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: हाँ तो, और देखो हम अब आगे और ढेर सारी जानकारियों के साथ अपने दोस्तों के साथ जुड़ेंगे, तो सबसे पहले खूबसूरत सा गीत हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं।
1: बिल्कुल

0: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी लवर्स।
1: और देखो आज 13 जून है, तो आज 13 जून को कोई खास बात
0: बिल्कुल,
1: भी है और
0: हाँ
1: खास दिन
0: बिल्कुल,
1: भी
0: आज
1: है।
0: खास दिन भी है क्योंकि आज के दिन मनाया जाता है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है ना सिमरन, वो पीड़ित लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित करके 13 जून को इस दिवस के रूप में स्थापित किया था और इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था।
0: और देखो हर वर्ष जो ये जो दिन है वो थीम के तहत मनाया जाता है, और इस बार अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो 2026 है उसका विषय है अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा के रंगों का उत्सव मनाना।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और एक ये अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक जो है रंग द्रव्य कम या नहीं बनता और इसका असर त्वचा, बालों और आंखों के रंग पर पड़ सकता है। कई लोगों को दृष्टि से जुड़ी चुनौतियां भी हो सकती हैं।
0: और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्बिनिज्म जो है वो कोई संक्रामक

0: बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी व्यक्ति की क्षमता या प्रतिभा को सीमित करता है। सही जानकारी, स्वास्थ्य देखभाल, आंखों की सुरक्षा और सामाजिक सहयोग से एल्बिनिज्म वाले लोग शिक्षा, खेल, कला और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये जो दिवस है वो जागरूकता दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें भेदभाव नहीं बल्कि सम्मान और समान अवसर को बढ़ावा देना है।
0: और एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव रखने का ये संदेश देता है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए ये दिन प्रोत्साहित भी करता है।
1: बिल्कुल। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार में की आवाज में गीत फिल्म है थोड़ी सी देर है।

0: और सिमरन, देखो, योग जीवन जीने की और जीवन को साधने की एक ऐसी कला है जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में किया है, और उन्होंने अष्टांग योग को सर्वोपरि बताया है।
1: बिल्कुल
0: अष्टांग योग एक गतिशील और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण योग शैली
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: है ना?
1: और देखो, योग की जब बात की जाती है तो मुझे याद आता है कि योग करने के बहुत ढेर सारे फायदे होते हैं, और योग करना भी देखो बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये नहीं कि मतलब हम सो रहे हैं और हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सुबह की पहली किरण के साथ एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और महसूस कीजिए कि ये है योग। पर योग सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज जीवन जीने का तरीका है, यही है योग की शुरुआत।
0: बिल्कुल। और देखो, हम आज अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अष्टांग योग का अर्थ है योग के 8 अंग। ये योग की वह पद्धति है जिसका उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं, बल्कि मन, व्यवहार और जीवन में संतुलन लाना भी है।
1: बिल्कुल
0: और देखो, अष्टांग योग के 8 नियम हैं, अंग हैं, जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
1: और
0: ध्यान और
1: समाधि।
0: समाधि, है ना?
1: और इन नियमों के द्वारा व्यक्ति जीवन में सही व्यवहार, अनुशासन सीखता है, साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ सांस पर भी नियंत्रण का मार्ग सिखाता है ये योग।
0: बिल्कुल। और देखो, अष्टांग योग इंद्रियों के नियंत्रण में भी सहायक है। मन को ध्यान द्वारा स्थिर कर व्यक्ति एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है, और व्यक्ति चेतना की उस अवस्था में पहुंचता है जिसके द्वारा शरीर और मन दोनों संतुलित होते
1: और
0: हैं।
1: देखो प्रतिभा, देखो तनाव और बेचैनी कम करने में मदद करता है योग, और अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाता है, ध्यान और एकाग्रता बेहतर कर स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में सहायक होता है, और साथ में रिश्तों और व्यवहार में सकारात्मक भी लाता है।
0: बिल्कुल। और देखो, तो अष्टांग योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है जो स्वस्थ तन और संतुलित मन और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी हर जाई।
1: और प्रतिभा देखो, अभी तुमने योग की बात की, योग से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, योग करने के बाद स्वास्थ्य कितना अच्छा हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद आप नींद कितनी अच्छी लेते हैं, गहरी नींद और अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य की निशानी है,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन नींद आने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद लेना बेहतर है, बेहतर है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है। लोग काम, तनाव, सोशल मीडिया पर देर रात तक मोबाइल चलाने की वजह से अपनी नींद को नजरअंदाज कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और देखो मतलब लोग ये जानते भी हैं कि नींद की कमी का सबसे गहरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, इससे एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता दोनों ही कमज़ोर पड़ जाती हैं।
1: और एक रिसर्च के अनुसार नींद के दौरान दिमाग दिन भर यादों के प्रोसेस करता रहता है और उन्हें लंबे समय तक याद रखने लायक बनाता है और आपकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है।
0: और देखो, नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और नींद की कमी से डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।
1: और जब दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो उसकी रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति सही और गलत में फर्क करने में भी मुश्किल हो जाती है उसको।
0: बिल्कुल ठीक कह रही सिमरन। देखो, एक रात की जो खराब नींद जो है ना, वो क्या करती है कि दिमाग में टाउ प्रोटीन का स्तर बढ़ा सकती है, यानी नींद की कमी केवल थकान ही नहीं बल्कि मस्तिष्क रोगों का कारण भी बन सकती है।
1: और देखो, अच्छी नींद के लिए कुछ आसान से टिप्स भी होते हैं। रोज एक तय समय पर सोएं, उठें, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं।
0: और देखो, इनसे तो दूरी बनाए बनाए साथ ही साथ कैफीन या निकोटीन का सेवन जो है वो रात में बिल्कुल ना करें, और कमरे का वातावरण शांत और आरामदायक रखें।
1: और सोने से पहले कोई रिलैक्सिंग सा म्यूजिक और मेडिटेशन भी कर सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और देखो, नींद सिर्फ जो है शरीर को आराम देने का जरिया नहीं है बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल बैलेंस और क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए भी बेहद ज़रूरी है।
1: और जो लोग रोज 7 और 8 घंटे की नींद लेते हैं वो ज़्यादा फोकस्ड, खुश और ऊर्जावान रहते हैं, और जब अच्छी नींद आप लेंगे तो अच्छे सपने भी आएंगे, तो
0: बिल्कुल,
1: अच्छा भी लगेगा आपको। तो अच्छी नींद ही लीजिए और अच्छे सपने भी देखिए। सुनिए हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज में गीत फिल्म है आँखों की जरूरत।

0: प्रतिभा, देखो अब कुछ बात करते हैं कुछ व्यवसाय की, छोटे से लघु उद्योग की, जो हम महिलाओं के लिए स्पेशल खास तौर पर लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे एक छोटे लेकिन लाभदायक व्यवसाय की, जिसमें हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। हमारा विषय है आज का सुगंधित मोमबत्ती निर्माण स्वयं सहायता समूह।
1: और देखो, आज के समय में सुगंधित मोमबत्तियों की मांग लगातार बढ़ रही है और घरों की सजावट, पूजा पाठ, त्योहारों, उपहारों और विभिन्न आयोजनों में इनका व्यापक उपयोग होता है। कम लागत में शुरू होने वाला यह व्यवसाय स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार और आय का अच्छा स्रोत भी बन रहा है।
0: और देखो, स्वयं सहायता समूह और आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।
1: और देखो, जब कुछ महिलाएं मिलकर नियमित बचत करती हैं और सामूहिक रूप से कोई व्यवसाय शुरू करती हैं, तो उनके लिए सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
0: और सुगंधित मोमबत्ती निर्माण ऐसा ही एक व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और सीमित संसाधनों में साथ आप शुरू भी कर सकते हैं।
1: तो अपने श्रोताओं को बता दें, जैसे सभी जानते हैं कि सुगंधित मोमबत्ती क्या है। भाई, सुगंधित मोमबत्ती ऐसी मोमबत्ती होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की खुशबूदार सुगंध मिलाई जाती है, और जब ये मोमबत्ती जलती है तो उसकी सुगंध पूरे वातावरण को महका
0: और
1: भी देती
0: बहुत ही
1: है।
0: अच्छी लगती है उनकी खुशबुएं, जैसे कि आज बाजार में आप लेवेंडर, गुलाब, चमेली, चंदन, वनीला, लेमन ग्रास और कई अन्य सुगंधों वाली मोमबत्तियां उपलब्ध हैं, वो ले सकते हैं आप जाके।
1: और देखो, इनकी जो मांग है, विशेष रूप से त्योहारों, विवाह समारोह, होटल उद्योग, स्पा सेंटर और उपहार बाजार में अधिक रहती है।
0: और एक बात, मोमबत्ती निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जो होती है, अगर सुगंधित मोमबत्ती बनाने के लिए अगर आपने बनानी है या सीखनी है, तो उसके लिए क्या-क्या चीजें जरूरत की हैं वो हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को।
1: हाँ, वो है, देखो वो है।

0: पैराफिन वैक्स या सोया वैक्स, मोमबत्ती की बाती, सुगंधित तेल, रंग, सांचे या कांच के जार, वैक्स पिघालने के लिए बर्तन और पैकेजिंग सामग्री, और इन सभी सामग्रियों को स्थानीय बाजार या ऑनलाइन माध्यम से आप आसानी से खरीद सकते हैं।
1: और देखो, मोमबत्ती बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले वैक्स को गर्म करके पिघलाया जाता है, इसके बाद उसे मनचाही सुगंध और रंग मिलाया जाता है, फिर सांचे या जार में पहले से बाती लगाकर तैयार मिश्रण को सावधानी पूर्वक डाला जाता है, और कुछ घंटों तक ठंडा होने के बाद मोमबत्ती को पूरी तरह से उसमें, वो जो सांचे में डालते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है।
0: और देखो, इसके तैयार होने के बाद इसके जो आकर्षक पैकेजिंग होती है उसको करके उसे बाजार में बिक्री के लिए इसको भेजा जा सकता है, और रोजगार और आय के अवसर। सुगंधित मोमबत्ती निर्माण जो है, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे घर में भी संचालित किया जा सकता है।
1: और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिलकर उत्पादन बढ़ा सकती हैं और बड़े ऑर्डर भी पूरे कर सकती हैं।
0: स्थानीय बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से इन उत्पादों की बिक्री आराम से की जा सकती है।
1: और देखो, वैसे देखा जाए तो त्योहारों के मौसम में भी इसकी कई जो मांग है, कई गुना बढ़ जाती है, जिसमें अच्छी आय भी प्राप्त हो सकती है अगर हम ये काम करें तो, है ना, या कोई भी अगर इस काम को करना चाहे तो।
0: और देखो, डिजिटल युग में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज इतने अच्छे अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं छोटे उद्यमों के लिए, जो उनके लिए नए रोज इन नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: और स्वयं सहायता समूह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं और कई तरह से डिजिटल भुगतान की सुविधा के कारोबार को और भी आसान बनाया जा सकता है, है ना?
0: हाँ, बिल्कुल। देखो, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम जो है, ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। सुगंधित मोमबत्तियों का जो निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है।
1: और जब महिलाएं अपनी मेहनत से आय अर्जित करती हैं तो परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है, वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान देने लगती हैं।
0: और सही कहा जाए सिमरन, तो यही आत्मनिर्भर नारी सशक्तिकरण, मतलब सशक्तिकरण वाली नारी की जो है वो वास्तविक पहचान है।
1: और एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके गांव या क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह सक्रिय है तो आप उससे जुड़कर कई प्रकार के लघु उद्योग की कोई शुरुआत भी कर सकती हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव भी बनती है।
0: और देखो, ये जो सामूहिक प्रयास, मेहनत और सही दिशा में काम करके महिलाएं आर्थिक सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं।
1: और देखो, जैसे सुगंधित मोमबत्ती निर्माण से लघु उद्योग हैं, तो ये साबित करते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास से आत्मनिर्भरता भी हासिल की जा सकती है।
0: देखो, है ना? जो ये जो समूह होते हैं, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को ना केवल आर्थिक मजबूती दे रहे हैं बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दिला रहे हैं।

0: हरे रामा हरे कृष्णा। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: प्रतिमा, मैं ये सोच रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारा मन घर में नहीं लगता जब हम अकेले होते हैं, है ना। और कई लोग ऐसे अकेले होते हैं जिनका मन घर में नहीं लगता, और अकेलेपन को मिटाने के लिए सबसे अच्छा आपका जो अगर साथी है, सबसे अच्छा अगर आपका साथ है वो प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं,
0: बिल्कुल
1: उनके साथ आपका मन लग सकता है और आपका जीवन भी सुकून भरा बीत सकता है और आप खुशी महसूस ऐसी करेंगे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा,
0: बिल्कुल ठीक कहा
1: है
0: सिमरन
1: ना,
0: तुमने। हाँ
1: है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे पालतू हमारे जो जानवर हैं, हमारे पशु पक्षी के साथ अगर समय बिताना, जिसे हम पेट थेरेपी या एनिमल असिस्टेड थेरेपी भी कहा जाता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर खुशी प्रदान करना है। तो पशु पक्षी तनाव कम करने वाले हार्मोन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे फील गुड
0: हाँ
1: रसायनों को बढ़ावा भी देते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: तुमने ठीक कहा। देखो जो हमारे पालतू जानवर होते हैं इनके साथ जब हम रहते हैं तो बहुत हमें, जैसे हमने भी बात की कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि होता क्या है कि जो पालतू पशु पक्षी है अगर उनको गले लगाते हैं, उन्हें सहलाते हैं, तो इससे तनाव और एंजाइटी तुरंत कम हो जाती है। और अपने आप जानवर से, अपने पक्षी से अगर आप, क्योंकि अमूमन हम बात भी करते हैं उनसे, है ना, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो गाना भी गाते हैं, तो वो मानसिक तनाव को दूर करता है और हमारे अकेलेपन की भावना को कम करता है।
1: और देखो जैसे साथ में खेलें उनके साथ, जैसे ना टग ऑफ वॉर या बॉल फेंकने जैसे खेल खेलें जिसमें एंड्रोफिन बढ़ता है और मूड भी बेहतर हो जाता है। रोजाना सैर पर ले जाएं अपने पशु पक्षियों को घुमाने के लिए, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मूड को भी बेहतर बनाएंगे।
0: बिल्कुल। और देखो घर में जब ये हमारे जो पालतू जानवर रहते हैं तो उनके साथ दौड़ने भागने खेलने जैसी कुछ हम उनके लिए एक्टिविटी कराते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में भी काफ़ी हरकत होती है, हम उनके साथ भागते दौड़ते हैं, तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
1: और जैसे खाना खिलाने, टहलाने, जैसे खेल

0: का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें। ये ना हो कि कई बार होता है ना कि उसको स्वस्थ रखता है, अगर आपके समय निश्चित हो तो आपके जो पशु पक्षी वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसके लिए आपको भी एक अनुशासन रहित काम और दिनचर्या रखनी पड़ती है।
1: बिल्कुल, देखो मतलब आप अपने जो जानवर है, आपका जो घर में पालतू जानवर है, उसके साथ आप एक एक रूटीन के साथ काम करते हैं, तो उसकी रूटीन के साथ, उस अनुशासन के साथ आपका जीवन, आपकी जो जीवन शैली है वो भी अनुशासित हो जाती है ना।
0: बिल्कुल।
1: और शोध के अनुसार ये भी पता चला है कि 10 मिनट तक किसी भी पालतू जानवर के साथ समय बिताने से दर्द और तनाव में काफ़ी कमी आ जाती
0: कितनी अच्छी बात
1: है
0: है
1: ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है सिमरन कि इतने ये वफादार साथी होते हैं ना, जो सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में भी मदद करते
0: और
1: हैं।
0: पालतू जानवर हमें अधिक दयालु और संवेदनशील बनाते हैं, जिससे इमोशनल जो इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती है। और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पर अच्छी देखभाल, भोजन, स्वास्थ्य, प्यार करना, उनका जो है ये उद्देश्य को बढ़ाता है, भावना देता है हमें, और खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पशु पक्षियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
1: बिल्कुल। और देखो अगर किसी ने अपने घर में पालतू पशु पक्षी नहीं भी रखा हुआ है, तो आप अपने जो सराउंडिंग में, आपके सोशल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं, तो आप पानी रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं, आप उन्हें खाता हुआ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो खुशी का एहसास होगा।

और देखो सिमरन, आज का जो दौर है वो तकनीक और विज्ञान का है, और ज़िंदगी देखो कितनी आसान हो गई है, लेकिन हमने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के चक्कर में, है ना, किताबों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और किताबों के पन्नों से आती खुशबू, मुड़े हुए पन्ने और किताबों के बीच रखे सूखे फूल, बुक मार्क्स कहीं ना कहीं अपने वजूद को समेटे घर के किसी कोने में शेल्फ

0: पढ़े, यानी कि किताबें
1: लेकिन
0: पढ़ने की आदत छूट गई है।
1: लेकिन किताबें सोच को गहराई देती हैं, कल्पना शक्ति को ऊंची उड़ान देती हैं, पंख देती हैं, और किताबें एकाग्रता, हमारी भाषा शैली, सोच क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
0: बिल्कुल, देखो लोगों ने किताबों की ओर वापसी शुरू कर दी है। सही मायनों में किताबें इंसान की शांत और वफादार दोस्त होती हैं। और देखो साथ ही साथ किताबें मानसिक और व्यक्तिगत विकास की कुंजी भी हैं, जो व्यक्ति को गहरी और सुदृढ़ पहचान देती है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: अगर आप किताबें पढ़ने की आदत से आगे आ गए हैं, वो आदत छूट गई है, तो आप दोबारा से इन किताबों को अपना दोस्त बना लें। शुरुआत धीरे धीरे होगी, लेकिन परिणाम जो होगा वो सकारात्मक और काफी गहरा होगा, है ना।
1: बिल्कुल
0: एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा और समय का बेहतर उपयोग भी होगा।

0: और प्रतिभा देखो अब घड़ी इशारा कर रही कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है, तो हम अपने श्रोताओं से अपने दोस्तों से फिर मिलेंगे घर आंगन के शो में, और इसी के साथ लेते हैं अनुमति
1: तो मुझे यानी प्रतिभा को
0: और सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत

0: होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक एक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a 6-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a 2-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakia.

0: बस तुम रहते हो।
1: श्रोताओं, फिल्म धड़कन को 11 अगस्त साल 2000 में विश्व स्तर पर 250 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। ये एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई और वैश्विक बाजारों में 26 करोड़ की कमाई की। श्रोताओं, ये फिल्म एमिली ब्रॉन्टे की रचना वदरिंग हाइट्स का एक रूपांतरित संस्करण है।

श्रोताओं, बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू, ये हमारे साथ जुड़े हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। गंजूडवारा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता समशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान। श्रोताओं, अगर बात करें फिल्म धड़कन के संगीत की तो इसे संगीत नदीम श्रवण की जोड़ी ने दिया है और बोल समीर के हैं। इस फिल्म के सारे गीत सुपरहिट साबित हुए और साल 2001 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में अलका याग्निक को गीत दिल ने ये कहा है दिल से के लिए पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा साल 2001 में सुनील शेट्टी ने भी फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार जीता और इस फिल्म के ज्यादातर किरदार फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेटेड रहे।

इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। गुरमीत सिंह मीता ये हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से, साथ में अशोक कुमार सहगल और ये जुड़े हमारे साथ शालीमार बाग से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा। संबलपुर कांकर से हमारे साथ जुड़े हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। श्रोताओं, अगर धड़कन फिल्म की कहानी की बात करें तो संक्षेप में फिल्म की कहानी अंजलि यानी शिल्पा शेट्टी और देव यानी सुनील शेट्टी के सच्चे प्रेम से शुरू होती है, लेकिन अंजलि का अमीर परिवार उन दोनों की शादी के खिलाफ होते हैं और परिवार के दबाव में आकर अंजलि देव से अलग हो जाती है और एक अमीर दयालु व्यक्ति राम यानी अक्षय कुमार से शादी कर लेती है। राम अंजलि को बहुत प्यार करता है और उसे अपनी पुरानी यादों से बाहर निकालने का पूरा मौका देता है। कुछ सालों बाद जब अंजलि अपने सुखी वैवाहिक जीवन में रम जाती है, तब देव एक सफल व्यवसायी बनकर वापस लौटता है और अंजलि को वापस पाने की कोशिश करता है। कहानी के अंत में अंजलि अपने पति राम और उनके परिवार को चुनती है और देव भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। श्रोताओं, धड़कन फिल्म अपनी मजबूत प्रेम कहानी, दिल को छू लेने वाले संगीत और त्याग की भावनाओं के कारण बहुत भावनात्मक है। फिल्म प्रेम, कर्तव्य और क्षमा का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।

श्रोताओं, धड़कन एक गहन प्रेम कहानी है और निर्देशक धर्मेश दर्शन ने इसे बखूबी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। इस फिल्म के द्वारा धर्मेश दर्शन कई जगहों पर दिल को छू लेने में कामयाब रहे हैं। शुरुआती दृश्यों में विवाह गीत का सीक्वेंस, उससे पहले शर्मिला टैगोर के दृश्य और दूसरे भाग में सुनील शेट्टी के हिस्से का अभिनय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्देशक अपने काम में माहिर रहे, जिस कारण ये फिल्म हिट साबित हुई।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस ते स्लोवाकिया दे 6 दिना दौरे लई रवाना होए। प्रधानमंत्री ने कहा भारत दे नौजवान विज्ञान तकनालोजी पुलाड़ निर्माण ते ड्रोन वर्गे खेतरां च शानदार प्राप्तियां कर रहे ने। असम च अज सवेरे भारतीय हवाई सेना दा एक AN-32 जहाज हादसाग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज उत्तराखंड दे देहरादून च भारतीय सेना अकादमी विखे पासिंग आउट परेड च शिरकत की। कहा पहली बार महिला कैडटा दा पास आउट होना इतिहासक है। अते पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वालों नवी दिल्ली च उपराष्ट्रपति ते केंद्रीय मंत्रियां नाल कई महत्वपूर्ण मीटिंगां। शासन, सभ्याचार, खेडां ते कानूनी बुनियादी ढांचे नाल संबंधित मामलियां ते कीती चर्चा। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस ते स्लोवाकिया दे 6 दिना दौरे लई रवाना हो गए ने। प्रधानमंत्री अज शाम फ्रांस दे नीस पहुंचणगे। ए दौरा यूरोपियन यूनियन नाल अपनी व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं अगे वधाउण प्रति भारत दी वचनबद्धता नूं वी दोहराएगा। ए उन्हां दे फ्रांस ते स्लोवाकिया दे दौरे दी शुरुआत होवेगी। फ्रांस विच प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन च हिस्सा लैणगे अते दोवां देशां दरम्यान रणनीतिक सहयोग वधाउण लई दुवल्ली गल्लबात करनगे। अपने रवानगी समें बयान च श्री मोदी ने कहा कि फ्रांस रणनीतिक दृष्टिकोण तों भारत लई खास तौर महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत फ्रांस दरमियान आर्थिक सभ्याचारक संबंधा मजबूत करना है। श्री मोदी कल फ्रांस के

0: राडार सैटेलाइट ड्रोन सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेस में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है।
1: भारत ने अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है जिनमें तीन भारतीय अमले की मौत हो गई थी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और कहा कि तजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान साहिल के करीब पलाव के झंडे वाले टैंकर माउंट सेटेबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के तीन भारतीय अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है और नई दिल्ली के सख्त रद्देअमल की वजह बने हैं। उमूर खारिजा की वजारत ने आज बताया कि बहरी जहाज लियाकी फ्रीडम में भारतीय जहाजरानों की मौत की खबर सही नहीं है। वजारत ने बताया कि उसने लियाकी फ्रीडम बहरी जहाज के मास्टर से बात की है जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अमले के सभी अरकान महफूज हैं। एमईए के हकाइक का पता लगाने से मुतालिक महकमे ने अवाम पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर फराहम करदा इस तरह के झूठे और बेबुनियाद दावों और पोस्ट के खिलाफ होशियार रहें। आज सुबह आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर भारतीय फजाइया का एक AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। भारतीय फजाइया ने बताया है कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है। अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला में मुबतला 689 अफराद की तस्दीक हुई है जिनमें 139 अमवात भी शामिल हैं। सेहत से वाबस्ता अहलकारों के मुताबिक इतूरी सूबे से 17 नए केसों और मजीद 5 अमवात की तस्दीक हुई है। हुकाम ने दवाओं की फराहमी में किल्लत, इलाज मुआलजे की महदूद सहूलियात और 2,15,00,000 डॉलर की रकम की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकावती रिश्तों को तकवियत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के एवियों में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेर क़यादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीका की बहरिया की कार्रवाई पर सख्त एहतजाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leaves on a 6-day visit to France and Slovakia. Says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia on a 6-day visit. In his departure statement, Mr. Modi highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Prime Minister Modi will arrive at Nice.

0: के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आई में स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे

0: अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण

0: तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमने पर्दा हटा दिया है और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार। स्वीकार कीजिए हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, और हम भी पर्दा हटा देते हैं और आपको बता देते हैं कि आज के हमारे एक ही कलाकार फिल्म में ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें आज के हमारे कलाकार कौन हैं। और वो कलाकार वही हैं जिनकी जादुई कलम से इस गाने के बोल निकले हैं। और इस गाने को जो आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, गाया है आशा भोसले जी ने और मोहम्मद रफी साहब ने। जी हाँ, कौन है कलाकार बताएंगे आपको इस गाने के बाद, बने रहिए हमारे साथ।
1: माँ को भी समझा।

एक फूल दो माली, इस फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं और इस गाने के गीतकार हैं प्रेम धवन साहब, जो कि हैं आज के हमारे कलाकार।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबा समय गुजर जाने के बाद भी अपनी प्रतिभा के बलबूते, अपनी कलाकारी के बलबूते दर्शकों के दिलों में हमेशा ही बने रहते हैं। एक ऐसे ही कलाकार थे प्रेम धवन साहब, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते थे। उन्होंने संगीत जगत में और ऐसे ऐसे दिल को छू जाने वाले गीत लिखे हैं, चाहे वो देशभक्ति से ओतप्रोत हों या फिर प्रेम गीत हों। और इसके अलावा उन्होंने कोरियोग्राफी के क्षेत्र में भी शानदार छाप छोड़ी है। वैसे तो प्रेम धवन की पहचान एक गीतकार के तौर पर रही है, लेकिन उन्होंने संगीतकार के तौर पर और कोरियोग्राफर के तौर पर भी बहुत ही अच्छा काम किया है। और आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज के ही दिन यानी 13 जून 1923 को प्रेम धवन साहब का जन्म अंबाला में हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले उनकी कलम से निकला एक देशभक्ति गाना आपको सुनवाते हैं।

प्रेम धवन साहब का जो बचपन है ना, तो बचपन से ही वे कला और संस्कृति की ओर उनका रुझान था। उनके पिता जेल सुपरिटेंडेंट थे और उनकी नौकरी के कारण परिवार को कई बार कई अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। और बाद में जब उनका परिवार लाहौर पहुंचा और जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की, तो आपको जान के हैरानी होगी कि लाहौर कॉलेज में उनके सहपाठी थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और साथ ही में साहिर लुधियानवी साहब, जिन्होंने आगे चल के अपने देश के लिए और साहित्य के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसके बाद युवावस्था में ही प्रेम धवन साहब स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने इप्टा यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का हिस्सा बन गए और यहाँ पर उन्होंने नाटक, गीत और नृत्य के जरिए लोगों में आज़ादी की चेतना को जगाने का काम किया। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले एक और भी प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं जो कि देशभक्ति गीत है और इस गीत को भी लिखा है प्रेम धवन साहब ने।

और इसी बीच आपके संदेश ईमेल के माध्यम से लगातार हमारे पास आ रहे हैं और ये बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु विधान खुराना का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि आज आप एक ही कलाकार कार्यक्रम में प्रेम धवन जी के बारे में उम्दा जानकारी दे रहे हैं और उनका एक देशभक्ति गीत ऐ मेरे प्यारे वतन ज़रूर सुनवा दें। तो दोस्तों ये गीत तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पहले ही सुनवा दिया। ऐसे ही आप कार्यक्रम सुनते रहिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ, और आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने गीतकार प्रेम धवन। और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि प्रेम धवन साहब की बॉलीवुड में यानी फिल्मी दुनिया बॉम्बे में कैसे शुरुआत हुई। दरअसल सबसे पहले जब प्रेम धवन मुंबई आए और शुरुआती दौर में उन्होंने गीतकारों और संगीतकारों के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया, और फिर वो साल था 1946 जब गीतकार के रूप में उनकी पहचान बनी थी। उस फिल्म का नाम था जिद्दी, और इसके अलावा फिर तो सिलसिला यूं ही चल पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत सी फिल्मों के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे अच्छे से सुपरहिट गाने लिखे, और धीरे धीरे उन्होंने कई बड़े संगीतकारों जैसे कि सलिल चौधरी, अनिल विश्वास, रवि और चित्रगुप्त के साथ काम किया और हिंदी सिनेमा को बहुत सारे यादगार गीत दिए। और प्रेम धवन को विशेष तौर पर देशभक्ति गीतों के लिए याद किया जाता है, जो कि अभी आपको हमने सुनवाया फिल्म शहीद में उनके द्वारा लिखा गया गीत मेरा रंग दे बसंती चोला। और ये गाना सुनकर आज भी हमारे दिल में अपने देश के प्रति सम्मान और जोश भर जाता है। और दरअसल उनकी जो रचनात्मकता है, उनकी जो प्रतिभा है, वो सिर्फ गीत लेखन तक सीमित नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कई फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी की और अपनी नई प्रतिभा का परिमार्जन किया। एक ऐसी ही सुपर डुपर फिल्म आई थी नया दौर, और इस फिल्म के गानों की कोरियोग्राफी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको नया दौर फिल्म से ही एक गाना सुनवाते हैं जिसकी कोरियोग्राफी प्रेम धवन साहब ने की थी।

और इसी बीच आपके कुछ संदेश ले लेते हैं। एक मैसेज आया है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी का बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। और इन्होंने लिखा है कि प्रेम धवन जी पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। गीत, जानकारी और रोचक किस्से हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। आपकी उत्तम प्रस्तुति है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अरे जी, धन्यवाद तो आपका है, क्योंकि आप जैसे अच्छे श्रोता हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं और हमें फीडबैक जो देते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम को सुनते रहिए।

आर ढिंगिया का, और इन्होंने भी लिखा है कि कार्यक्रम वे सुन रहे हैं और उनको इस कार्यक्रम की प्रस्तुति बेहद पसंद आ रही है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

और एक और मैसेज आया है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम का, और इन्होंने लिखा है आपको प्रेम पूर्वक आदाब। जी आपको भी आदाब, और कार्यक्रम की इन्होंने प्रशंसा की है, धन्यवाद।

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में आप ये जो गाना सुन रहे हैं, ये फिल्म नया दौर से है और इस गाने की नृत्य निर्देशन, जिसको हम अंग्रेज़ी में कोरियोग्राफी कहते हैं, कोरियोग्राफी की थी प्रेम धवन साहब ने। और इसी बीच हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। इन्होंने लिखा है कि आदरणीय अरुणेश कुमार द्विवेदी जी, सादर प्रणाम जी, आपको भी प्रणाम। कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है। प्रेम धवन जी के बारे में आप जो जानकारी दे रहे हैं वो भी पसंद आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणीश कुमार के साथ। और आज के हमारे कलाकार हैं प्रेम धवन साहब, और उनके जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प घटना और भी है। दरअसल एक बार हुआ यूं कि जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुरैया, वे फिल्म मोती महल की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन उनको सेट पर पहुंचने में देरी हो गई। और देरी क्यों हुई? क्योंकि उनकी कार रास्ते पे खराब हो गई थी। और जब उन्होंने ये बात अपनी टीम को बताई और प्रेम धवन साहब ने जब इस बात को सुना, तो उन्होंने उनके इस अनुभव को गीत में ही

बदल दिया और उन्होंने लिख दिया एक गाना जिसके बोल थे, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रास्ते में। और ये गीत 1 दिसंबर 1952 को रिलीज हुआ और बेहद ही लोकप्रिय हुआ। तो प्रेम धवन साहब सिर्फ फिल्मी गीते ही नहीं बल्कि सामाजिक विषयों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और देशभक्ति फिल्मों के लिए भी वे लिखते रहे। और हमारी सरकार यानी भारत सरकार ने 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। और एक दिलचस्प बात अगर मैं आपको बताऊं कि हम सब ने अपने बचपन में एक गाना जरूर सुना होगा, चंदा मामा दूर के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गाना फिल्म वचन का है जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को जो वचन है, इस फिल्म के जो ये गाना है चंदा मामा दूर के, पुए पकाए नूर के, ये लिखा था प्रेम धवन साहब ने। और ये एक लोरी है जो जिसे हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं यही प्यारा सा नगमा। आशा भोसले जी की आवाज़ है और फिल्म का नाम है वचन। गीतकार हैं प्रेम धवन साहब।

और संदेश आया है और इन्होंने थोड़ा सा उलाहना एक तरीके से दिया है कि आप हमारे संदेश को शामिल क्यों नहीं कर रहे, हम बार बार आपको ईमेल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सभी श्रोता बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और ये संदेश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इशहाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, नीलोफर, अल्ताफ, और छत्तीसगढ़ से ही रायपुर से मैसेज आया है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा जी का।

और एक और संदेश आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। इन्होंने लिखा है कि प्रेम धवन जी के बारे में जानकारी अच्छी लग रही है और उनके द्वारा लिखे गए गाने जो आप सुनवा रहे हैं वे हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।

संदेश ले लेते हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फर्राज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का। इन्होंने लिखा है कि आदाब, आपका ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो गीत आप सुनवा रहे हैं, वो बेहद पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, प्रेम धवन साहब ने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। उन्हीं में से एक गाना है, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ये गाना है और ये फिल्म पवित्र पापी से है, जो कि 1970 में रिलीज़ हुई थी। और

0: मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला।
1: दोस्तों अब मेरे भी चलने का समय हो रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम से आपसे अलविदा लेता हूं और बहुत दूर नहीं जा रहा हूं, फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर किसी न किसी कार्यक्रम में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश कुमार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो ये जेठ को परम पावन महीना चल रहा है, कहावत है ना, आम के आम और गुठलीन के धाम, ब्रज धरा में या वखत पूरी तरह ते ना फलित होए रही है।
1: जी हाँ चंपा जी, जो ब्रज में आए रहे हैं वे सब श्रद्धालु इतना आनंद लूट रहे हैं कि उनको पतो ही ना चल रहे हो कि जेठ मास की दोपहर ही है, कि यहाँ पे कोई होली चल रही है कि दीपावली चल रही है, सब आनंद ले रहे हैं।
0: और हम अपने श्रोता भैया बहनान को एक बात और बता में कि जो ये जेठ को महीना है ना, ये ब्रज धरा में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ये महीना है ना जल पर्वन को महीना है। चाहे आप नौका विहार हो रहे, चाहे फुहारे चल रहे हैं, आप देखो कि इतने मनोरथ जल पर्वन के ब्रज में हो रहे हैं कि उनकी वानगी ना देखते ही बन रही है।
1: जी हाँ चंपा जी, देखो जल पर्व भारत की अपनी संस्कृति को अंग है। हम चाहे केरल के जल उत्सव देखें, चाहे हम कर्नाटक के देखें, यानी पूरे भारतवर्ष में, पूरे पूर्वोत्तर में जल उत्सव मनाए जाएं, पर हमारे श्रोता भैया बहन जान के बड़े आनंदित होंगे कि ब्रज में जितने सरोवर हैं, कुंड हैं, तालाब हैं, और यही के संग माँ यमुना है, इन सब जगह पे जल उत्सव है रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, मैया यमुना की बात चले तो गंगा मैया को जिक्र तो अपने आप आएगो, क्योंकि दोनों सगी बहन हैं, गंगा मैया यमुना मैया, तो आप

0: देखो कितनी विलक्षण परंपरा है कि ब्रजभाषा के कवि पद्माकर ने तो देखो अपनी काव्य रचना करी है गंगा लहरी, बामे गंगा मैया के बड़े प्रवाह यानी बेग को, उनके पावन जल को, गंगा मैया की महिमा को ना, और उनको जो अद्भुत सौंदर्य है बाको सजीव प्रस्तुतिकरण करो है।
1: जी हाँ चंपा, पद्माकर जी ने जो गंगा लहरी लिखी है वह गंगा लहरी में गंगा मैया की स्तुति और मन मोहिवी वाली ब्रजभाषा को इतनो सुंदर वर्णन करो है, इतनो सुंदर प्रयोग करो है कि कलकल बहवी वाली जो हमारी गंगा मैया है
0: ध्वनि उनकी,
1: हाँ उनकी वह ध्वनि को उनने शब्दन में ऐसो पिरोए दियो है जो सबको आकर्षित करे है।
0: नृत्य गोपाल जी, गंगा मैया के पतित पावन स्वरूप के काजे तो कहो गयो है, उनकी सरस धारा और निर्मलता के काजे ये बात कही गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और आप ये देखो कि गंगा मैया की जो पावन धारा की हम बात कर रहे हैं तो ये ना हमारे भारत भूमि के बड़े भूभाग की ना आजीविका को बड़ो स्रोत है, यानी कि अर्थ को आधार है।
1: जी हाँ चंपा, हमारे किसान भैया बहनान के ताई तो यह साक्षात जीवन दायिनी है और यही सो पद्माकर कवि ने लिखो है कि जमपुर द्वारे लगे तिनमे किवारे को है ना रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, कहे पद्माकर तिहारे प्रणधारे तेउ कर अधिमारे सुरलोक को सिधारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे और जीते तुम तारे तीते नभ में न तारे हैं।

0: प्यारे भैया बहनाओं और भाई आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते। नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारी ब्रजधारा की वानगी है ही ऐसी कि ब्रजधारा को जो आकर्षण है, यहाँ की जो मन मोहिनी छवि है ना, वो सबको अपने आकर्षण में ऐसे ही बांधे है।
1: जी हाँ चंपा जी, देश के हों या विदेश के हों, इतने श्रद्धालु यदि ब्रज में आमे हैं, जो विचारक हैं वो उन बातन को कहे हुए हैं, बतामे हुए हैं।
0: तो नृत्य गोपाल जी चाहे देश को

0: श्रद्धालु है चाहे विदेश को है, अगर वा को इतनो अटूट प्रेम रज धराते है तो कछु ऐसी ही चर्चा की ओर अपने भैया बहनान को ले चले।
1: जी हाँ चंपा जी अवश्य ले चलो।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओ, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये भेंट वार्ता जाको विषय है पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की दृष्टि में ब्रज। यह विषय पे डॉक्टर योगेश पांडे जी ते बातचीत कर रहे हैं नृत्य गोपाल जी।
1: श्रोताओ ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज हमारे संग हैं डॉक्टर योगेश पांडे जी। डॉक्टर योगेश पांडे जी स्टूडियो में आपको स्वागत है, अभिनंदन है।
2: सभी श्रोताओं को मेरी राधे राधे।
1: डॉक्टर पांडे आप इन दिनों पाश्चात्य और भारतीय विचारकों की दृष्टि में ब्रज इसको लेके कई शोध कार्य आपके प्रकाशित हुए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से विचारक हैं जिनको केंद्र में रख के आप इन सब चीजों का चिंतन कर रहे हैं।
2: जी नृत्य गोपाल जी, इन दिनों जिनका मैंने अध्ययन किया है वो ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के विद्वान है रिचर्ड बार्ज, टोक्यो की तेजी सकाता, रूस के साजानो और जर्मनी के रोनाल्ड बियर। इन चार विद्वानों का अध्ययन मैंने जो पाश्चात्य विद्वान हैं इस दौरान किया है। और भारतीय विद्वानों की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हाल ही में विद्यानिवास मिश्र जिनका विशद कार्य है कृष्ण काव्य को लेकर, इन विद्वानों का अध्ययन मैंने किया है इस दौरान।
1: जी निश्चित रूप में हमारे जो श्रोता हैं वो सब मुझे लगता है कि जो हिंदी के या हमारे भारतीय विद्वान हैं उनसे लगभग परिचित हैं। डॉक्टर पांडे ये जो पाश्चात्य विचारक हैं उनका कृष्ण संबंधी और ब्रज संबंधी उनकी मान्यता कैसी है?
2: जी जो पाश्चात्य विद्वान है जब वो अध्ययन करने जाते हैं कृष्ण काव्य के तो केंद्र में सूरदास को रखते हैं, सूर सागर को। इसी दौरान रूसी भाषा में जो सूर सागर का अनुवाद करने वाले विद्वान साजानोवा हैं वो सूर काव्य को वात्सल्य की दृष्टि से देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें जर्मनी भाषा में सूर सागर का अनुवाद करने वाले रोनाल्ड बियर का, तो वो सूर के काव्य को सच्ची लोकवादी कला की अभिव्यक्ति मानते हैं।
1: सूर के काव्य की ये विशेषता बताते हैं।
2: बिल्कुल सर
1: जी।
2: उसके साथ ही अगर हम बात करें तेजी सकाता की तो वो कृष्ण काव्य को संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकर बताती हैं।
1: तेजी सकाता जापान से।
2: जी जापान से।
1: जी
2: और वहीं रिचर्ड बार्ज जो हैं वो कृष्ण काव्य में कुंभन दास एक कवि हुए हैं, संतन को कहां सीकरी सो काम उनका हमने ये पद हमेशा सुना है पढ़ा है।
1: जी
2: वो उनको धरती का नमक कहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज हमारे देश दुनिया के लिए। धरती का नमक पाश्चात्य का एक मुहावरा है लोक का।
1: यानी अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलियाई विद्वान हैं वो हमारे कृष्ण भक्त कुंभन दास को इतने बड़े स्वरूप में देखते हैं कि उन्हें धरती के नमक की संज्ञा देते हैं। जो आपने अभी संदर्भ जिस पद का लिया, संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हर नाम, जिनके मुख देखे दुख लागे उनको कीनी परी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधरविन यह झूठो धन धाम। तो कुंभन दास की ये जो बेवाक तरीके की अपनी प्रवृत्ति रही है और सिर्फ गिरधर लाल के लिए ही उनका जो समर्पण है, ऑस्ट्रेलियाई विद्वान देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
2: इस चीज को वो ध्यान में भी रखते हैं और धरती का नमक उनको संज्ञा देते हैं उनको कि वो समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो भी भक्ति नहीं करते बल्कि समाज को निर्भीकता सिखाते हैं, कैसे सामने कोई भी सत्ता हो उसके सामने निर्भीकता के साथ कैसे खड़ा रहा जा सकता है और अब लोक के लिए अपना समर्पण किया जा सकता है, इस बात को दिखाते हैं वो, उससे प्रभावित होते हैं ऑस्ट्रेलियाई विद्वान।
1: जी डॉक्टर पांडे कोई ऐसी बात जो आप ये कहें कि देखिए पाश्चात्य विचारक इन्होंने ये बात कही है ब्रज को लेके या कृष्ण को लेके, कुछ ऐसी बात आपको याद आ रही है, कुछ ऐसे उदाहरण याद आ रहे हो ब्रज भाषा की दृष्टि से जब बात करेंगे?
2: हाँ, जो जापान के विद्वान है तेजी सकाता वो जब सूरदास का जो साहित्य है उसका अध्ययन करती हैं तो संस्कृत साहित्य का उसका प्रभाव, संस्कृत भाषा का जो उस पर प्रभाव है उसको देखती हैं और वो बताती हैं कि जो संस्कृत के शब्दों को ग्रहण करने के बाद भी जो सूरदास की भाषा है वो सरल और मधुर बनी हुई है, इसके पीछे सूरदास की संस्कृत और लोक भाषा में समन्वय करने की चेतना ही काम करती है। और वो बताती है कि संस्कृत शब्दों को ग्रहण करते हुए सूरदास दो प्रक्रिया अपनाते हैं, एक चयन प्रक्रिया एक समीकरण प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में क्या है कि ब्रजभाषा की ध्वनि निकट वाले संस्कृत शब्दों का चयन करते हैं वो, जैसे मोहन हरि गोरस पय चित मन। वहीं अगर हम समीकरण प्रक्रिया की बात करें तो संस्कृत शब्दों को ब्रजभाषा के गठन के अनुकूल बदल लेते हैं, जैसे कृष्ण का कृष्ण हो गया, श्याम का श्याम हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, हृदय का हृदय हो गया। तो इस तरीके से जो बदलाव की प्रक्रिया है संस्कृत शब्दों की ब्रजभाषा में उसका भी अध्ययन तेजी सकाता करती है।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जो ब्रज माधुरी के श्रोता है उन्हें भी इस संदर्भ में सोचना होगा था कि जापान की एक विदुषी जब ये देखती हैं कि सूरदास की जो भाषा है वह भाषा मात्र ऐसी ही नहीं है,

0: लोक के निकट जाती है, और वह जब भाषा वैज्ञानिक रूप में संस्कृत के निकट जाती है और सूरदास उसमें से शब्द चयन करते हैं तो उनका अलग अलग वर्गीकरण भी उन्होंने किया है। डॉक्टर पांडे, ये तो हुई पाश्चात्य विद्वानों की बात या पाश्चात्य विचारकों की बात, आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपने समय के आप कहें कि बहुत हमारे आदर्श स्थापित करते हैं ऐसे कुछ भारतीय विचारकों का उल्लेख आपने किया कि आप उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनमें कौन कौन नाम आपने लिए?
1: जी, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र।
0: आप इनमें से किससे सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्या इन लोगों की महत्ता है?
1: जी, हजार प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब मैंने विद्यानिवास मिश्र को पढ़ा तो मैं प्रभावित हुआ कि इतने बड़े विद्वान जिन्होंने कृष्ण काव्य पे इतना अध्ययन किया है उसको अभी तक प्रकाश में नहीं लाया गया, और वो कृष्ण काव्य को संपूर्णता में देखते हैं, सिर्फ भक्ति साहित्य या मध्यकालीन भक्ति साहित्य की बात नहीं करते, वो श्रीमद् भागवत पुराण की तरफ भी जाते हैं, उससे पूर्व जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं कृष्ण काव्य से संबंधित उसका अध्ययन करते हुए तब भक्ति साहित्य तक आते हैं, और वे कहते भी हैं कि मैं श्री कृष्ण चरित्र को अखंड रूप में देखने में सुख पाता हूँ, उसको मैं विभाजित करके नहीं देखना पसंद करता।
0: यानी विद्यानिवास मिश्र ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण के समग्र व्यक्तित्व को यदि अखंडता में देखा जाए,
1: जी,
0: यानी ब्रज से लेकर के और द्वारका तक या कुरुक्षेत्र तक उसकी समग्रता एक में है।
1: कृष्ण सिर्फ वहाँ पे कहते हैं कृष्ण सिर्फ सत्ता नहीं है, वो इतिहास पुरुष नहीं, वो भाव है जो पूरे भारतीय मानस में विद्यमान है, तो उस भाव को पहचानते हैं वो।
0: आचार्य विद्यानिवास मिश्र का कोई चित्र हमारे सामने उभरता उनके नाम के साथ तो हम ये देखते हैं कि वो बहुत बड़े एक निबंधकार के रूप में सामने होते हैं, वो एक बड़े भाषाविद के रूप में हमारे सामने होते हैं, एक संस्कृति चिंतक के रूप में सामने होते हैं। तो जब ये कृष्ण और ब्रज की चर्चा करते हैं तो क्या निबंध के माध्यम से या आलोचना के माध्यम से कैसे कर रहे हैं?
1: वो अपने निबंधों में या जो पुस्तकें लिखते हैं उसमें कहते हैं कि मैं अपने आप को आलोचक नहीं मानता
0: जी,
1: लेकिन मैं उन दृष्टियों को उजागर करना चाहता हूँ कि जो आलोचक नए आए उनके सामने नई दृष्टि आए, वो नए परिप्रेक्ष्य में पूरे कृष्ण साहित्य को देखें। इसके लिए वो तीन भागों में विभाजित भी करते हैं, श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद और भक्ति साहित्य, जो मध्यकालीन भक्ति साहित्य है, तीन दृष्टियों से अध्ययन करते हैं वो, तीन कालों का,
0: यानी तीनों दृष्टियों से उसका अध्ययन करते हैं
1: जी।
0: डॉक्टर योगेश पांडे जी, आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े संस्कृति चिंतक हैं, लेकिन हम संस्कृति के पक्ष से देखें तो उतने ही बड़े विद्वान के रूप में या उनसे कहीं और भव्यता के साथ जो एक व्यक्तित्व उभरता है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उभरता है
1: जी, बिल्कुल,
0: क्योंकि वो संस्कृत के भी उद्भट विद्वान हैं और हिंदी के लिए या अन्य जो हमारी हिंदी की भाषाएं हैं या पूरे भारतीय भाषाओं के साहित्य को लेकर के उनका अध्ययन बहुत गहन है, विस्तृत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्रज और कृष्ण को कैसे देखते हैं?
1: जी, जैसे हम विद्यानिवास मिश्र से द्विवेदी की तरफ आए तो विद्यानिवास मिश्र भी इस बात को मानते हैं कि मैं चाहे अपनी आलोचना की बात करूं या निबंध की बात करूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव मुझ पर बहुत अधिक रहा है। स्वयं भी निबंधकार थे और हजार प्रसाद द्विवेदी निबंधकार थे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी कृष्ण पे आलोचना लिखते हैं, विद्यानिवास मिश्र भी लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं हजार प्रसाद द्विवेदी की तो वो भी विद्यानिवास मिश्र की तरह भारतीय चेतना का सहज विकास मानते हैं कृष्ण काव्य को, वो ऐसे कि किसी बाहरी प्रभाव से जो उद्भव कोई काव्य नहीं मानते बल्कि कहते हैं कि भारतीय चेतना का ये सहज विकास है और उस रूप में देखते हैं और कहते हैं कि जो हमारा कृष्ण काव्य है उसने जीवन के प्रति अनुराग और उल्लास जागृत किया है।
0: भारतीय समाज में जीवन का जो उल्लास निर्मित हुआ है, ये जो उल्लास में हमारा एक चिंतन है उसका बहुत कुछ श्रेय वो कृष्ण काव्य को,
1: देते हैं और कृष्ण कवियों को देते हैं जो कृष्ण आधारित काव्य की रचना करते हैं।
0: डॉक्टर पांडे, चर्चा बहुत गंभीरता की ओर बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि इस बीच में आपकी पसंद का कोई हम लोक गीत सुन लें।
1: जी, मदन मोहन ब्रजवासी का कोई अगर गीत यहाँ पे चल जाए
0: तो आओ श्रोताओं सुने मदन मोहन ब्रजवासी के में ये 1100 ब्रज लोक गीत।

0: जी हाँ श्रोताओ, अभी आप सुन रहे मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में ये बहुत मनोहर सो ब्रज लोकगीत, जाकी की इच्छा व्यक्त करी डॉक्टर योगेश पांडे जी ने। और योगेश पांडे जी के साथ हमारी या समय चर्चा है वह चल रही है। डॉक्टर योगेश पांडे, आपसे जो चर्चा चल रही है उसमें आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्या निवास मिश्र जी की बात की, जबकि हम एक और जो बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है, विशेषतः इतिहास की दृष्टि से जब जब हिंदी की चर्चा होगी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक मानक के रूप में हमारे सम्मुख रहते हैं। कृष्ण और ब्रज और ये इसकी मनोहारी छवि और इसकी महत्ता को लेके एक इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या मान्यता है?
1: जी, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब हमने बात की तो हमने कहा कि वो अनुराग और उल्लास जागृत करते हैं
0: जी
1: भारतीय जनता में, वैसा ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि जो कृष्ण काव्य है वो लोक रंजन का काव्य है। जिस समय में बाहरी आक्रमणकर्ता भारत पर आक्रमण करते हैं उस समय कृष्ण काव्य ही था जिसने भारतीय जनता के हृदय को संभाला
0: जी।
1: लेकिन वो यहाँ पे जो लोक रंजन तक सीमित कर देते हैं और राम काव्य को लोक मंगल की तरफ ले जाते हैं, इस बात को अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँ, विद्या निवास मिश्र इसका विकास करते हैं
0: जी।
1: वो कहते हैं कृष्ण काव्य जो है वो सिर्फ लोक रंजन का काव्य नहीं है, वो लोक मंगल का काव्य भी है। कृष्ण का चरित्र ही लोक मंगलवादी है और तरह तरह की लीलाएं करते हैं, तो लोक रंजन और लोक मंगल दोनों के जो भाव है वो कृष्ण के चरित्र में समाहित होते हैं।
0: यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो दृष्टि है उसी का विकास विद्या निवास मिश्र भी करते हैं। ब्रज भाषा के माधुर्य को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी बातें कही हैं और उनका मानना ये भी है कि मध्यकाल में यदि कोई भाषा इस पूरे भारतीय लोक मानस को बहुत प्रश्रय देती है और बहुत उसकी भावनाओं को जागृत करने में, प्रस्तुत करने में जिस भाषा की भूमिका है वह ब्रज भाषा है, और इसके लिए वे रसखान जैसे कवि को, सूरदास को, जिन्हें कहते हैं कि वो तो वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, तो ऐसी और उनकी कोई, आपको ऐसा लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हुए ब्रज की इस बात को तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए?
1: जी, जैसा कि वो सूरदास का जब अध्ययन करते हैं तब कहते हैं कि जो साहित्यिक ब्रज भाषा है उसको चरम तक ले जाने का कार्य सूरदास ने किया है, कि उसके बाद ब्रज भाषा का जो अन्य कवि हैं वो सूरदास से ऊपर ब्रज भाषा को लेकर नहीं जा पाए। तो इसमें कहीं ना कहीं कृष्ण चरित्र का भी
0: समाहार है, वो जो विकास हो रहा है और वो जो समाज को दे रहा है उसका भी बिंदु इसमें निहित
1: है
0: जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो दृष्टि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पांडे, समय की अपनी सीमा है, फिर भी आपसे एक बार पुनः हम पाश्चात्य विचारकों की तरफ जाते हुए ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो पाश्चात्य विचारक हैं जब हम अध्ययन करें तो किस तरीके की सोच हमें रखनी चाहिए और कैसे हम इनके निकट तक पहुंच सकते हैं?
1: जी, जो पाश्चात्य विद्वान है वो अवश्य प्रभावित होते हैं हमारे कृष्ण काव्य भारतीय दृष्टिकोण से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो संस्कृति है या उनके विकास का तरीका अलग है, तो यदि वो हमारे साहित्य का अध्ययन करते हैं तो जो पैमाने या जो टूल्स वो अपनाते हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कई बार वो उससे दूर भी चले जाते हैं, तो हमें उसका अध्ययन करके उसको तर्क के साथ अपनी बातों को भी हमें रखना होगा, समझना होगा कि उनकी दृष्टि क्या है। जितना मैं अभी पढ़ पा रहा हूं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा भाव हमारे साहित्य और हमारे कृष्ण चरित्र के ऊपर रखा है।
0: यानी जैसे पाश्चात्य चिंतक बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप बने रहते हैं कि भाई किसी चीज से प्रभावित हुए बिना उसका जो मूल तत्व है उसका विश्लेषण किया जाए,
1: बिल्कुल।
0: तो जब हम इन्हें पढ़ें तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो उनके यहाँ पर सपाट बयानी में आ रही है तो हम बहुत ज्यादा भावनात्मक न सोच के उस विश्लेषण की तरफ रहें और उनको उसी ढंग से सोचने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल
0: जी। डॉक्टर योगेश पांडे जी, आप स्टूडियो में पधारे और पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की दृष्टि में ब्रज इस विषय पर आपने हमारे श्रोताओं को जो बहुत महत्वपूर्ण अपने समय के आलोचक हैं, विचारक हैं, उनके विचारों के साथ अपनी बात आपने यहाँ रखी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और सभी श्रोताओं को राधे राधे।
2: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की दृष्टि में ब्रज, या विषय पे डॉक्टर योगेश पांडे जी ते बातचीत कर रहे हते नृत्य गोपाल जी।
0: जी चंपा जी,
2: देखो बड़ी रोचक और मनोहारी चर्चा आपने योगेश पांडे जी ते करी, या के काजे आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं।
0: जी चंपा जी, देखो डॉक्टर योगेश इन विषय के जानकार हैं, अध्येता हैं और उन्होंने हमारे श्रोतान के

0: उनकी सूत्र बताए, उनकी बात बताई, उनके उदाहरण बताए, वासु ही तो हम सबको ज्ञानवर्धन भयो है।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि यह विषय की ओर भी आप हमारे श्रोता भैया बहनान को ले गए। पर देखो एक बात हमारे मन में आ रही है,
0: बताए देव ना आप।
1: देखो जेठ को महीना चल रहे हो है और ये जल पर्वन को महीना है, तो कितनी तैयारी हमारी ब्रजधारा में चल रही है कि निर्जला जो एकादशी है वो जल पर्व को बड़ो प्रतीक है हमारे ब्रज में, वो आयवे वारी है।
0: जी हाँ चंपा, देखो निर्जला एकादशी में इतनी गर्मी में निर्जला उपासना करनो कितनो कठिन कार्य है,
1: पर फिर भी श्रद्धा और भक्ति को अनूठो समागम ऐसो है कि जो ये निर्जला का उत्सव है, या वो एकादशी के रूप में है, या वो दशहरा के रूप में है, जेठ पूर्णिमा के रूप में है, बड़े ही हर्षोल्लास के संगना हमारी ब्रज धारा में ये पर्व मनायो जावे है। और लोक की अगर हम बात करें तो लोक के संगना जो हमारी देवालयी संस्कृति है वहाँ भी इन जल पर्वन की ना अपने आप में तैयारी चल रही है।
0: चंपा जी आप तनिक देखो कि इन जल पर्व और जेठ मास के बीच में दो कला बड़ी अच्छी से दिखाई पड़ रही है, कभू ध्यान दियो हो तो
1: आप बताए दो।
0: देखो तो सही है, जो हमारे कुंभकार भैया है ना
1: जी,
0: वे अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर चपटा बना रहे हैं, मटका बना रहे हैं, मलरिया बना रहे हैं और कुंजा बना रहे हैं, उनकी जो कला है वह आकर्षित करे।
1: नृत्य गोपाल जी, तो हमारे लोक में ऐसी मान्यता है कि इनको भी जो दान है वो निर्जला एकादशी पे ब्रज में करो जाए वो।
0: अरे सबके ताई शीतलता मिले यही तो उपक्रम करो जा रहे हो लोक में।
1: बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता भैया बहनान के काजे बताई है। तो देखो ऐसी अच्छी अच्छी बात अन्य करवे को तो मन करे के ऐसे ही बतरस हम अपने भैया वैनान के संग करते रहें, पर हमारी भैया वैना भी जाने, आप भी जाने और हम भी जाने कि ऐसो ना संभव ना हो पावे है, समय की अपनी सीमा है। तो प्यारे भैया वैनाओं, इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
0: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जायवी की अनुमति प्रदान करें।
1: नमस्कार।

0: अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नृत्य गोपाल और चंद्रवती शर्मा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम बोलती कहानियां।
1: बोलती कहानियां क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सवा शेर गेहूं पर आधारित रेडियो नाटक। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशन काजल सूरी।
2: सवा शेर गेहूं, कहानी मुंशी प्रेमचंद। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, छक्का पंजा ना जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी ना लगी थी, ठगे जाने की चिंता ना थी, ठग विद्या ना जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट ली, चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, एनक आंखों पर। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता।

0: तो बहुत चिंता वाली बात है। महात्मा जी को क्या खिलाऊं समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, गेहूं का आटा उधार ले आता हूं, लेकिन अगर पूरे गांव में गेहूं का आटा ना मिला तो क्या करूंगा? विप्र महाराज के यहां जाता हूं, उनके यहां से तो आटा जरूर मिल जाएगा। हाँ, अभी जाता हूं। अरे सुनती हो, मैं जरा बाहर होके आता हूं अभी। महाराज, महाराज।
1: हाँ भाई शंकर, बता कैसे आना हुआ?
0: महाराज, बड़ी कृपा होगी अगर थोड़ा आटा मिल जाए तो।
1: हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। पैसे लाया है?
0: पैसे? महाराज, अभी उधार दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा बाद में।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है।
0: अगर हो सके तो महाराज 1.25 सेर गेहूं दे दीजिए।
1: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मिल जाएगा। अरे भाई, इसे 1.25 सेर गेहूं ला कर दे दो। ठीक है शंकर, ले जा।
0: बहुत कृपा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है ठीक है ठीक है।
0: मुश्किल से ही सही, लेकिन गेहूं का इंतजाम हो गया। दुलारी, दुलारी
2: जी,
0: देख बड़ी मुश्किल से गेहूं का इंतजाम हुआ है, ले अब जा और इसे जल्दी से पीस दे।
2: सब प्रभु की कृपा है।
0: हाँ हाँ,
2: मैं अभी खाना तैयार करती हूँ।
0: जल्दी,
2: आप इतने महात्मा जी के पास बैठो।
0: हाँ हाँ, मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ।
3: महाराज जी ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे।
0: अरे ये विप्र महाराज को 1.25 सेर गेहूं क्या लौटाऊं? पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, वो भी समझ जाएंगे और मेरा ऋण भी उतर जाएगा। हाँ,
2: चैत में जब विप्री जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उड़न समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। विप्री जी ने फिर कभी ना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। इन 7 वर्षों में विप्री जी विप्र से महाजन हो गए, शंकर किसान से मजूर हो गया, उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था।
0: कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई मुझसे ऐसे अलग होगा। जब दोनों साथ रहते थे तो किसान थे, अब अलग होके मजूर हो गए। मैंने कितना चाहा कि द्वेष की आग भड़के ना, परिस्थिति ने हम दोनों को विवश कर दिया। जिस दिन हम लोगों के अलग अलग चूल्हे जले, मैं ही जानता हूं, मेरा दिल खून के आंसू रोया था। हम दोनों भाई एक दूसरे के शत्रु हो गए। एक भाई रोएगा और दूसरा हंसेगा, एक के घर में मातम होगा और दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन सब टूट गया।
3: उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक ना देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो।

0: एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने उसे टोक कर कहा,
1: अरे शंकर।
2: जी महाराज।
1: ओ कल आकर अपने बीज का हिसाब कर ले।
2: हाँ?
1: अरे तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। अजम करने का मन है क्या?
2: महाराज मैंने आपसे कब गेहूं लिया?
1: अच्छा,
2: जो 5.5 मन हो गया आपसे कोई भूल हो रही है। मेरे यहाँ तो किसी का छठांक भर भी अनाज ना है, मैंने तो किसी का 1 पैसा भी उधार नहीं देना।
1: बस बस इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ रहा। क्या तुम्हें वो 1.25 शेर गेहूं की याद नहीं रही जो तुमने आज से 7 वर्ष पहले लिया था?
2: हे भगवान, महाराज मैंने आपको कितनी बार खलियानी दी। जब पोथी पत्रा देखने साहित सगुन विचारने आप द्वार पर आते थे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा लेके जाते थे महाराज। इतना स्वार्थ, 1.25 शेर अनाज को अंडे के भांति सेक कर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। महाराज इतने दिनों में 1 बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? महाराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया पर कई बार खलियानी में शेर शेर 2-2 शेर दिया है महाराज। अब आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा महाराज?
1: शंकर लेखा जौ जौ और बक्सी सौ सौ, तुमने जो कुछ दिया होगा ना उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी क्यों ना दे दी हो। अरे तुम्हारे नाम पर बही में 5.5 मन तो लिखा हुआ है
2: महाराज।
1: हाँ जिससे चाहो हिसाब लगवा लो। देखो दे दोगे तो तुम्हारा नाम काट दूंगा और नहीं तो ये दिन पर दिन बढ़ता ही रहेगा।
2: अरे महाराज क्यों गरीब को सताते हो, मेरे तो खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा महाराज?
1: जिसके घर से चाहो लाओ, मैं तो छटाक भर ना छोड़ूंगा, याद रखना। अरे यहां ना दोगे तो भगवान के घर दोगे।
2: आज के युग का पढ़ा लिखा आदमी होता तो कह देता अच्छी बात है ईश्वर के घर ही दे दूंगा, वहां की तोल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता।
0: किंतु शंकर इतना तार्किक इतना व्यवहार चतुर ना था। उसने सोचा एक तो ऋण भी महाराज का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाएगा। इस ख्याल से उसे रोमांच हो आया।

0: महाराज, आपका जितना होगा ना यही दूंगा।
1: अच्छा,
0: ईश्वर के यहां क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए कोई कांटे नहीं बोऊंगा। मगर ये उचित नहीं है महाराज, आपने राई का पर्वत बना दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तक आदा करते तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ ना होता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन ऊपर जाकर आपको जवाब देना पड़ेगा।
1: अरे शंकर, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? अरे वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी देखेंगे, सब संभाल लेंगे। तो बताओ कब दोगे?
0: महाराज, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा ना।
1: ना ना ना, मैं ये ना मानूंगा, पहले ही 7 वर्ष बीत चुके हैं शंकर, अब एक दिन की भी मोहलत ना दूंगा तुझे। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो।
0: मुझे तो देना है महाराज, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे?
1: बाजार का भाव 5 शेर का है, तो मैं 5.25 शेर का काट दूंगा।
0: ना ना ना महाराज, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं?

0: हिसाब लगाया तो गेहूं का दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपया सैकड़े सूद। साल भर में ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी।
1: गांव भर ने विप्र की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह पर कौन आए।
0: शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी कभी चूल्हा ना जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। कपड़े पहले ही त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए थे। उसने समझा और सोचा।
2: महाराज, ये रुपए रख लीजिए, बाकी भी जल्दी ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या महाराज जी इतना भी नहीं मानेंगे। मान जाएंगे। महाराज।
3: हाँ भाई शंकर।
2: बाकी रुपए मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर कर दूंगा, बस 15 रुपए की तो बात है, मान जाइए ना। ये लीजिए महाराज। हाँ। ये पैसे मैं आपके चरण कमलों पे अर्पण कर रहा हूँ।
3: हाँ, लेकिन ये किसी से तुमने उधार लिए हैं क्या।
2: नहीं नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली।
3: अच्छा, लेकिन ये तो 60 रुपए ही है।
2: हाँ महाराज, मैंने वही तो बोला, अभी इतना लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरिन कर दीजिए।
3: ना ना ना ना शंकर, उरिन तो तुम तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाओ, जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ।
2: महाराज इतनी दया करो, अब तो सांझ की रोटियों का भी ठिकाना ना रहा, गांव में ही हूं ना महाराज, तो कभी ना कभी तो दे ही दूंगा।
3: ना ना ना ना, ये रोग मैं नहीं पालता और ना ही बहुत बातें करना जानता हूं। देखो, अगर पूरे रुपए नहीं मिलेंगे ना, तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा
2: महाराज।
3: हाँ, और चाहो तो अपने रुपए अपने घर में रखो और चाहो तो मेरे यहाँ छोड़ जाओ।
2: अच्छा महाराज, जितने लाया हूं ना, आप उतने रख लीजिए, मैं जाता हूँ और कहीं से 15 रुपए और लाने की कोशिश करता हूँ।
3: हाँ ठीक है।
2: ठीक है महाराज।
1: शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था या किसी के पास रुपया ना था, बल्कि इसलिए कि विप्र जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत ना थी। क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। साल भर तक तपस्या करने के बाद भी शंकर ऋण से मुक्त ना हो सका तो उसका संयम डोल गया। उसने सोचा,
2: इतने कष्ट सहने के बाद भी साल भर में सिर्फ 60 रुपए ही जमा कर सका, समझ नहीं आ रहा अब कौन सा उपाय करूं। जब सिर पर ऋण का बोझ लाद ही लिया है तो क्या मन और क्या सवा मन।
1: उसका उत्साह भंग हो गया, उसे मेहनत से घृणा हो गई। जब आशा ही ना रही तो उत्साह भी समाप्त हो गया। शंकर उदासीन हो गया। वे जरूरतें जिनको उसने अपने साल भर तक टाल रखा था, अब छाती पर सवार हो गई। इस भांति 3 वर्ष बीत गए। विप्र महाराज ने एक बार भी तकादा ना किया। वो चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। फिर एक दिन
3: तीन वर्ष बीत गए, मैंने शंकर से एक बार भी तकादा नहीं किया।

0: मैं चतुर शिकारी की भांति उस पर अचूक निशाना लगाना चाहता हूं। पहले से अगर शिकार चौकन्ना हो जाएगा तो यह मेरी नीति के विरुद्ध होगा।
1: फिर एक दिन,
0: अरे भाई शंकर
2: जी महाराज,
0: ये देखो, ये रहा तुम्हारा हिसाब। देखो, तुम्हारे जो 60 रुपए जमा थे उसका हिसाब लगाने के बाद भी तुम्हारे नाम पर 120 रुपए निकलते हैं।
2: महाराज, इतने रुपए तो अगले जन्म में ही दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता।
0: ना ना ना ना, मुझे तो इसी जन्म में चाहिए भाई। अरे मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा।
2: एक बैल है महाराज, वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो भी ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है?
0: मुझे बैल बचिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है।
2: और क्या महाराज?
0: कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो
2: महाराज।
0: हाँ, और मुझे खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है, तो सूद में हमारे यहाँ ये काम किया करो
2: है?
0: और जब भी सुविधा हो मूल दे देना।
2: मगर महाराज,
0: सच तो यो है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने जा ही नहीं सकते
2: महाराज।
0: हाँ, और जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? हाँ, कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे? और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद दे ही नहीं सकते तो मूल की कौन कहे?
2: महाराज, सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या?
0: अरे शंकर कैसी बातें करता है, अरे तेरी घरवाली है, लड़के हैं, हैं? क्या उनके हाथ पांव नहीं है? रहा मैं, तुझे आधा शेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल दे दूंगा, एक मिर्जाई भी बनवा दूंगा, और क्या चाहिए है? देख, ये सच है कि और लोग तुझे 6 आने रोज देते हैं।
2: हाँ महाराज।
0: हाँ, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है भाई, मैं तो तुझे अपने रुपए भरने के लिए ही रख रहा हूं।
2: महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई।
0: अरे गुलामी समझ चाहे मजूरी समझ, मैं तो अपने रुपए भराए बिना तुझे छोड़ूंगा नहीं। और सुन, तू कहीं भागा ना तो तेरा लड़का ये रुपए भरेगा, और हाँ जब कोई ना रहेगा तब की तब देख लूंगा।

0: इस निर्णय की कहीं अपील ना थी, मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण ना थी, भागकर कहां जाता। दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सवा शेर गेहूं के बदले उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उजा भागे को अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वो ये था कि ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखता रहता, कुछ कर नहीं पाता था। गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति आजीवन उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहां 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस असार संसार से प्रस्थान किया।
1: शंकर ने विप्र जी के यहां 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस असार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सर पे सवार थे। महाराज ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। वे इतने अन्यायी और इतने निर्दयी ना थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, आज तक वो विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। आप लोग इस कथा को कपोल कल्पित ना समझें, ये सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है।
2: बोलती कहानियां क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सवा शेर गेहूं पर आधारित रेडियो नाटक। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशन काजल।

0: मंसूरी, भाग लेने वाले कलाकार थे निखिल दीवान, नितिन भसीन, अन्नु शर्मा और राहुल दक्ष।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी शाम 4 बजे आप हिंदी में समाचार सुन सकते हैं और 4:05 पर अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। शाम 4:10 पर आप गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में जानकारी सुन सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ये शाम 4:20 पर सुन सकते हैं और हमारे द्विभाषी न्यूज़ मैगजीन शो परिक्रमा इस कार्यक्रम को आप आज शाम 4:30 पर सुन सकते हैं। लोक रंजनी लोक संगीत पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आज शाम 5:10 पर। वहीं शाम 5:30 का समय होता है हमारे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का।

चहल पहल इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर और शाम 6:20 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। ग्राम संसार हमारे ग्रामीण भाई बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम आप ये सुन सकते हैं शाम 6:30 और शाम 7:05 पर हमारे किसान भाई बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत का प्रसारण किया जाएगा।

और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर और 7:45 पर प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम मुशायरा, जो कि आधारित होगा जश्ने आकाशवाणी 90 वर्ष के।

अवसर पर मुशायरा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप रात्रि 8:30 पर सुन सकते हैं।

रात्रि 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। वहीं रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

हमारे श्रोता अपनी पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन सकते हैं आज रात्रि 11:10 पर। तो ये थी जानकारी हमारे आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार।

0: कहिए।
1: विक्रम खेल खिलाड़ी,
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार साथियों, मैं अभिनव कुमार झा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
4: शिवांश रक्षित।
3: खेल जगत की तमाम गतिविधियां और खबरें लेकर हम फिर आ गए हैं, तो अगले आधे घंटे अपने रेडियो सेट्स के पास बैठे रहिए और सुनते रहिए खेल खिलाड़ी।
4: तो श्रोता, आज जानेंगे हम लोग फीफा से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, फिर हम चलेंगे T20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आर्चरी की, फिर करेंगे ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन की, फिर इंडियन एथलेटिक्स सीरीज की।
3: और अब श्रोताओं, बिना समय बिताए हुए बात चालू कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। जी हाँ, तो फीफा वर्ल्ड कप का बुखार, फुटबॉल का बुखार पूरे विश्व में छाया हुआ है। क्या कुछ गतिविधियां कल हुई और आज होने वाली हैं, इस पर एक खास रिपोर्ट बनाई है हमारे साथी शिवांश ने, तो आइए सुनते हैं।

सपनों की उड़ान, जुनून की पहचान और करोड़ों दिलों की धड़कन, फीफा विश्व कप एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर है। हर पास, हर बचाव, हर गोल और हर जीत के पीछे छिपी होती है वर्षों की मेहनत, संघर्ष और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की चाह। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल का सबसे बड़ा मंच सज चुका है और अब नजरें टिकी हैं उन पलों पर जो आने वाले दिनों में इतिहास बनेंगे। आइए जानते हैं फीफा विश्व कप 2026 में आज क्या रहा खास और किन टीमों ने अपने अभियान का शानदार आगाज किया। तो आइए श्रोताओं जानते हैं कल के खेले गए मैच के बारे में, जो कि कनाडा और बोस्निया के बीच में खेला गया था। कनाडा और बोस्निया के बीच फीफा वर्ल्ड कप का 2026 का तीसरा मैच खेला गया था। 1-1 से ये मैच ड्रॉ रहा और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। इसी के साथ कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक अर्जित किया। जी हाँ, इससे पहले सह मेजबान कनाडा ने दो बार फीफा वर्ल्ड कप खेला, जिसमें उन्हें सभी 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। ये पहला मौका है जब कनाडा फीफा वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल पाया है। ये उनके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है। कनाडा ने इससे पहले 1986 और 2022 में दो वर्ल्ड कप खेले थे। कनाडा ने शानदार शुरुआत की और खचाखच भरे घरेलू दर्शकों की एनर्जी का फायदा उठाने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन शुरुआती जोश उस समय गायब हो गया जब बोस्निया ने सबको याद दिलाया कि वर्ल्ड कप सिर्फ अच्छी वाइब्स से नहीं जीते जाते। विजिटर्स ने 21वें मिनट में कॉर्नर से गोल किया। इवान बेसिक ने बॉक्स में एक टिनजिंग बॉल डाली, सीड ने उसे गोल के पार फ्लिक किया और जोवो ने सबसे तेजी से रिएक्ट करते हुए पास से गोल कर दिया, जो उनके करियर का पहला इंटरनेशनल गोल था। इस गोल ने मैच का रिदम बदल दिया। बोस्निया और नीचे बैठकर अपने बॉक्स की डिफेंड करने और कनाडा को उन्हें हराने की चुनौती देने में खुश था। मेजबानों ने पोजीशन और टेरिटरी का मजा लिया, लेकिन विजिटर्स के बॉल के पीछे लोगों का जमा होने से एक साफ मौके मिलना मुश्किल हो गया। हाफ टाइम तक कनाडा के पास काफी पोजीशन था, लेकिन बोस्निया लीड में था। दूसरे हाफ जल्द ही घेराबंदी में बदल गया। कनाडा ने और जोर लगाया और तेजी से अटैक किया और उन मौकों को बनाना शुरू किया जो ब्रेक से पहले नहीं मिल रहे थे। उन्हें सबसे अच्छा मौका 53वें मिनट में मिला, जब स्टीफन ने रिची लारिया को गोल करने के लिए स्लाइड किया। लारिया ने

0: गोलकीपर निकोला को छकाया और गोल करने का पक्का इरादा लग रहा था। किसी तरह कोलासिनाक ने संभल कर शॉट को क्रॉस बार पर मारा और फिर बच निकला। ये उस तरह का इंटरवेंशन था जिसके बारे में डिफेंडर अपने देखते हैं और स्ट्राइकर उसके बारे में बुरे सपने देखते हैं। कुछ ही देर बाद बोस्निया ने अपनी बढ़त लगभग दो गुना कर ली जब एमर्टन ने आगे बढ़कर गोल किया, लेकिन मैक्सिम अपनी लाइन से दौड़कर आए और एक जरूरी इंटरवेंशन किया। जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था, खेल कनाडा की निराशाजनक हार की ओर बढ़ता दिख रहा था। फिर जैसी मार्श अपने बेंच की ओर मुड़े, लारिन का असर तुरंत हुआ। प्रॉमिस डेविड ने स्ट्राइकर के रास्ते में एक चालाक पास दिया और कनाडा के अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ने बाकी काम कर दिया। एक तेज टर्न लेकर उन्होंने 78वें मिनट में निचले कोने में एक लो स्ट्राइक मारने से पहले अपने लिए जगह बनाई। पूरी रात गेम का पीछा करने के बाद कनाडा को आखिरकार अपना इनाम मिला। लॉरिन ने स्टॉपेज टाइम में भी लगभग टर्न अराउंड पूरा कर लिया था, लेकिन तारिक ने बोस्निया का पॉइंट बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। अब मेक्सिको और कनाडा के बाद मेजबान अमेरिका ने भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है। यूएसए ने अपने पहले मैच में पैराग्वे को 4-1 से हराया। अमेरिका की जीत के हीरो फोलारेन बालोगुन रहे जिन्होंने दो गोल दागे।
1: The world of football has come to the nation of soccer and the FIFA World Cup 2026 co-host the USA face off against Paraguay in the first match in Group D. By the USA trying to stretch the Paraguay back line, and they've certainly done that. It's a big chance. It's an own goal. Looked like it came off Demian Bobadilla, but the USA hit the front.
0: वो इसी के साथ मेजबान टीम के लिए नए हीरो बन गए। बता दे कि बालोगुन तीन में से किसी भी देश के लिए खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को चुना और अब विश्व कप फुटबॉल में पहले मैच में उन्होंने दो गोल करके अपनी टीम को पैराग्वे पर 4-1 से शानदार जीत दिलाई। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम की मौजूदगी में बालोगुन 1930 के बाद वर्ल्ड कप के किसी मैच में दो गोल करने वाले पहली अमेरिकी खिलाड़ी बन गए। इस समय बर्ट ने पैराग्वे के खिलाफ ही अमेरिका की 3-0 की जीत में तीनों गोल किए थे, जो वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली हैट्रिक थी। अमेरिका की विश्व कप में यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने इस टूर्नामेंट में कभी 3 से अधिक गोल नहीं किए थे। यही नहीं, अमेरिका की टीम ने पहले हाफ में 3 गोल दागे, जो विश्व कप में उसका रिकॉर्ड है। अमेरिका ने 4 साल पहले कतर में खेले गए विश्व कप में अपने 4 मैचों में कुल मिलाकर केवल 3 गोल किए थे। नए कोच मॉरिशियो के मार्गदर्शन में अलग शैली में खेल रही अमेरिका की टीम ने अपने खेल से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बालोगुन का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में नाइजीरियाई माता पिता के घर हुआ था। उनके जन्म के 1 महीने बाद उनके माता पिता इंग्लैंड चले गए, जहां वह लंदन में पले बड़े। उन्होंने 8 साल की उम्र में आर्सेनल की अकादमी में दाखिला लिया। उन्होंने युवा स्तर पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही अमेरिका की अंडर-18 टीम के लिए भी खेला। इस तरह से बालोगुन के पास अमेरिका के अलावा इंग्लैंड और नाइजीरिया की तरफ से खेलने का भी मौका था। इंग्लैंड की टीम में स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है और इसलिए हो सकता था कि उन्हें टीम में जगह नहीं मिलती, जबकि नाइजीरिया इस विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। उन्होंने सही समय पर सही फैसला किया और इसका परिणाम यह है कि अब अमेरिका के प्रत्येक फुटबॉल प्रेमी की जुबान पर एक ही नाम है, बालोगुन। फीफा वर्ल्ड कप में पहली जीत से यूएसए ग्रुप डी में शुरुआती तौर पर मजबूत स्थिति में है। मेजबान टीम का अगला मुकाबला 19 जून को सिएटल में ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि पैराग्वे उसी दिन बाद में तुर्की से भिड़ेगी। टूर्नामेंट के तीसरे दिन यानी आज 13 जून फुटबॉल प्रेमियों को एक के बाद एक 3 बेहद रोमांचक ग्रुप स्टेज मैच देखने को मिलने वाले हैं। आज के दिन ग्रुप बी और ग्रुप सी की टीमें मैदान पर उतरकर सुपर राउंड में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। पहला मैच ग्रुप बी की टीमों के बीच खेला जाएगा, जहां कतर और स्विट्जरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरा और तीसरा मैच ग्रुप सी की टीमों के बीच खेला जाएगा। दिन का पहला मुकाबला ग्रुप बी से है, जहां कतर का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे खेला जाएगा।

हैती और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैसाचुसेट्स के फॉक्सबरो स्थित बॉस्टन स्टेडियम में यह मुकाबला स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमों के लिए ग्रुप स्टेज की दौड़ में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए ये सभी मुकाबले देर रात और कल सुबह लाइव प्रसारित किए जाएंगे। भारत में ये मुकाबला 14 जून को सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। इसी के बाद रविवार यानी कल ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच रोमांचक भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट के तीसरे दिन होने वाले इस मुकाबले तक ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन की स्थिति या तो साफ हो चुकी होगी या बहुत कांटे की टक्कर वाली स्थिति बन चुकी होगी। ऐसे में कनाडा के वैंक्यूवर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की का यह मुकाबला निर्णायक हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया को इसमें तुर्की से सावधान रहने की जरूरत होगी।

0: फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक चलने वाला है साथियों, और बहुत लंबा समय ये टूर्नामेंट चलेगा। तो हमारे मन में कुछ प्रश्न थे, कुछ क्वेश्चंस थे, जिसको लेके हम अपने एक विशेष कमेंट्रेटर और फॉर्मर गोलकीपर गौस मोहम्मद से हमने बातचीत की। फॉर्मर गोलकीपर और कमेंट्रेटर हैं गौस मोहम्मद, उनसे हमने बातचीत की। तो क्या कुछ कहा उन्होंने फीफा विश्व कप के बारे में, आइए सुनते हैं।
1: फीफा अपने आप में एक ऐसा नाम है कि कोई भी, अगर आप इस वक्त किसी भी चाट की दुकान पे जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे या किसी स्पोर्ट्स के, अदर देन फुटबॉल के भी स्पोर्ट्स पे जाएंगे, चर्चा होती है फीफा कप की। तो फीफा कप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि जो वार चल रही है उसके अंदर थोड़ी रुकावट आई है। फीफा से कोई भी शरारत नहीं करेगा, अगर कर भी रहा होगा तो कुछ दिन के लिए रोकेगा वो।
0: सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार 3 देश फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो क्या इन टीमों को अपने घरेलू मैदानों का फायदा मिलेगा? और जैसा हमने कल के मैच में देखा कि अमेरिका और पैराग्वे का मैच हुआ था और अमेरिका 4-1 से जीती है।
1: नहीं, अमेरिका हमेशा एक गति की फुटबॉल खेलता है, और अमेरिका कभी भी किसी भी टीम के लिए मुश्किल है। और पिछले काफी अरसे से अमेरिका ने बहुत सीरियस गंभीरता से फुटबॉल को लिया है। वैसे तो वो कोई भी चीज मजाक में नहीं लेते, पर यह है कि फुटबॉल में अमेरिका एक तो स्पीडी रहते हैं, और मौसम का जो आपने बताया वो उनका बड़ा गजब का एडवांटेज रहेगा, खास करके मैक्सिको को भी रहेगा। तो उन्होंने जो ये मैच जीता, ये दूसरी टीमों के लिए चुनौती है कि देखिए ये मेजबान को फायदा हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि फुटबॉल जो है माइंड गेम भी है, फिजिकल गेम भी है, टैक्टिकल बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे अपना स्टेमिना को बरकरार रखते हुए नो रिस्क जोन में जाना पड़ेगा। अगर आपकी चोट लग गई वो ठीक होना इतना आसान नहीं है। तो फिट जो आधा अनफिट खिलाड़ी अपनी चोट को छुपा के जाएगा, वो इस वेदर में एक्सपोज हो जाएगा, उसकी पोल खुल जाएगी।
0: पूरे विश्व में तो फीफा का बोलबाला है ही, और भारत में भी इसके कम फैन नहीं है, लेकिन भारत में ये बस फैन तक ही बात क्यों रुक जाती है, खिलाड़ी क्यों नहीं निकल पा रहे?
1: देखिए, ये हर फीफा कप में ये सवाल उठता है, आपने भी किया, आकाशवाणी हमेशा ये सवाल करती रही है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, आगाह कर दूं और चेतावनी पूरे विश्व को दे दूं कि आने वाले वक्त में एट एनी कॉस्ट भारतीय टीम फीफा कप खेलेगी, क्योंकि टीम बढ़ने से एशिया का कोटा भी बढ़ गया है, 8 तक पहुंच गया है, और इस ये पॉसिबल है कि भारतीय टीम पहले 8 में आ सकती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय मूल के खिलाड़ी दुनिया की अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं, केरला का हो या तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो। तो मुझे लगता है कि आपको अगले विश्व कप नहीं, उससे अगले में भारतीय टीम नजर आएगी फीफा में, और बहुत बेहतरीन खेलेगी, सबको हैरानी में भी डालेगी। वो पहले की बात थी कि फीफा कप का एक सवाल होता था और हम खेल कहते थे कि 10-20 साल, लेकिन अब टीमें बढ़ने से भारतीय टीम के चांस अच्छे हो गए, क्योंकि जो टारगेट भारतीय टीम देखेगी उस पर मेहनत करेगी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे हैं मांडविया साहब, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, कल्याण चौबे भी काफी मेहनत कर रहे हैं, और असली मेहनत खिलाड़ियों को करनी पड़ेगी। तो जब तक ये ग्रास रूट पे हर स्कूल में

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: जी भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: दरभंगा नए वहां से घनश्याम बोल रहा हूँ।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बलराम जी को
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: राम लहलू
0: हाँ बोल दीजिए।
1: मेरी बहन ज्ञानपति आनंदी प्रधान जी ज्ञानदार सर्व आकाश पाठ को राम राम
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: राजेंद्र जाटल आबिदपुर मान की पोस्ट मोदी नगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: राजेंद्र जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: बलराम बैसला।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और कुछ नाम है असालत नगर से है, नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, प्रशांत जाटव, निशांत जाटव और शिवानी जाटव। आदिपुर गांव मानकी से हैं महेंद्र, शारदा, रामकिशोर, शीला, सचिन, अनुष्का, मानसी, शिवम और ये पूरे आदिपुर गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: जी मैं कवि लड्डन सिंह गांव खेड़ी सगान से इलियास अंसारी बोल रहा जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज बलराम बैसला को सुनना चाहते हैं जी।

0: जरूर सुनवाएंगे।
1: इकबाल अंसारी है, जुल्फिकार अंसारी है, सईद अंसारी है, शकील अंसारी, नसीम अंसारी, और ये रही साहब बेगम है जी हमारे घर वाली।
0: हेलो ग्राम संसार,
2: नमस्कार जी,
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं हरि सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा से बोल रहा हूँ जी।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: बलराम बैचला को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है जी, देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश, डॉक्टर है, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छब्बीस, निशा, कंचन, और कुछ मेरे भांजा मनोज, हरिचंद, गोविंद, और कुछ रिश्तेदार हैं जी, संजीव, ज्योति। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार,
3: हेलो सचिव भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गांव बरहाना जिला बुलंद शहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: बलराम बैसले को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और मेरे साथी आरती भारती, स्वाति, मिसेस कविता देवी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार,
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम रोजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: बलराम बैसला जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: मास्टर ब्रह्म सिंह, जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बहादुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो, राम राम जी।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
5: जी मैं शरीफ अंसारी बोल रहा जी, सोरम के बाद गोला गाँव से जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज बलराम बैसलम सुनना चाहते हैं जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: और हमारे साथी है जी सुनने वाले, अनीश अंसारी है जी, जमील अंसारी, हनीफ अंसारी और फत्तन है जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
6: अशोक कुमार शर्मा, रिकॉर्ड बुलंद शहर।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: राम बैसला।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: नाम है कुछ ऋषि शर्मा, नीलू शर्मा, नव शर्मा, देव शर्मा, गर्ण शर्मा, किन्नी शर्मा और घोड़ा पंडित जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं काशीराम दलाल, निवासी ग्राम घासरूर, भगारजी, तहसील और जनपद भाजपा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: अभी बलराम बैष्णव को सुनवा दीजिए। कुछ नाम है?
0: हाँ बोल दीजिए।
7: बलदेव सिंह आर्य, कृष्ण पाल दलाल, आदेश दलाल, अनुज दलाल, नितिन दलाल, अर्पित दलाल, प्रियांशु दलाल, निकिता चौधरी, दीपू चौधरी और विक्की चौधरी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बलराम बैसला से ये राग।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।
1: हाँ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7 बजने को है। आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, इन दिनों पूरे भारत में एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। खासकर ये अभियान हमारे किसान बहन भाइयों को जागरूक करने के लिए है कि वो अपने जो खेत की मिट्टी है, मृदा है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करें, क्योंकि हमारे जो किसान बहन भाई हैं बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेती में करने लगे हैं, रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसकी वजह से जो मृदा का स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है, और जो भी उत्पाद हमें मिलते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत। ये अभियान मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करने, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
1: बिल्कुल शशि भाई, खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मिट्टी की जांच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, उन्नत बीज, बीज उपचार, हरी खाद और आधुनिक बुवाई तकनीकों और पानी की बचत करने वाली खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है। और ये अभियान नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के खिलाफ जागरूकता पैदा करता है और साथ ही किसान भाइयों को सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रमों का लाभ उठाने में भी मदद करता है।
0: बिल्कुल। और ये अभियान मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ, किसान बचाओ के विचार पर आधारित है। ये इस बात पर जोर देता है कि उत्पादक कृषि, सशक्त किसानों और दीर्घकालिक राष्ट्रीय समृद्धि के लिए स्वस्थ मिट्टी बेहद आवश्यक है।
1: बिल्कुल। और ये अभियान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देता है ताकि उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की वास्तविक पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर किया जा सके। इससे लागत को कम करने और उत्पादकता में सुधार करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद मिलती है। और इस अभियान के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक, ICAR संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के अधिकारी और जन प्रतिनिधि किसानों को शिक्षित करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए गांवों का दौरा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। और इस अभियान के अंतर्गत सोयाबीन, धान और दलहन जैसी फसलों के लिए खेतों में सजीव प्रदर्शन शामिल हो रहे हैं। हमारे किसान बहन भाइयों को लेजर लेवलर, स्थानीय कृषि, जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल चयन और जल कुशल कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हम भी अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप अपने खेत की जो मृदा है उसका ध्यान रखें, उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो कृषि में आधुनिक तकनीकी आ गई हैं उनका उपयोग करके आप खेती करें ताकि जो खेती में लागत है वो कम हो और जो आपकी आमदनी है वो बढ़े। तो नीलम बहन, ये तो बात रही खेत बचाओ अभियान की। और हमारे वो किसान बहन भाई जो अब टमाटर, बैगन और मिर्च की उन्नत खेती करना चाहते हैं, उनके लिए सुनवाते हैं एक बातचीत। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गोपाल सिंह तोमर और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। अब जब हम सब्जी फसलों की बात करते हैं तो उसमें टमाटर है, बैंगन है, उसकी तो महत्ता बढ़ जाती है। और साथ साथ अगर चाहे हरी मिर्च की बात करें और चाहे मसाले की बात करें तो मिर्च दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। तो आज हम बात करेंगे टमाटर, बैंगन और मिर्च की किस तरीके से उन्नत खेती की जाए, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी को, जो कि अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों के बाद बरसात आएगी, तो इस बीच

0: लोग हमारे किसान भाई हैं, सब्जी की खेती करते हैं, किस तरीके से प्लान करें कि खाने वाले को लगातार सब्जियां मिलती रहें और किसान को कुछ उसका लाभ मिलता रहे।
1: निश्चित रूप से सब्जियां हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियां खाने की सिफारिश हमारे पोषण के जो विशेषज्ञ हैं वो करते हैं, ताकि हर एक के जो पोषण तत्वों की आवश्यकता है, उनकी इम्यूनिटी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल्स की जो आवश्यकता है वो उनसे पूर्ति हो जाए। अब बात आती है निरंतर उपलब्धता की। अभी आप देखेंगे कि जो बहुत सारे किसान भाइयों ने गर्मी के मौसम में टमाटर लगाया था फरवरी में, मिर्ची लगाई थी और बैंगन भी लगाया था, लेकिन अब वो लगभग खत्म होने की स्थिति में है, यानी कि अब जो गर्मी की जो फसल थी वो अब खत्म हो रही है, और इसलिए अब समय आ गया है कि हम मिर्ची की और बैंगन की अभी पौधशाला की तैयारी करें। इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि भाई आप पौधशाला का निर्माण करें, और पौधशाला कहाँ बनाएं और क्या क्या सावधानी रखें। पौधशाला का निर्माण उस स्थान पर करें जहाँ आपके पास पौधशाला में पौधों की मांग के अनुरूप पानी देने की व्यवस्था हो, आपकी पौधशाला होनी चाहिए। दूसरी, जिस स्थान पर आपने पिछले साल पौधशाला बनाई थी उस स्थान पर इस वर्ष पौधशाला ना बनाए, यानी कि स्थान बदलना भी उसके लिए आवश्यक हो जाता है। और ऐसा करने से उनको दो फायदे होते हैं, एक तो जो मृदा जनित बीमारियां हैं जो संभवतः पिछले साल आई हों या नहीं आई हों, तो इस साल वो बीमारियां ना आए, इसलिए स्थान बदलना आवश्यक हो जाता है।
0: यानी डॉक्टर साहब, क्रॉप रोटेशन के साथ साथ प्लेस रोटेशन भी करना चाहिए।
1: बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर हम निरंतर एक ही स्थान पे बराबर वहीं पे पौधशाला का निर्माण करते हैं तो धीरे धीरे उसमें डंपिंग ऑफ आने लगता है, उसमें बीमारियां कीड़ों का प्रकोप बढ़ने लगता है, किसान को पौध तैयार करने में ज्यादा परिश्रम और खर्च करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा स्थान परिवर्तन करने से इस समस्या से हम कुछ हद तक निपट सकते हैं। अब बात आती है कि भाई पौधशाला का निर्माण कैसे करें। पौधशाला का निर्माण जो करना है वो पौध हमेशा उथली क्यारियों पे बुआई करें, क्योंकि ऐसे में बारिश एक साथ आ जाएगी, अगर हम समतल क्यारी में बिजाई पौध तैयार करेंगे तो किसान को उसमें नुकसान होने की संभावना, इसलिए उथली क्यारी में पौध की तैयारी करें। और उथली क्यारियों का जो आकार है, जिनको हम रेज बेड बोलते हैं, अंग्रेजी में रेज बेड बोलते हैं, हिंदी में उठी हुई क्यारी या उथली क्यारियां, जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे पौधशाला का निर्माण करें, और बेड की जो चौड़ाई है वो 60 से 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और उसके ऊपर उसमें फिर सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें, नीम की खली है उसको भी मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, बीज की बिजाई से पहले उसको मिला करके पानी दे के प्लेवा कर दें, और 5 से 7 दिन में तैयारी करने के लिए खेत बता हुआ आ जाएगा, और उसमें फिर उसकी खुदाई करके समतल करके और उसमें रासायनिक उर्वरक DAP MOP अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसकी मात्रा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें फिर बिजाई पंक्तियों में करें और लाइन से लाइन का जो फासला रखेंगे, अगर आप बैंगन की पौध तैयार करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर दो लाइनों के बीच में, और मिर्ची के बीच में भी लगभग इतना ही फासला रखना बेहतर रहेगा। तो ऐसे में बीज की जो गहराई है वो कितनी रहनी चाहिए, बीज की कम से कम 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज को डालना है, और बीज डालने के बाद उसको मिट्टी से या गोबर की छनी हुई खाद से वर्मी कंपोस्ट के मिट्टी के साथ मिलाकर, और उसको कवर भी करना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए जो हमारे गेहूं के जो बचा हुआ वो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, धान की पुआल को इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारी जो लुसीनिया स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली एक झाड़ीनुमा पौधा होता है उसकी पत्तियों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ताकि वो किसी तरह से खरपतवार की, और करने के बाद फिर एक पानी उसमें फुहारे से दे दें, पहला पानी फुहारे से दें और दूसरा पानी जब दें वो नालियों के बीच में दें, और पानी की मात्रा इतनी रखें कि वो एक बेड के ऊपर से पानी तैरना नहीं चाहिए। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं,
0: आलू में देते हैं,
1: जैसे आलू में देते हैं कि आधी ऊंचाई तक दें, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई उनकी क्यारी की ऊंचाई तक पानी रख दें, ताकि वो सीपेज से नमी अपने आप अंदर तक चली जाएगी और इससे जो है अधिक पानी की मात्रा नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है, गर्मी का मौसम है, चाहे मिर्ची हो, बैंगन हो या टमाटर की पौध किसान भाई जो तैयार करते हैं, तो उसमें दो समस्याएं आने की संभावना रहती है, एक तो डंपिंग ऑफ आर्द्र गलन रोग, और उस रोग का प्रमुख कारण है गर्मी और ज्यादा आर्द्रता, और अगर पुरानी जब एक पौधशाला बनाई है जहां बार बार आप बना रहे हैं तो उसमें इनोकुलम बिल्टअप होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमें वहां पे पहले से ही बीज को उपचारित करके बोना है, और बीज उपचार के लिए हमारे किसान भाई आजकल जो बीज हैं वो उपचारित ही मिलते हैं, बाविस्टिन से या कैप्टान से या थीरम से बीज उपचारित होते, अगर नहीं है तो आप उनको उपचारित कर सकते हैं, 2 ग्राम से 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से लेकर के उनको ड्राई ड्रेसिंग करें और उसके बाद बिजाई करें, या ट्राइकोडर्मा 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे जो किसान भाइयों ने पहले बिजाई की थी या जो

0: गर्मियों की फसल लगाए थे वो किस्में अलग थीं, और जो इस समय लगाएंगे क्या अलग होंगे या वही किस्में लगाएंगे?
1: गर्मी के मौसम में अगर हम देखें टमाटर और मिर्ची, इनमें विषाणु के रोग ना के बराबर आते हैं, लेकिन बारिश में इन दोनों फसलों में विषाणु के रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो मिर्च की और टमाटर की किस्में गर्मी के मौसम में सफलतापूर्वक हो जाती हैं, वो सभी किस्में बारिश के मौसम में सफलतापूर्वक नहीं होती। तो यहाँ किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना कि जब बीज खरीदते समय ये जरूर सुनिश्चित करें जिस भी स्रोत से लें कि भाई ये विषाणु रोग के प्रतिरोधी है या नहीं है, या कितनी मात्रा में इसमें विषाणु के रोग आते हैं। टमाटर के अंदर बहुत सारी किस्में विषाणु रोग के प्रतिरोधी विकसित की गई हैं। हमारे संस्थान ने भी टमाटर की पूसा टोमेटो हाइब्रिड 6 एक किस्म विकसित की है, वो विषाणु रोग के प्रतिरोधी है, और बहुत सारी प्राइवेट क्षेत्रीय कंपनियों ने भी इस दिशा में काम किया है। लेकिन मिर्ची के अंदर कोई भी किस्म ऐसी नहीं जिसके अंदर पूर्णतः 100% हम ये कह दें कि इसमें विषाणु का रोग नहीं आता। लेकिन बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, संकर किस्में भी हैं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की किस्म है, हमारे संस्थान की किस्म पूसा सदाबहार पुरानी किस्म है, इनके अंदर विषाणु के रोग कम मात्रा में आते हैं, यानी कि किसान की 100% नुकसान होने से हम बचा सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ पौधों में आ सकता है या देर की अवस्था में आ सकता है, लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें विषाणु रोग आने की संभावना ज्यादा रहती। तो उन किस्मों को ना बारिश के लिए इस्तेमाल करें पौध तैयार करने के लिए, ना उनकी रोपाई करें, ये बात हमें सुनिश्चित करनी होगी जब बीज खरीदते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो पौधशाला की बात हो गई, लेकिन पौधशाला में बीज उगने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी क्या देखभाल किया सकते हैं?
1: उसमें दो तीन बातें ध्यान रखने की। ऐसे तो हमारे जो किसान निरंतर सब्जी उगाते हैं वो उसमें दक्ष होते हैं, परंतु मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि गर्मी का मौसम में डंपिंग ऑफ आने की जो संभावना, आर्द्र गलन, वो ना आए उसके लिए पहला पानी दिया और दूसरा पानी जो अपने क्यारियों में दिया, तीसरा जो पानी दें या दूसरे पानी में उसमें फुहारे से घोल बना ले, 22 टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना ले ड्रम में और फुहारे से अच्छी प्रकार से उसे गीला कर दे ताकि आर्द्र गलन आने की संभावना को पूरी तरह से नकारा जा सके। बीज उपचार के अलावा ये करना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो है उसमें एक कीड़ा आता है, सुरंग बनाता है, उसे टनल बोरर बोलते हैं, पौधशाला की जो क्यारी होती है उनमें भुरभुरी मिट्टी कर देता है और पौधों की जड़ों के नीचे को भी जाता है, तो उससे क्या है जहां पौधे की जड़ को मिट्टी और हवा का संपर्क हो गया वहां पे पौधे मर जाते हैं या पौधों को उलट देता है। तो टनल बोरर से बचाव करना बहुत जरूरी है। गर्मी और बारिश के मौसम जब हम पौध तैयार करते हैं, चाहे पत्ता गोभी करें, फूल गोभी की, बैंगन की, टमाटर मिर्ची करें, ये टनल बोरर एक हमारे किसानों के लिए समस्या है। उसका निदान ये है कि मिथाइल डस्ट आती है, एक मिथाइल डस्ट को अगर हम उसमें बुरक दें, बुआई के समय मिला दें उसमें, तो टनल बोरर को हम बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते, टनल बोरर के कारण जो नुकसान होता है उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। और फिर 1 से 2 बार उसमें गुड़ाई करनी है, खरपतवार निकालना है, और अभी वातावरण में आर्द्रता और तापक्रम की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि बुआई के 28 से 30 दिन के अंदर पौध रोपाई के लिए निश्चित रूप से तैयार हो जाएगी।
0: जैसे आपने बताया कि पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी, जब हमारे किसान भाई पौध दूसरे खेत में रोपेंगे तो उस समय क्या सावधानी रखें?
1: बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बारिश का मौसम है तो ऐसे खेतों की चयन करें किसान भाई जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था, यानी कि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, यानी कि किसान भाई उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था करें, अगर बारिश हो जाए तो पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। पहली तो एक ही बात है,
0: सब या तो ऊंचाई वाले खेत हो वहां करें,
1: निश्चित
0: ढालदार हो,
1: ढालदार हो जहां मतलब पानी निकल सकता है, या तो ऊंचे में ज्यादातर सब्जियां खड़े पानी को सहन करने की क्षमता नहीं रखती, चाहे मिर्ची हो, टमाटर हो, बैगन हो या अन्य कोई भी फसल हो, तो इसलिए ऊंचाई वाले खेत, जल निकास की खेत, अभी मौका है किसान के पास। अगर खेत खाली है उसकी गहरी जुताई करें, 2 बार उसकी जुताई करें, उसका सूरज की गर्मी से उसका जो है विकिरण के माध्यम से उसका उपचार करें, सौरीकरण करें, तो उससे खरपतवार, कीड़े, बीमारियों की जो रोगजनक है उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। अगर किसान भाई निरंतर अपने खेत में, मैं कहता हूं हर फसल के साथ तो किसान के पास भी संभव नहीं है क्योंकि इतने पशु नहीं होते कि वो इतनी मात्रा में गोबर की खाद हर फसल की बुआई से पहले इस्तेमाल करें, लेकिन साल में एक बार, क्योंकि अधिकतर किसान आजकल सघन खेती करते हैं, 2 से 3 फसल लेते हैं, तो हर एक फसल में तो गोबर की खाद डालना किसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन साल में एक बार खेत में 15 से 20 गाड़ी गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ हमारे जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो जमीन में रहने वाले माइक्रोब्स हैं, जो हमारे लाभकारी हैं, तो उसको भी संख्या में वृद्धि होती है, और जल धारण क्षमता अच्छी होती है, फसल की वृद्धि होती है, और जो हम नत्रजन, फास्फोरस, पोटास वाले उर्वरक इस्तेमाल करें उनकी उपयोग क्षमता को भी कार्बनिक तत्व की उपलब्धता बेहतर करती है, बढ़ाती है। तो हमारे लिए तीन तरह के फायदे, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या दूसरी जो कंपोस्ट खाद है इस्तेमाल करें तो हमारे किसान भाई उसमें ये फायदे उठा सकते हैं कि जलधारण क्षमता में

0: होगा, जो पोषक तत्व तो आप इस्तेमाल करेंगे उन उपयोगिता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, तो आपकी जल की उपयोगिता बढ़ेगी और फसल का बेहतर वृद्धि और विकास होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, रोपाई के कितने दिनों बाद फसल तुराई के लिए लगभग तैयार हो जाएगी?
0: अब जैसे ही हमने बताया कि 28 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, फिर किसान भाई उसको पंक्तियों में रोपाई करें, रोपाई भी मेड़ों पर करें क्योंकि समतल क्यारियों में ना करें, क्योंकि जल भराव की स्थिति से हमें हर हालत में बचना है, क्योंकि ये कोई भी फसल उसको सहन नहीं करेगी। तो आपने जैसे रोपाई कर दी, रोपाई के बाद अगर हम बैंगन की बात करते हैं तो 40 से 42 के दिन के बाद बैंगन पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो सकता है, और मिर्ची लगभग 60 से 65 दिन में पहली तुड़ाई के लिए रोपाई के बाद तैयार हो जाती है, और कुछ संकर किस्में 50 दिन के बाद भी तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो किस्म विशेष के ऊपर निर्भर करेगा कि बुआई के कितने दिन बाद पहली तुड़ाई हो जाएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से टमाटर, बैंगन और मिर्च की उन्नत खेती कर सकते हैं अगर किसान भाइयों आप उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और उन्नत तरीके से पौधशाला तैयार करके रोपाई करेंगे और समय समय पर अपनी फसल की देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इन फसलों से अच्छा उत्पादन लेकर के लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: टमाटर, बैंगन और मिर्च की उन्नत खेती। किसान बहन भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोपाल सिंह तोमर और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश, कलाकार हैं पप्पू भारती।
3: संध्या भजन साधना हो भाई, शुद्ध आ

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये उपदेश, और कलाकार थे पप्पू भारती।
1: नीलम बहन, कई बार पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी हमारे किसान भाई दे देते हैं। इससे पौधे खराब होने लगते हैं और साथ ही फसल पर कीड़े लगने का डर सताने लगता है। फिर इसी फसल को बचाने के लिए हमारे किसान भाई कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सब से कैसे बचा जा सकता है? तो इन सब का समाधान है, जो कृषि में आजकल आधुनिक सिंचाई पद्धति अपनाई जा रही है, उनका हमारे किसान भाई प्रयोग करें ताकि कम पानी में अच्छा फसल उत्पादन उनको मिल जाए। और इन सब तकनीकों के लिए एक सरकार बहुत ही अच्छी योजना चला रही है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
0: बिल्कुल शशि भाई, और इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करके पानी की बचत करना है। और इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि तक पानी की भौतिक पहुंच सुनिश्चित करना, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी को रोकना है, और साथ ही वर्षा के पानी का संचयन करके भूजल स्तर को बढ़ाना है।
1: बिल्कुल। और अब बात करते हैं कि जो भी हमारे किसान बहन भाई इन उपकरणों को खरीदना चाहते हैं तो सरकार उनकी क्या वित्तीय सहायता करती है? तो आधुनिक सिंचाई उपकरणों की खरीद पर हमारे किसान बहन भाइयों को सरकार अनुदान देती है, यानी कि सब्सिडी देती है। इसके अंतर्गत लघु और सीमांत हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए कुल इकाई लागत का 55% तक का अनुदान उनको मिलता है और अन्य किसान भाइयों के लिए लागत का 45% तक का अनुदान दिया जाता है। तो हमारे जो भी किसान बहन भाई इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ जनसुविधा केंद्र के माध्यम से भी वो आवेदन कर सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो बात रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए। लेकिन कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा? इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा, केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़। श्रोताओं, शाम के 7:30 हुए हैं और अब समय है गज़ल का। लीजिए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: चंदन दास की आवाज़ में अभी आप गज़ल सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली

0: सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा, पश्चिमी एशिया संकट के चलते ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने दीप विहार क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई दिल्ली में नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% की छूट की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की और जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों से समस्याएं सुनी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार रोहिणी के प्रत्येक नागरिक की सुविधा और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि किसी भी शहर का वास्तविक मूल्यांकन केवल उसकी भव्य अवसंरचना से नहीं बल्कि नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली जीवन गुणवत्ता से होता है। उन्होंने कहा कि विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए जो नागरिक जीवन को अधिक सुगम और बेहतर बनाते हैं। इसलिए रोहिणी में सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गुप्ता ने नवनिर्मित शौचालय सुविधा और मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाहरपुर गाँव में नवनिर्मित सड़कों को भी जनता को समर्पित किया। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे पिछले एक महीने में बिजली खरीद की लागत भी लगभग 31% बढ़ी है। श्री सूद ने संवाददाताओं को बताया कि इस वृद्धि के बावजूद दिल्ली सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव कम पड़ा है।
1: सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। देश भर में बिजली कानूनों के चलते पीपीएसी की कॉस्ट लगातार हर महीने अलाउ की जाती है। उसी के अंतर्गत पिछले 14.5% जो 31 मार्च तक था, ईंधन की कॉस्ट वेस्ट एशिया संकट के कारण अब इस महीने 2.4% की बढ़ोतरी उसमें दी गई है। इसलिए हम पूरी तरह इस पे निगाह रखे हैं, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष भारत के युवाओं के सपनों को साकार करने वाले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस सेवा काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक कौशल से जोड़ा गया जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि देश में रिकॉर्ड संख्या में बने नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, विश्वविद्यालय और मेडिकल संस्थान युवाओं के उच्च शिक्षा के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। वहीं युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने के लिए रोजगार मेले शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाखों युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्टार्टअप से लेकर खेल के मैदानों तक और डिजिटल क्रांति से लेकर बड़े अनुसंधानों तक देश की युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को गति दे रही है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज दीप विहार क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़कों और नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बवाना विधानसभा क्षेत्र में बेहतर और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

0: भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को भारत की बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताएं लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह उपलब्धि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी और वैश्विक स्तर पर उसकी रणनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मालवीय नगर और सैदुलाजाब में आग लगने की घटनाओं के दौरान बहादुरी और तत्परता से कार्रवाई करने वाले नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम भी शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस को और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन जवानों ने राष्ट्र की सेवा में अद्भुत साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए iGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं को सुचारू, सुरक्षित और मानवीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें नीट स्नातक पूर्व परीक्षा भी शामिल है। कार्यक्रम में संपूर्ण परीक्षा को कवर करने वाले 4 मॉड्यूल हैं। दिल्ली में कल यमुना स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर 500 से अधिक गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी और सामाजिक संगठन राजधानी के यमुना घाटों की सफाई करेंगे। यह आयोजन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने यमुना के घाटों और तटों को स्वच्छ रखने में जनता से भी सहयोग की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा की है। परिषद ने बताया है कि यह छूट उन करदाताओं को प्रदान की जाएगी जो अपने संपत्ति कर का भुगतान 30 जून या उससे पहले कर देंगे। NDMC ने अपने क्षेत्र के सभी संपत्ति धारकों से इस लाभकारी योजना का लाभ उठाते हुए समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि NDMC क्षेत्र के करदाता परिषद के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल अथवा परिषद द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों के जरिए भी अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज ने लगभग 4 दशकों के अपने विशिष्ट सैन्य करियर में सेना की युद्ध क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आई में स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी

0: करने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
1: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर्स, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
0: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार।
2: दक्षिण दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के सरकारी आवास पर आज टीबी यानी तपेदिक जांच अभियान चलाया गया। इस अवसर पर श्री बिधूड़ी ने लोगों से नियमित रूप से टीबी की जांच कराते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लक्षणों के प्रति अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि टीबी का समय पर पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत जिला और यातायात पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी बढ़ेगी। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को संयुक्त पैदल गश्त के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दफ्तर के काम और आंतरिक बैठकों से बचने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिला और यातायात पुलिस की टीमें सप्ताह में 4 दिन संयुक्त रूप से गश्त करेंगी ताकि सड़क अवरोधों को हटाया जा सके और यातायात जाम की समस्या का समाधान हो सके। केंद्र सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय का लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा शाम के दौरान गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के चलते ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने दीप विहार क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। लीजिए प्रस्तुत है मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन आइए शायरी की बात करते हैं। शायरी लतीफ़ जज्बात और एहसासात को लफ्ज़ों में पिरोने का नाम है। एक शायर इसमें अल्फाज को इस सिलसिले और तरतीब से यकजा करता है कि उसमें मुसीकियत पैदा हो जाती है जो दिलों को लुभाती है और जज्बात को दूसरों के दिल में

0: उतार देती है। शायरी को मुशायरे आवाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। आकाशवाणी में मुशायरे अक्सर मुनाकिद किए जाते रहे हैं, जिनमें मुल्क के मारूफ शुआरा शिरकत करते रहे हैं। इसी रिवायत के तहत आकाशवाणी के स्टूडियो में एक मुशायरा मुनाकिद हुआ, जिसमें शायरी से शगफ रखने वाले भी शरीक हुए। ये मुशायरा ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल मुकम्मल होने पर मुनाकिद किया गया। इस मुशायरे की निजामत जनाब मुईन शादाब ने अंजाम दी। आइए उसी मुशायरे का दूसरा हिस्सा सुनते हैं।
1: आज का ये जश्न जो आकाशवाणी के 90 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आज के जो हमारे शुराए कराम हैं उनको आवाज़ दी जाए। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ मुमताज़ इकबाल साहब से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ कराऊँ, जो बहुत अच्छे शायर हैं। उनके कुछ शेर पढ़ता हूँ कि रात की गोदी में सर रखकर बहुत रोते हैं हम, याद आता है हमें एक घर बहुत रोते हैं हम, ध्यान से सुनते हैं उसका गम खामोशी की तरह, चीख पड़ता है वो जब हम पर बहुत रोते हैं हम। तो आइए इस्तकबाल करें मुमताज़ इकबाल साहब का, जो आज के पहले शायर हैं, कि तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें। मोहतरम मुमताज़ इकबाल साहब,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला देखें कि आँखों में उसकी दीद के ख्वाबों की आग है, आँखों में उसकी दीद के ख्वाबों की आग है, वो यूं कि इश्क खाना खराबों की आग है, आँखों में उसकी दीद के ख्वाबों की आग है, वो यूं कि इश्क खाना खराबों की आग है, ये नूर मेरे सर्द लबों पर उतार दे, ये नूर मेरे सर्द लबों पर उतार दे, सुर्खी तेरे लबों की गुलाबों की आग है, ये नूर मेरे सर्द लबों पर उतार दे, सुर्खी तेरे लबों की गुलाबों की आग है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूं देखें कि दरिया नजर आए कभी सहरा नजर आए,
1: दरिया नजर आए कभी सहरा नजर आए,
2: दरिया नजर आए कभी सहरा नजर आए, देखूं तेरी आंखों में तो क्या क्या नजर आए,
1: वाह,
2: दरिया नजर आए कभी सहरा नजर आए, देखूं तेरी आंखों में तो क्या क्या नजर आए, सोचूं तेरे बारे में तो होते हैं करिश्मे, सोचूं तेरे बारे में तो होते हैं करिश्मे, हर शय में तेरा अक्स उतरता नजर आए, सोचूं तेरे बारे में तो होते हैं करिश्मे, हर शय में तेरा अक्स उतरता नजर आए। और एक शेर यूं देखें कि बेखुदी में इस कदर सरशार हो जाते हैं हम, बेखुदी में इस कदर सरशार हो जाते हैं हम, अहले बीनिश के लिए असरार हो जाते हैं हम, बेखुदी में इस कदर सरशार हो जाते हैं हम, अहले बीनिश के लिए असरार हो जाते हैं हम, वजद में हम धार लेते हैं उसी का रंग रूप,
1: वाह क्या बात है,
2: वजद में हम धार लेते हैं उसी का रंग रूप, रक्स करते हैं तो मिसले यार हो जाते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। वजद में हम धार लेते हैं उसी का रंग रूप, रक्स करते हैं तो मिसले यार हो जाते हैं हम, बेतकल्लुफ वस्ल बेमानी सा लगता है हमें, बेतकल्लुफ वस्ल बेमानी सा लगता है हमें, और तकल्लुफ से बहुत बेजार हो जाते हैं हम, बेतकल्लुफ वस्ल बेमानी सा लगता है हमें, और तकल्लुफ से बहुत बेजार हो जाते हैं हम, शेर होते हैं वो जब आता है माजी की तरह, शेर होते हैं वो जब आता है माजी की तरह, हाल बनकर दाखिले अशार हो जाते हैं, बहुत शुक्रिया। शेर होते हैं वो जब आता है माजी की तरह, हाल बनकर दाखिले अशार हो जाते हैं हम। और एक गजल के चंद शेर देखें, खुश्क बहुत हो जाते हैं जब हम सहरा हो जाते हैं, खुश्क बहुत हो जाते हैं जब हम सहरा हो जाते हैं, सहरा में गिरिया करते हैं फिर दरिया हो जाते हैं, खुश्क बहुत हो जाते हैं जब हम सहरा हो जाते हैं, सहरा में गिरिया करते हैं फिर दरिया हो जाते हैं, रात को उसके दर पर रोते

0: रोते रोते मर जाते हैं हम।
1: वाह,
0: रात को उसके दर पर रोते रोते
1: मर
0: मर
1: जाते
0: जाते
1: हैं
0: हैं
1: हम।
0: हम, सुबह को वो कुम कह देता है फिर जिंदा हो जाते हैं।
1: आहा, भाई वाह वाह वाह वाह
0: बहुत बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। रात को उसके दर पर रोते रोते मर जाते हैं हम, सुबह को वो कुम कह देता है फिर जिंदा हो जाते
1: जाते हैं
0: हैं।
1: हम।
0: आंखें वो जिंदान हैं जिनमें एक चेहरा रह जाता है।
1: वाह वाह वाह,
0: आंखें वो जिंदान हैं जिनमें
1: एक चेहरा रह
0: एक
1: जाता
0: चेहरा
1: है।
0: रह जाता है। रोशनी, मंजर, नींदें, आंसू, ख्वाब रिहा हो जाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: आंखें वो जिंदान हैं जिनमें एक चेहरा रह जाता है। रोशनी, मंजर, नींदें, आंसू, ख्वाब रिहा हो जाते हैं। और बतौर खास ये शेर देखें, मिट्टी की ताजीम करो तो और तकब्बुर करती है।
1: वाह,
0: ये शेर आप तमाम लोगों की नजर,
1: मिट्टी की
0: मिट्टी
1: ताजीम करो
0: की
1: तो और तकब्बुर करती
0: ताजीम
1: है।
0: करो तो और तकब्बुर करती है। कंकर पत्थर जैसे आदमजाद खुदा हो जाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: मिट्टी की ताजीम करो तो और तकब्बुर करती है।
1: वाह वाह वाह
0: कंकर
1: वाह
0: पत्थर जैसे आदमजाद खुदा हो जाते हैं।
1: वाह,
0: और एक शेर यूं देखें कि शहरे दिल्ली जिंदगी की एक बेहतर याद है।
1: क्या कहने का,
0: शहरे दिल्ली जिंदगी की
1: एक
0: एक
1: बेहतर
0: बेहतर
1: याद है।
0: याद है। एक इदारा, एक लड़की, एक दफ्तर याद है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शहरे दिल्ली जिंदगी की एक बेहतर याद है। एक इदारा, एक लड़की, एक
1: दफ्तर
0: दफ्तर
1: याद है।
0: याद है। दौड़ता जाता हूँ उसकी समत बच्चे की तरह।
1: वाह,
0: दौड़ता जाता हूँ उसकी समत
1: बच्ची की
0: बच्चे
1: तरह।
0: की तरह। दर बदर हूँ और एक भुला हुआ घर याद है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: दौड़ता
1: वाह
0: जाता
1: वाह,
0: हूँ उसकी समत बच्चे की तरह। दर बदर हूँ और एक भूला हुआ घर याद है।
1: वाह।
0: जीतने से पेशतर जिस शहर पर टूटा था मैं।
1: जीतने से
0: जीतने
1: पेशतर
0: से पेशतर
1: जिस
0: जिस
1: शहर पर
0: शहर
1: टूटा
0: पर
1: था मैं।
0: टूटा था मैं, उसका साहिल याद है, उसका समुंदर याद है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: जीतने से पेशतर जिस शहर पर टूटा था मैं, उसका साहिल याद है, उसका समुंदर याद है। और आखिरी दो शेर देखें, ला मकानी में बहुत जोरे मकां देखते हैं। ला मकानी में बहुत जोरे मकां देखते हैं। कोई तामीरे खला है कि जहां देखते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: ला मकानी में बहुत जोरे मकां देखते हैं। कोई तामीरे खला है कि जहां देखते हैं।
1: क्या बात है।
0: गुफ्तगू में बहुत आती है हमें शर्म उससे। गुफ्तगू में
1: बहुत
0: बहुत
1: आती
0: आती
1: है
0: है
1: हमें
0: हमें
1: शर्म
0: शर्म
1: उससे।
0: उससे। हम के जब यार के होठों पे ज़बां देखते हैं।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह, बहुत खूब मोहतरम मुमताज इकबाल साहब, बहुत खूबसूरत शायरी और कई शेरों पर जहाँ आपको महसूस हुआ कि ये आपके एहसास को छू रहा है, उस पर आपने दादो तहसीन से भी नवाजा, आपका बहुत शुक्रिया। आइए एक शायरा को इस वक्त समाप्त करते हैं। शायरात की क्या अहमियत है और किस तरह से वो कदम से कदम मिलाकर चल रही है, मैं उनका एक शेर सुनाता हूँ पहले आपको, उससे उनके लहजे का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले से राजा कहा गया। हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया। ये शेर है माधवी शंकर साहिबा का, जिनकी एक किताब बाकी इश्क में सब अच्छा है मंजर आम पर आ चुका है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ज्यादा वक्त उनकी शायरी के लिए देता हूँ, पर इसे मैं कम वक्त लेता हूँ। तशरीफ लाए माधवी शंकर साहिबा।
2: मतलब समाप्त करें कि हम जैसे सुन रहे हैं, हम जैसे सुन रहे हैं उसी तौर से सुने।
1: वाह, हम जैसे सुन रहे हैं उसी तौर से
2: हम
1: सुने,
2: जैसे सुन रहे हैं उसी तौर से सुने। हम चाहते हैं आप हमें गौर
1: गौर
2: से
1: से
2: सुने।
1: सुने। आहा,
2: बहुत शुक्रिया,
1: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह
2: बहुत
1: वाह वाह।
2: शुक्रिया। ये दोस्त तो हमारी तरफ हैं शुरू से। ये दोस्त तो हमारी तरफ हैं शुरू
1: शुरू
2: से।
1: से।
2: जलवे हम अपने अब के किसी और से सुने।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। एक गज़ल देखें कि दर्द को शौक बताते हुए, दर्द को शौक बताते हुए गाते हुए हम।
1: क्या
2: रोशनी करते हुए खुद को जलाते हुए हम।
1: अच्छा है भाई, वाह वाह वाह वाह वाह।
2: दर्द को शौक बताते हुए गाते हुए हम। रोशनी करते हुए खुद को जलाते हुए हम। जैसे शिद्दत से निभाता है कोई दीनो धर्म। जैसे शिद्दत से निभाता है कोई दीनों धर्म।

0: से एक तरफा मोहब्बत को निभाते हुए हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: और शेर देखें कि बारे दुनिया नहीं उठता है हमारे दिल से, बारे दुनिया नहीं उठता है हमारे दिल से, और हंस हंस के तेरे नाज उठाते हुए हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: ख्वाब देखा कि वो उस पार कहीं रहता है, ख्वाब देखा कि वो उस पार कहीं रहता है, ख्वाब में भी उसे इस पार बुलाते हुए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और दौरे हाजिर में किसी पर भी भरोसा ना करें, दौरे हाजिर में किसी पर भी भरोसा ना करें, रोने लगते हैं ये बच्चों को सिखाते हुए हम।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और शेर देखें कि कर भी लें वादा मगर वादा निभा सकते नहीं,
1: कर
0: भी लें वादा मगर वादा निभा सकते नहीं, साथ अच्छा है तुम्हारा साथ आ सकते नहीं, साथ अच्छा है तुम्हारा साथ आ सकते नहीं, और दिल तो कहता है जरूरत है किसी हमदर्द की, दिल तो कहता है जरूरत है किसी हमदर्द की, पर जरूरत के लिए तो दिल लगा सकते नहीं, पर जरूरत के लिए तो दिल लगा सकते नहीं।
1: बहुत अच्छा है भाई।
0: दिल तो कहता है जरूरत है किसी हमदर्द की, पर जरूरत के लिए तो दिल लगा सकते नहीं, और हर कोई चेहरे पे पढ़ना चाहता है दुख वही, हर कोई चेहरे पे पढ़ना चाहता है दुख वही, और हम उस दुख को अफसाना बना सकते नहीं, और हम उस दुख को अफसाना बना सकते नहीं। मतलब देखें कि हम गमजदा हुए तो तमाशा कहा गया, हम गमजदा हुए तो तमाशा कहा गया, आंसू को सिर्फ पानी का कतरा कहा गया, हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया।
1: वाह वाह वाह।
0: यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया, और कहना
1: अच्छा
0: था मुझसे दूर न जाना कभी कहीं, कहना था मुझसे दूर न जाना कभी कहीं, इतनी सी बात कहने को क्या क्या कहा गया। और माँ बाप खुश हैं बेटियां काबिल जो हो गईं, माँ बाप खुश हैं बेटियां काबिल
1: जो हो गईं,
0: बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया,
1: वाह वाह वाह,
0: बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया। बहुत शुक्रिया। रास्ता कठिन है
1: भाई, फिर पढ़।
0: माँ बाप खुश हैं बेटियां काबिल जो हो गईं, बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया, रास्ता कठिन है हम पे ये जाहिर किए बगैर, रास्ता कठिन है हम पे ये जाहिर किए बगैर, चलना संभल संभल के बस इतना कहा गया, चलना संभल संभल के बस इतना कहा गया। शेर देखें कि देखकर अश्क के इम्कान खुशी होती है,
1: देखकर अश्क के इम्कान खुशी होती है,
0: देखकर अश्क के इम्कान खुशी होती है, वक्त पर आए जो मेहमान
1: खुशी होती,
0: खुशी होती है। और कितना डरते हो जमाने की नजर लगने से,
1: वाह,
0: कितना डरते हो जमाने की नजर लगने से, करके देखो कोई ऐलान
1: खुशी होती है, वाह,
0: करके देखो कोई ऐलान खुशी होती है। और दुख को अपना लिया घबरा के अकेलेपन से, दुख को अपना लिया घबरा के अकेलेपन से, और फिर आया मुझे ध्यान खुशी होती,
1: क्या कहने हैं,
0: और फिर आया मुझे ध्यान खुशी होती है, और मैं तुम्हें देख के नाशाद नहीं दोस्त मेरे, मैं तुम्हें देख के नाशाद नहीं दोस्त मेरे, बस इस बात पे हैरान खुशी होती है, बस इस बात पे हैरान खुशी होती है, और बेअसर होती है इस दिल पे हर एक बात मगर, बेअसर होती है इस दिल पे हर एक बात मगर, तुम जो कहते हो मेरी जान खुशी होती है। और शेर देखें कि इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है,
1: इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है,
0: इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है, खुद को साबित करना अब मजबूरी है, और हमने अपनी आंखें जब कासा कर ली,
1: वाह वाह वाह,
0: हमने अपनी आंखें जब कासा कर ली, तब उसने दीदार की दौलत बख्शी, तब उसने दीदार की दौलत बख्शी है, और एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी, एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी, खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है, खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है, एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी, खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है, सब किरदार ख्याली हैं इस नाटक के, सब किरदार ख्याली हैं इस नाटक के, लेकिन घटना सोलह आने सच्ची है, लेकिन घटना सोलह आने सच्ची है। और कुछ शेर मेरे

0: नज़रिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ। मेरे नज़रिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ। कबूल कर लूं जो जैसा कह दे, जो अपनी रखूं तो मैं गलत हूँ। कभी मोहब्बत कभी ज़रूरत के नाम कर दूं हर एक लम्हा। कभी मोहब्बत कभी ज़रूरत के नाम कर दूं हर एक लम्हा। किसी घड़ी जो मैं खुद से बातें दो चार कर लूं तो मैं गलत। है असल में ये कि लड़कियों को सही है क्या ये पता नहीं है। है असल में ये कि लड़कियों को सही है क्या ये पता नहीं है। हर एक लड़की ये सोचती है मैं कुछ भी चाहूं तो मैं गलत हूं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: हर एक तराजू में तौल कर तुम मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दो।
1: वाह।
0: हर एक तराजू में तौल कर तुम मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दो। जो मैं भी तुमसे तुम्हारे सच का सबूत मांगू तो मैं गलत हूँ। बहुत शुक्रिया। आखिरी कुछ शेर है बस फिर मैं अपनी जगह लेती।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: ये दर्द के झरने हैं ठहरने के नहीं हैं। ये दर्द के झरने हैं ठहरने के नहीं हैं। जो जख्म दिए आपने भरने के नहीं हैं। तुम जाओ कोई और हुनर सीख के आओ। तुम जाओ कोई और हुनर सीख के आओ। हम दिल पे लगी चोट से मरने के नहीं हैं।
1: वाह वाह वाह।
0: हम दिल पे लगी चोट से मरने के नहीं हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और उल्टी नहीं बहती है कभी धार नदी की।
1: क्या कहने की।
0: उल्टी नहीं बहती है कभी धार नदी की। अब हम तो यकीन आप पे करने के नहीं हैं। और दे ही नहीं पाओगे मोहब्बत का बदल तुम। दे ही नहीं पाओगे मोहब्बत का बदल तुम। तुमसे ये मेरे कर्ज उतरने के नहीं है।
1: क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। बहुत खूब। दिल तो कहता है ज़रूरत है किसी हमदर्द की, अब ज़रूरत के लिए दिल तो लगा सकते नहीं। मोहतरमा माधवी शंकर साहिबा अपनी शायरी से नवाज रही थी। अब माधवी शंकर साहिबा ने बहुत अच्छे शेर सुनाए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस शेर में उस माइक से जाकर एक शायर के तौर पर पढ़ देता हूँ। मेरा नाम मुईन शादाब है, यही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ साहब स्टेज से। कुछ शेर जहाँ जहाँ से याद आ रहे हैं पढ़ देता हूँ। बड़ा मियारी और पुरवकार मुशायरा है, जाहिर है रेडियो की अपनी एक शान होती है और यहाँ इंतखाब भी करना पड़ता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो अर्ज़ करता हूँ कि होशियार मेरे यार खबरदार मेरे यार। होशियार मेरे यार खबरदार मेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। होशियार मेरे यार खबरदार मेरे यार। होशियार मेरे यार खबरदार मेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब हैं तेरे यार। एक नाजुक सा शेर आ गया है। अर्ज़ करता हूँ कि होता ही नहीं ख़त्म रफाकत का तसलसल। होता ही नहीं ख़त्म रफाकत का तसलसल। दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है। खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है। तू ढूंढता रह जाएगा ये दोस्त निरे यार।
2: निरे यार
1: कि तू ढूंढता रह जाएगा ये दोस्त निरे यार। होशियार मेरे यार खबरदार मेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब हैं तेरे यार। एक ताज़ा मतलब पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ मतलब कि धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया। धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया। और फिर वो इस कदर बरसा में जलथल हो गया। ये धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया। और फिर वो इस कदर बरसा में जलथल हो गया। अब बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत। बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत। ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। कि बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत। ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। बहुत शुक्रिया। ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। और एक मुहावरे के साथ तोड़फोड़ करने की जसारत की है, लेकिन ठीक है, खूबसूरत तोड़फोड़ है। अर्ज़ करता हूँ कि पहले आँखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो। पहले आँखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो। और फिर एक रोज़ वो दिल से भी ओझल हो गया। और फिर एक रोज़ वो दिल से भी ओझल हो गया। धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया। और फिर वो इस कदर बरसा मैं जलथल हो गया। एक ताज़ा गज़ल के चंद शेर पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ। किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ। किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ। किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। शेर मुलाहजा करें कि कहाँ कहाँ वो बसर कर

0: रहा है अब खुद को, कहां कहां वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। कि कहां कहां वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। कि कहां कहां वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। और ये शेर मैं आकाशवाणी की नजर कर रहा हूं, शेर पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ। अब एक सदाओं का जंगल है उसके, बहुत शुक्रिया, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, बहुत शुक्रिया, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ। एक गजल का शेर हो गया है, अर्ज करता हूँ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ, सवादे जिस्म में तहलील हो गए कई लब। अर्ज करता हूँ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ, सवादे जिस्म में तहलील हो गए कई लब, बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ। सवादे जिस्म में तहलील हो गए कई लब, बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ, बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। और शायर कितनी मेहनत करता है, पेश करता हूँ, कि चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, अर्ज करता हूँ कि चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ। ये चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। कि मेरे लिबास पे करता है, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे ख़त्म करें, मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे ख़त्म करें, न कोई जीता हुआ है न कोई हारा हुआ। कि मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे ख़त्म करें, न कोई जीता हुआ है न कोई हारा हुआ, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। एक गज़ल के चंद शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है,
1: बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती
0: है, अर्ज करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है, बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। और शेर मुलायजा करें कि घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। और शेर मुलाहजा करें कि पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, अर्ज करता हूँ इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है, पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, बहुत शुक्रिया, पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, इसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, अर्ज करता हूँ कि रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। कि रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। बेदारी ख्वाबों को महंगी पड़ती है, सोता हूँ तो रात के लिए पड़ती। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मोहब्बतों सुना आलम खुर्शी साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ।
2: मतलब देखें गजल का, कि जाने किन जहानों से हर्फो लफ्ज आते हैं,
0: जाने किन जहानों से हर्फो लफ्ज आते हैं,
2: जाने किन जहानों से हर्फो लफ्ज आते हैं, जाने कैसे महफिल में शेर खिलखिलाते हैं, जाने किन जहानों से हर्फो लफ्ज आते हैं, जाने कैसे महफिल में शेर खिलखिलाते हैं। और खुद ही कब मैं सोता हूँ, खुद ही जागता हूँ कब,
0: خود ہی کبھی

0: मैं सोता
1: खुद ही कब मैं सोता हूँ,
0: खुद ही जागता हूँ कब,
1: खुद ही जागता हूँ कब, ख्वाब ही सुलाते हैं,
0: ख्वाब ही जगाते हैं,
1: ख्वाब ही जगाते हैं।
0: वाह अच्छा है भाई, वाह वाह वाह।
1: खुद ही कब मैं सोता हूँ,
0: खुद ही जागता हूँ कब,
1: खुद ही जागता हूँ कब,
0: ख्वाब ही सुलाते हैं,
1: ख्वाब ही सुलाते हैं, ख्वाब ही जगाते हैं, और रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम। रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम, तुम भी भूल जाते हो।
0: वाह
1: वाह। रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम, तुम भी भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं, और अब यहाँ पे आते हैं यार दोस्त अक्सर ही। अब यहाँ पे आते हैं
0: यार दोस्त अक्सर ही,
1: यार दोस्त अक्सर ही, अब कहीं पे मिलने की और जगह बनाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं यार दोस्त अक्सर ही, अब कहीं पे मिलने की और जगह बनाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: और तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम,
0: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम,
1: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम, आईना बनाते थे,
0: आईना बनाते हैं,
1: आईना बनाते हैं।
0: वाह।
1: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम, आईना बनाते थे, आईना बनाते हैं, और ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या।
0: ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या,
1: ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या, हम इधर भी जाते हैं, हम इधर भी जाते हैं, ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या, हम इधर भी जाते हैं, हम उधर भी जाते हैं, और सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है।
0: क्या कहने,
1: सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है, जाने वाले जाते हैं आने वाले आते हैं। सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है, जाने वाले जाते हैं
0: आने वाले आते हैं,
1: आने वाले आते हैं, और कब किसी के आने का इंतजार है आलम,
0: कब किसी के आने का इंतजार,
1: कब किसी के आने का इंतजार है आलम, अब गरीब खाने को हम कहाँ सजाते हैं, कब किसी के आने का इंतजार है आलम, अब गरीब खाने को हम कहाँ सजाते हैं।
0: बहुत शुक्रिया जनाब आलम खुर्शीद साहब। और इसी के साथ ये मैं अर्ज कर दूं कि मुशायरा AIR एट 90 यानी 90 बरस मुकम्मल होने पर ये मुशायरा मुनक्कद किया गया। आप लोग इस तारीखी वाक़े का हिस्सा बने, मैं ये दुआ करूंगा कि जब हम 100 बरस मनाएं आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो के, तब भी आप जो प्रोग्राम मुनक्कद उसमें शामिल हों। बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाक़िदा मुशायरे का दूसरा हिस्सा सुन रहे थे। निज़ामत कर रहे थे जनाब मुईन शादाब। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म यारा दिलदारा से।

इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा।

0: हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या

से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा

0: देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति

0: की सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron.

0: Has the world's second largest higher education network due to various policy initiatives undertaken by the Prime Minister. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. Mr. Puri described the 12-year tenure of Prime Minister Narendra Modi as people-centric and development-oriented. Manipur police notified that certain individuals and groups are creating, sharing and circulating unverified and provocative content on various social media platforms. In a social media post, Manipur police strongly advised the public not to believe, share or forward rumours or unverified content and to exercise caution while engaging with information circulating on social media. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 195 runs for India in the rain-affected first one-day international ODI of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match has been reduced to 25 overs per side after relentless rains delayed the start. In reply, India were 91 for 1 in 10.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. Five Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. Five-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के पांच अफराद जा बहक हो गए हैं। पांच रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामिये को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ्फुज और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में तीन मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के छह रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का सातवां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवाइल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुँचेंगे, जहाँ आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शुबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर

0: नरेंद्र मोदी सदन में अखवा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमाकारों सीईओज और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मनक़द की जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी सदर में अख़वा के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक़ुए तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई ज़हानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कान हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जाम शराकत दारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज़ के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ब्रिटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबेन तजस्सुस नुमाया तौर पर नज़र आता है। बिरादरी में तैयारियां जारी हैं और राजधानी के शहर ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में ब्रातिस्लावा का जाए मकाम भारत के साथ सियाहती रवाबित को मुस्तकम करने में भी मदद कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है कि अवाम से अवाम के ताल्लुकात में नई तहरीक पैदा करेगा और भारत और स्लोवाक जमहूरिया के दरमियान सियाहत और बाहमी ताउन को मजीद मुस्तकम करेगा। ब्रातिस्लावा से आकाशवाणी के लिए सिमिति पुलुरिथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज सुबह मामूल की एक परवाज के दौरान आसाम में जोरहाट फिजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फजाई अमले के 5 अफराद जां बहक हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने फर्ज निभाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फजाइया ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जा रही है। भारतीय फजाइया ने जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी 5 अग्निवीरों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी शुजात और खिदमात को फख्र और वक़ार के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुल्क उनके साथ है। उन्होंने मुतासर होने वाले सोगवार कुनबों के साथ दिली ताजियत का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक़दा 5 रोज़ा ब्रिक्स जरी कॉन्फ्रेंस आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इंदौर आलामिया मुतफ़ तौर पर मंजूर किया गया। इस एलामिया में खुराक की यकीनी फराहमी, किसानों की बहबूद, माहौलियात की मुआफ़िक काश्तकारी, ज़रई तिजारत और डिजिटल ज़राअत से मुतालिक अहम फैसलों को उजागर किया गया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी ज़रई पैदावार में इनका हिस्सा तकरीबन 42% है। उन्होंने कहा कि इंदौर आलामिया सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ब्रिक्स मुल्कों के मुश्तरक अज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मजहर है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 नए इदाराजाती इकदाम का ऐलान किया गया। पहले इकदाम के तहत कुदरती और पायदार काश्तकारी पर मुश्तरक तहकीक के लिए महारत के मराकज का नेटवर्क कायम किया जाएगा जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कलीदी रोल अदा करेगा। दूसरे इकदाम के तहत मसनूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी को काश्तकारी में मुतारफ कराने के लिए ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क कायम करना शामिल है जिसमें IIT दिल्ली तआवुन करेगा। तीसरे इकदाम के तहत बीजों से मुतालिक किसानों के हकूक के तहफ्फुज और बीजों के रिवायती अकसाम के तहफ्फुज के लिए एक आलमी फोरम कायम किया जाएगा। चौथे इकदाम के तहत रुकन ममालिक के दरमियान ज़रई मालूमात और जीनियाती वसाइल के इश्तराक की खातिर ब्रिक्स एग्री एंड नेटवर्क कायम किया जाएगा।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सही।

Ami.

0: संपन्न करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है, जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। कल बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे 1 जुलाई से पहले जमा किए जाने वाले सभी आवेदनों के लिए मौजूदा BLS इंटरनेशनल और SGIVS ग्लोबल केंद्रों का उपयोग जारी रखें और बदलाव से जुड़ी

0: आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत फिल्म ड्रीम गर्ल से, और इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं एक और गीत।
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: अनिल इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज आपने बहुत कुछ सुना और पुरानी गीतों का आनंद लिया। आप अभी सुन रहे थे हेमलता की आवाज़ में फिल्म अखियों के झरोके से ये खूबसूरत गीत। और आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म कामचोर से।

0: पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत सुनहरे यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाजत। अब सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। ये टूर्नामेंट पूरे

0: will clash at 3:30 a.m. Indian Standard Time. Haiti and Scotland, also in Group C, will clash at 6:30 a.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम गीत बहार।

0: आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक का प्रोग्राम गीत बहार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप 3:10 पर सुनेंगे गज़ल गीत का प्रोग्राम। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में

0: फ्रांस के नीश शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तथा तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovenia.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 3:10 और 9 सेकंड का समय हो चला है और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत गजल का। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अतुल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते

चलेंगे कुछ चुनिंदा गजलों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि घड़ी का ही पहर, रात का ही पहर जब ये गजल आप सुनेंगे तो सुकून देगा, आपके चेहरे पे मुस्कान देगा। कार्यक्रम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह की इस खूबसूरत पेशकश के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। 3:31 और 47 सेकंड का समय। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल अपने दोस्त अतुल के साथ।

कार्यक्रम गीत गजल में अभी आपने सुनी सुमना रॉय की ये गाई हुई गजल, और कार्यक्रम में अगली पेशकश है पंकज उदास की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। श्रोताओं, सुबह के 4 बज चुके हैं और ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:20 होने को हैं और श्रोताओं, ये समय होता है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। जी हाँ, कर्नाटक संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे M. चंद्रशेखरन का राग शुभा पंटुरवलाली में वायलिन वादन। रूपकम ताल में निबद्ध रचना मुथुस्वामी दीक्षिधर की है। घटम पर आपका साथ दिया है सुकन्या रामगोपाल ने।

अभी आपने एम चंद्रशेखरन का राग शोभा पंटोवराली में वायलिन वादन सुना। रूपकम ताल में निबद्ध रचना मुत्तुस्वामी दीक्षितधर थी। घटम पर आपका साथ दिया था सुकन्या रामगोपाल ने। इसी के साथ आज का कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म यहीं पर संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 43 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

और श्रोताओं, अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 5:10 का समय रहेगा कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस।

रात 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति संगीत का, जिसमें लेकर आते हैं हम आपके लिए देशगान। 5:30 का समय रहेगा स्वर रंजनी का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहम्मद अलीम खान का वॉयलिन वादन आहिर भैरव राग में। तबले पर आपकी संगति होगी राशिद जफर खां की।

प्रातःकालीन सभा में 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित विश्वनाथ के गाई हुई कुछ पेशकश। समय रहेगा प्रातः 6:10 का। चिंतन हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रातः 6:40 पर आप सुन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा के विचार।

6:45 का समय रहेगा रामचरितमानस का, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 86। 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम संगीतिका का, और 7:30 का समय होता है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

0: रात 8:45 का समय रहेगा कार्यक्रम साहित्यिक का, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता हिंदी सिनेमा में लोक साहित्य पर। विशेषज्ञ होंगे श्री अरुण शेखर, साहित्यकार और फिल्म समीक्षक। भेंटकर्ता श्रीमती कल्पना शुक्ला। और इसके अलावा साहित्यिक गतिविधियां सुश्री तबस्सुम, युवा पत्रकार। जी हां, समय रहेगा साहित्यिकी का प्रातः 8:45 का। श्रोताओं, ये थी आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स की भी श्री मोदी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी होटल नेग्रेस्को में उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। श्री मोदी ने इस स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि घर से हजारों मील दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की ही तरह मजबूत बना हुआ है। स्लोवाकिया में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने ब्रेस्टिलावा में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। असम के जोरहाट में कल सुबह वायुसेना के AN-32 विमान दुर्घटना में

0: 5 जवानों की मौत की खबर है। विमान नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन समाप्त हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली और हविल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ करेगा। मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए मैचों में 16 से 13 मुकाबले अपने नाम कर चुका है। शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 5 पर 161 बनाए। आयरलैंड की टीम 19 ओवर और 1 गेंद में 121 पर ही सिमट गई। शुक्रवार को ही प्रतियोगिता के पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 से हराया। उधर फीफा विश्व कप के तीसरे दिन सैन फ्रांसिस्को बे एरिना स्टेडियम में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच ड्रॉ रहा। स्विट्जरलैंड कतर के खिलाफ 1 से आगे था, लेकिन बाद में कतर ने बराबरी का गोल किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। कल ग्रुप सी में ब्राजील और मोरक्को का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 से होगा। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his 2-nation visit to France and Slovakia. Upon arrival, the Prime Minister received warm and enthusiastic welcome from members of the Indian diaspora. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 PM, Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashwani News, Nice, France.
1: The Prime Minister thanked the Indian diaspora in Nice, France for the warm welcome accorded to him. In a social media post, Mr. Modi described the gesture as memorable. He emphasized that despite being several kilometers away from home, the bond of the Indian diaspora with India remains as strong as ever. On the second leg of his 2-nation tour, Mr. Modi will

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप

पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्षस्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले

印度德里广播电台，听众朋友们，下面我们播送一首新交歌曲，请收听。